एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण

0: महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर की खोज कर लेना, इसी को सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को न देखा जा सके। जीवन की कोई ऐसी बाधा नहीं जिससे कोई प्रेरणा ना ली जा सके। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं इसलिए नहीं कि उन्हें किसी

चीज की कमी है, अपितु इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। इसलिए अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को सदैव सकारात्मक रखना चाहिए, जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। इसी से अभाव में भी जीवन जीने का भरपूर आनंद आएगा।

ईश्वर की भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन को सच्ची शांति और सही दिशा प्रदान करता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण मन को सुकून देता है।

भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती और ईश्वर से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। ईश्वर की राह में जो भी चला है उसको हर एक कदम हमेशा बरकत बनकर मिला है।

मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, और ईश्वर की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

कार्यक्रम सुबह सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:10 पर और 7:40 का समय रहेगा लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्रयाग का। गाने सुहाने ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 पर। प्रातः 9 का समय है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का और आज कार्यक्रम में

जानकारी का विषय है डिजिटल आय स्ट्रेन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन, और उनसे विषय के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए श्रोता डायल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। गीतों का कारवां, फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, और 10:30 पर आनंद उठाइए लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर, और 11:30 का समय रहेगा तराने मन के इस कार्यक्रम का। सैनिकों के लिए फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 12:00 और दोपहर 12:30 पर। बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा।

0: प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर। समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से। फिल्मों से भजन हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:10 पर और शाम 5:30 का समय है युवा साथियों के कार्यक्रम युवा मंच का। गजलों का आनंद लीजिए शामी गजल इस प्रोग्राम में शाम 6:05 पर और शाम 6:30 का समय है लोकगीतों पर आधारित सजीव फोनिन कार्यक्रम मिंजरा का। खेतीबाड़ी कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे शाम 7:10 पर। रात्रि 8 बजे सुनिएगा मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम हिमबीट्स आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा रात 8:15 पर। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में निर्माता निर्देशक गुरुदत्त की फिल्मों से हम आपको गीत सुनवाएंगे और रात 9:30 का समय है कार्यक्रम गीतों की महफिल का। और रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरीय संगीत सभा जो कि आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: उजतः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत् यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन् समागमं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं दोस्ती भी हैं वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है हवाएं हमारे साथ है समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं संबोधयन् अवदत् रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम् वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान् अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रूपये की

जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकुआ को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और ठंडी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी श्रोताओं, सुबह की ताज़ा हवा में एक अलग ही सुकून है जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन अक्सर हम भागदौड़ में सुबह के इस शांत पल को जीना भूल जाते हैं। तो आइए आज कुछ समय खुद के लिए निकालिए और बिना किसी जल्दबाजी के आराम से और सकारात्मक सोच के साथ

की शुरुआत करिए और भूल जाइए कि कल क्या हुआ था। हर फिक्र को छोड़ दीजिए और बस आज की धूप को, आज के इस पल को महसूस कीजिए। इसके साथ ही बने रहिए हमारे साथ और साथ ही हम आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन गीत और जानकारियाँ।

जी दोस्तों, ये वादियाँ, ये फिजाएँ, ये हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और संदेश भी देती हैं कि ज़िंदगी बहुत ही रंगीन है और ज़रूरत है इस जीवन को खुलकर जीने की। इसी के साथ जब हम हर सुबह आंखें खोलते हैं तो ज़िंदगी हमें एक खाली कैनवस भी देती है और हमारा आज का सुविचार यही है कि ज़िंदगी की किताब का हर नया दिन एक नए पन्ने की तरह है। शुरुआत में उस पन्ने पर क्या लिखा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उस दिन को कैसे जीना है और उस पर अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखनी है ये सिर्फ हमारे हाथ में है। तो श्रोताओ, हुई ना गहरी बात, और सोचिए ज़रा इस बात पर, क्योंकि सोच अगर हम बदलें तो दुनिया भी बदलती है।

जी श्रोताओ, आपने आनंद लिया होगा इस खूबसूरत से गीत का जो हमने आपको सुनवाया फिल्म शर्मीली से किशोर कुमार की आवाज में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है सुबह सुहानी। तो चलिए कार्यक्रम में अब रुख करते हैं जानकारियों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज विशेष की। साल 1823 में आज ही के दिन भारत में निर्मित पहले भाप इंजन वाले जहाज डायना को पहली बार कोलकाता में पानी में उतारा गया था। साल 1949 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटा लिया गया 12 जुलाई को। आज ही के दिन वर्ष 1960 में बिहार के दो प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों भागलपुर विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और साल 1862 में अमेरिकी कांग्रेस ने सेना में वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ ऑनर को स्वीकृति दी थी। और आज के दिन साल 2001 में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अगरतला ढाका मैत्री बस सेवा शुरू हुई। इसी के साथ श्रोताओ, आज यानी कि 12 जुलाई सन 1997 को पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और मलाला यूसुफजई ने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार और महिला अधिकारों की वकालत करते हुए तालिबान की गोलियों का सामना किया था और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ श्रोताओं, साल 1909 में भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्देशक बिमल रॉय का जन्म हुआ। उन्हें महान और प्रभावशाली यथार्थवाद का उस्ताद कहा जाता है और उनकी प्रमुख फिल्में थी दो बीघा जमीन, देवदास, मधुमती, सुजाता और वंदनी। और अपने करियर में उन्होंने 11 फिल्मफेयर और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बिमल रॉय की फिल्म मधुमती से।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आज विशेष की, और अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि साल 2012 में 12 जुलाई को प्रसिद्ध भारतीय पहलवान और बॉलीवुड अभिनेता दारा सिंह का निधन हुआ था। दारा सिंह जी ने अपने 36 साल के करियर में लगभग 500 पेशेवर कुश्ती मुकाबले लड़े और किसी में भी नहीं हारे। इसके साथ ही उन्होंने साल 1968 में फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बनकर भारत को गौरव का अवसर दिया था, और उन्हें रुस्तमे पंजाब और रुस्तमे हिंद जैसे खिताबों से भी नवाजा गया है। इसके अलावा निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई, और साल 1952 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और 140 से अधिक फिल्मों में काम किया। तो चलिए कार्यक्रम में एक

खूबसूरत सा गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म से। और खास बात यह है कि इस फिल्म के अभिनेता थे दारा सिंह और इस गीत में उनके साथ नायिका हैं हेलन।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है सुबह सुहानी। श्रोताओ, आज ही के दिन साल 2013 में हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय खलनायक प्राण का निधन हुआ था और साल 1999 में हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन हुआ था, जिन्हें लगातार हिट फिल्में देने के कारण जुबली कुमार भी कहा जाता था। उनकी बेहतरीन फिल्में हैं कानून, मेरे महबूब, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू और सूरज। और साल 1970 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए, कार्यक्रम का अगला गीत राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म आई मिलन की बेला से

जी श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी मेरे साथ यानी वंदना रैना के साथ। और श्रोताओ, हम आपको बता दें कि 12 जुलाई के दिन हम सब मिलकर मनाते हैं धूल और रेत भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की ताकि खतरनाक तूफानों को मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और इसी के साथ वर्ष 2025 से 2034 के दशक को रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का दशक घोषित किया गया है। और आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। इसका उद्देश्य है संघर्ष और अनिश्चितता के दौर में लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच में सकारात्मकता, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। और इसके साथ ही ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी एक आशा की किरण हमेशा बनी रहती है। जरूरत है आपसी प्रेम, दयालुता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना।

और श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब कुछ ही मिनट शेष हैं, तो जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया है और दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए रोडमैप 2030 का अनावरण किया। इसके साथ ही फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सभी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरशिप पर अगले 6 महीने के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य कर दिया है। और इसके साथ ही आगामी मानसून सत्र में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। और इसी के साथ श्रोताओं, मौसम विभाग ने रोहतांग, शिंकुला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कांगड़ा टनल और राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर पहाड़ी से पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके साथ राष्ट्रीय आपदा संस्थान ने ये चेतावनी भी दी है कि बारिश के चलते स्थानीय नागरिक और सैलानी जो हैं वो नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं।

बहुत ही खूबसूरत रहेगा और चलते चलते बस यही कहेंगे कि आपकी एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वंदना रैना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुबह सुहानी। कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्यार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर धीमान के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: और श्रोता लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रातः 9 बजे प्रसारित किया जाएगा और आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा डिजिटल आई स्ट्रेन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन। और श्रोता भी इस कार्यक्रम में जानकारी हासिल कर सकते हैं और हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। सूचना समाप्त हुई।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओ आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला लोकगीत। और इस लोकगीत में आवाज है वर्षा कटोच की।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक

व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में

0: परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पंजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई।

0: ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकुओक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
5: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
4: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
5: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
4: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's 3-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident, and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to provide assistance to victims and their families. The tragic incident occurred yesterday when the speedboat carrying 36 people, including four crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Rutengoi Island. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including two women, died. The Indian Embassy in Vietnam has released a list of the deceased provided by the Vietnamese authorities. Of the 15 deceased, 10 are from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh, and 2 from Kerala. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, and External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar have expressed condolence at the tragic boat accident. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A report.
6: U.S. military said these strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshem Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed the Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The force said no ships will be allowed to transit through the strategic waterway until what it called U.S. interference in the region ends. The announcement came after the IRGC claimed it fired a warning shot and stopped the vessel. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said that negotiations with Iran will continue despite tensions. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Joint Parliamentary Committee examining the proposed One Nation, One Election bills has concluded its two-day consultations in Goa. During the visit, the committee held discussions with the state government, political parties, legislators, constitutional experts, public sector undertakings, civil society representatives and the media. More from our correspondent.
7: The Joint Parliamentary Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 has concluded its two-day consultations in Goa on the proposal for simultaneous elections. On the first day, the committee met Chief Minister Dr. Pramod Sawant, representatives of recognized political parties, constitutional experts, the State Election Commission and officials of Goa University. On the concluding day yesterday, committee interacted with Goa Legislative Assembly Speaker Dr. Ganesh Gaonkar, leader of opposition Yuriya Limau and members of the Legislative Assembly from different political parties. Earlier during the visit, Committee Chairman and Member of Parliament P.P. Chaudhary said simultaneous elections would strengthen governance, reduce expenditure and minimize disruptions caused by frequent polls. He clarified that one nation, one election does not mean voting across the country on a single day but conducting Lok Sabha and Assembly elections together in phases once every 5 years. The committee will next visit Lucknow as part of its nationwide consultations. Akashwani News, Panji.
4: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad today. During the program, the minister will also kickstart an ambitious mass afforestation campaign for his Gandhinagar Lok Sabha constituency. A report from our correspondent.
8: Union Home Minister Amit Shah has undertaken an ambitious initiative to transform his Gandhinagar Lok Sabha constituency into one of the greenest constituency in the country through a massive plantation drive. As part of this campaign to combat climate change, over 1.25 crore saplings are being planted across the constituency this year. Under this drive, the Forest Department will plant nearly 60 lakh native saplings across Ahmedabad and Gandhinagar districts using the One Kavach model, that is Gujarat's indigenous version of the Miyawaki technique designed for rapid ecological restoration. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
4: In a mega campaign, the Uttar Pradesh government will plant 35 crore saplings today. Chief Minister Yogi Adityanath will launch the statewide Paudharopan Mahayagya from

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने सुहाने श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म कारवां से हमने इस गीत को लिया है। मजरू सुल्तानपुरी के स्वर हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी वर्मन ने। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिस फिल्म से, उसका नाम है तीसरी मंजिल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
1: Nexa.
5: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
6: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
5: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमण

0: समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं निदा फाजली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाएं कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
5: Nexa. और श्रोता, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं आर डी वर्मन।

श्रोताओ, गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं। नीचे प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। और अपने सभी सुनने वालों को हम बता दें कि इस कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन। और श्रोता भी इस कार्यक्रम में जानकारी हासिल कर सकते हैं, हम संग जुड़ सकते हैं। उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आरोग्यम।

0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आरोग्य में आप सबका स्वागत है। जी श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि आज के समय में हमारे जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब के बिना अगर हम अपने दिन की कल्पना करें तो ये संभव नहीं है। और लेकिन क्या हमारे सुनने वाले ये जानते हैं कि यही स्क्रीन हमारी आँखों की रोशनी चुरा रही है। आँखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग हैं, लेकिन आज के समय में कम आयु में चश्मा लगना, युवाओं की आँखों में थकान रहना और साथ ही ड्राई आइज की समस्या भी बढ़ती ही जा रही है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका नाम है डिजिटल आई स्ट्रेन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।
0: जी सर, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है उसको आसान शब्दों में आप समझाइए कि आखिर वो होता क्या।

0: है?
1: ऐसा है जी कि प्रकृति ने, भगवान ने जो हमारी आंखें बनाई है वो करोड़ों वर्ष से, लाखों करोड़ों वर्ष से आंखें बनाई थी दूर दृष्टि के लिए,
0: जी
1: आंखें घुमाने के लिए, आंखें झपती रहती थी। लेकिन हमारे परिवारों में, हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले टेलीविज़न घर में आया।
0: जी जी
1: लेकिन पुराने ज़माने की 80 के दशक की 80 दशक मेरे को याद है कि एक चित्रहार प्रोग्राम होता था जो हर वीरवार को आता था, और जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो उसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे
0: जी
1: कि चित्रहार आएगा तो वो प्रोग्राम देखेंगे।
0: जी जी
1: लेकिन उसके बाद टेलीविज़न में 24 आवर्स जो प्रोग्राम आने शुरू हो गए, फिर हमारी ज़िंदगी में वो तो दीवार पे टंगा रहता था टेलीविज़न, उसको स्विच ऑन करना पड़ता था।
0: जी
1: फिर हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर आया और लैपटॉप आया, और आज विज्ञान की एक अद्भुत खोज है फ़ोन।
0: जी
1: फ़ोन पे जो स्क्रीन आई तो 24 घंटे स्क्रीन हमारे साथ है। जिस चीज़ को देखने के लिए हम तरसते थे स्क्रीन को, थिएटर में जाके या टीवी पे, वो स्क्रीन आज हमारे हाथ में 24 घंटे है।
0: जी
1: तो विज्ञान की एक अद्भुत खोज है स्मार्टफोन।
0: जी
1: इसमें इंसाइक्लोपीडिया है, लाइब्रेरी है, नॉलेज है, टॉर्च है, कैमरा है, हर कुछ है इसमें।
0: जी
1: एक कमाल की खोज है। लेकिन जब भी विज्ञान की कोई खोज आती है तो उसको यदि हम ठीक ढंग से ना यूज़ करें, और जो ये स्क्रीन है उसका सबसे बड़ा असर आंखों पे पड़ेगा। हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ शरीर पे भी पड़ेगा, लेकिन आंखों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आंखें जो प्रकृति ने बनाई थी घूमने के लिए, पलकें झपकने के लिए, अब वो एक जगह पे स्थिर है। और जब हम नज़दीक का जो स्क्रीन है बड़ी देर, लंबे समय तक देख रहे हैं, खास करके बच्चे,
0: जी
1: तो मेरा ये 45 वर्ष का अनुभव है। और ये मेरा एक थीसिस भी था 1981 में, आँख की जो अगला पुतली है, कॉर्निया जिसको
0: जी
1: बोलते हैं,
0: जी
1: उसके ऊपर थीसिस। तो उसमें बहुत चेंजेस आ रही हैं। बच्चों की आंखें तो दृष्टि दोष हो ही रहा है, खास करके माइपिया, जो जिसको दूर की दृष्टि वो खराब हो रही है, क्योंकि बच्चे हमेशा छोटी उम्र में ही नज़दीक देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो बच्चों में दृष्टि दोष, और जो बाकी सब लोग हैं वृद्ध अवस्था तक, उनमें ड्राई आई डिजीज। तो इसको संक्षिप्त शब्दों में दिया गया नाम डिजिटल स्क्रीन सिंड्रोम, यानी कि स्क्रीन का जो साइड इफेक्ट आंखों के ऊपर है,
0: जी
1: तो विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं क्यूमुलेटिव, उसको हम सिंड्रोम बोल रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण क्या हैं इस समस्या के, कहाँ हमें समझ आना चाहिए कि अब हमें ये रोग होने वाला है या हो रहा है?
1: देखिए जी, बच्चों के बारे में तो कोई लक्षण नहीं आएंगे
0: जी
1: उनका, तो सीधा ही नज़र दूर की कम होगी, और बच्चे को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में मुश्किल होगी, देखने में धुंधलापन आएगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनमें जब ड्राई आई होगी तो आंखों में रड़क का पड़ना, आंखों का लाल होना, और आंखों का फ्रेश नहीं दिखना, तो ऐसे लगना कि सोए हुए हैं, और हेडेक होना, इवन स्पॉन्डिलाइटिस, नेक का दर्द का, नेक में दर्द होना, गर्दन में, तो इस तरह के जो सिम्टम आएंगे आंखों में, रड़क पड़ रही है, बार बार आप आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी नज़र ठीक है लेकिन आंखों में कुछ है, फॉरन बॉडी सेंसेशन है, जैसे लग रहा है कि रेत के कण पड़े हैं, तो इस तरह के लक्षण जो लक्षण आएंगे तो वो सबसे पहले ज़्यादा स्क्रीन देखने से आएंगे।
0: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: जी सर, मैं एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनको अगर क्या होता है वो मोबाइल देखते तो उनकी आंखों में कितना असर पड़ता है, जो छोटे छोटे बच्चे जैसे 5 साल से नीचे बच्चे हैं, मेरा यह प्रश्न है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है जी, और इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। बच्चे भगवान हमारी गोद में प्रकृति देता है, लेकिन बच्चों को जो आदत है मोबाइल देखने की या टीवी देखने की, वो हम माँ बाप डालते हैं। तो मैंने एक एक नारा दिया है कि अपने बच्चों को बचाओ स्क्रीन से, टीवी से, क्योंकि हम उनको आदत डालते हैं। जब हमारा बचपन था तब ये टीवी और मोबाइल चीज नाम की चीज़ नहीं थी, तो हम बच गए। लेकिन अब क्योंकि ये अवेलेबल है, तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए माँ बाप का कि बच्चों को इसकी आदत ना डालें, क्योंकि बच्चों को इसकी लत लग गई तो बिना स्क्रीन देखे वो खाना भी नहीं खाएंगे। और जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, तो जैसे आप सुनते होंगे कुछ खबरें भी आ रही हैं कि बच्चे ने ऐसे कोई आत्मदाह कर लिया या

0: अटैक कर दिया माँ बाप पे, तो ये एक एडिक्शन है, सबसे गंदी एडिक्शन है, मैं इसको बोलता हूँ। ये शराब से सिगरेट पीने से भी ज्यादा बुरी एडिक्शन है स्क्रीन को देखना, तो आप उसकी आदत मत डालें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आप सबसे, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, कि बच्चों को इसकी आदत ना डालें। अपने जो बच्चे जिनके छोटे हैं, वो घर को एक आश्रम की तरह बनाएं। स्क्रीन देखनी है तो बच्चों के सामने ना देखिए। तो यही मेरा जवाब है जी, बच्चों को बचाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत
2: जी
1: अच्छा।
2: धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। और जहाँ तक डॉक्टर साहब अभी आप कह रहे हैं कि बच्चों को छोटी उम्र में ही माँ बाप कहीं ना कहीं फ़ोन दे देते हैं, खुद से उन्हें सिखाते हैं कि स्मार्टफोन कैसे देखना है, तो ऐसे में जो नए पेरेंट्स बने हैं या जो इस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि हम कई बार अपने काम आसान बनाने के लिए हम बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं हाथ में, तो गलती हमारी भी है, तो आप क्या सुझाव देंगे?
0: वंदना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं अपने घर में देखता हूँ
2: जी,
0: हमारे मेरे अपने, मैं अब दादा नाना बन चुका हूँ, मेरे अपने बच्चे नहीं मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन हमें उनके कान में डालनी पड़ेगी। शायद आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से कुछ जो माता पिता है वो जाग जाएं इस चीज़ के
2: जी।
0: ये एक एविडेंस बेस्ड स्टडी है हमारे हॉस्पिटल कांगड़ा में
2: जी,
0: कि जब नियर विजन बच्चा देखेगा नज़दीक तो उसकी मांसपेशियां हमेशा खिंची रहेंगी, तो उसकी आंखों की लंबाई, ये सब सुन ले, आंखों की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाए तो -3 नंबर आता है। 1 मिलीमीटर, आप सोचिए मिलीमीटर कितना होता है,
2: बहुत छोटा है बिल्कुल,
0: तो -3 नंबर। तो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं -10 -12 नंबर, और ऐनक लगानी बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी ऐनक लगाता हूँ, लेकिन बच्चे को ऐनक लग जाए तो बचाने का एक ही तरीका है कि आपको माँ बाप को उदाहरण बनना पड़ेगा। यदि घर में जैसा वातावरण होगा, यदि आप स्क्रीन छोड़ के फोन को यूज करिए, दूसरा जो स्क्रीन वाला नहीं है, जब बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा नहीं है तो अपनी स्क्रीन यूज करिए, तो उदाहरण आपको देना पड़ेगा
2: जी,
0: माता
2: जी। और एक श्रोता लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए
3: जी। मैं कुलदीप बात कर रहा हूँ उन्ना से
2: जी। कुलदीप जी, आज हैं डॉक्टर संदीप महाजन जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनसे प्रश्न पूछिए, आपका क्या प्रश्न है?
3: हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार कह रहा हूँ।
0: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसे मोबाइल की बात चल रही है या डिजिटल की बात चल रही है, आज के दौर में सर ये चीजें बहुत जरूरी हो गई है, स्कूल कॉलेज और जहाँ कहीं भी है, ऑनलाइन क्लासेज है, होमवर्क मोबाइल पे है, सब कुछ सारी चीजें स्क्रीन पर है, तो ये तो नेसेसिटी है। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस नेसेसिटी में भी हम कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, या छोटे बच्चों के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे वो अपनी आंखों, जिससे हम उनकी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये तो चीजें यूज होंगी, मोबाइल भी यूज होगा, डिजिटल स्क्रीन भी यूज होगी, तो ऐसे में हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
0: आपने बिल्कुल ठीक बोला जी, और मैं निवेदन भी कर चुका हूँ सरकारों से भी कि ऑनलाइन क्लासेस को तो बंद करना चाहिए। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, यूरोपियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और चाइना, इन्होंने हमारे नेत्र विशेषज्ञों के सुनने पर, कहने पर ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है, और बच्चों के लिए जो डिजिटल गेम्स हैं उसके लिए फिक्स टाइमिंग कर दी है। ये तो हमें सरकारों को, हमें मिलकर निजी जो लोग हैं सबको मिलके इस चीज़ में बच्चों के बारे में तो उठाना पड़ेगा। और जहाँ तक बड़े लोग हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, स्क्रीन के बिना गुजारा नहीं है आज की ज़िंदगी में, लेकिन जब हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं आँखों की। एक फार्मूला आप सब नोट करिए, 20-20-20 का फार्मूला। कहने का मतलब, आप यदि आपका काम ही कंप्यूटर पर है, डिजिटल स्क्रीन पर है, तो आप काम से तो नहीं बच सकते, लेकिन 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी की चीज को देखें, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें, और आंखों को घुमाइए लेफ्ट राइट नीचे ऊपर, और आंखों को जोर से पलकों को उनको स्क्वीज करिए, पलकों को नीचिए जोर से, ताकि आंखों के जो टीयर फिल्म जो बनती है, जो पलके हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि सृष्टि ने हमारी आंखें बनाई हैं कि पलकें 18 से 20 बार एक मिनट में झपकी जाए। जब हम स्क्रीन ना देखें, बातें करें, तो हम जो पलकें झपते हैं वो 18 से 20 एक मिनट में झपते हैं, पर जब हम स्क्रीन देखते हैं, स्पेशली मोबाइल, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये घटकर 5 से 6

0: मिनट रह जाती। आप सोचिए एक मिनट में 10-12 बरी पलके कम झपकी हैं, घंटे में कितनी कम झपकेंगी। जो पलके हैं जब झपकती हैं तो एक टियर फिल्म जो त्वचा के ऊपर नमी है, जो हमारी आंखों का सबसे अगला हिस्सा कॉर्निया, उसके लिए नमी बहुत जरूरत है। कॉर्निया पारदर्शी अंग है और बड़ा सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन हमारे शरीर का है, तो उसके लिए टियर फिल्म बनना बड़ा जरूरी है। तो आप 20-20 का जो फार्मूला है 20-20-20 का, उसको फॉलो करिए। थोड़ी देर आंखों को रेस्ट दीजिए, आप अपनी जगह बैठे हैं उससे खड़े होइए, टांगों को हिलाइए, शरीर को हिलाइए, आंखों को हिलाइए। तो हमें तो कुछ ये तो हमें सीखना पड़ेगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी।
1: जी जी जी जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। छोटे बच्चों के लिए भी अगर आप कुछ सुझाते तो।
0: जी आप समझिए जी, हमें बुजुर्गों को, हम बड़ों को, माता पिता को समझना पड़ेगा कि हम फोन की आदत ना डालें उनके ऊपर। ये मेरा विनम्र निवेदन है सबसे। मैं बड़ा सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 68 साल हो गई है। मैं बच्चों को जब देख रहा हूँ तो मैं तो बड़ा चिंतित हूँ। और मैं इसके ऊपर एक ऐड करना चाहूंगा, यदि किसी को ऐनक लग जाती है सपोज बड़ा होकर, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन एक फौजी सिपाही इन्फेंट्री का सैनिक नहीं बन सकता। तो कहां से हम आगे जाके बच्चों को ऐसे लाएंगे जिनकी नजर पूरी होगी? तो हमें उनको बचाना है, यही मेरा संदेश।
1: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: जी धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की एक फार्मूला की 20-20-20, तो जैसा कि हम आज के समय में देखते हैं और कोविड के बाद से ये सिचुएशन आ गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका भी जो मैक्सिमम टाइम है ज़्यादातर टाइम स्क्रीन के सामने ही रहता है, तो ये सेम फार्मूला आप उनको भी सजेस्ट करें?
0: हर किसी को जो भी स्क्रीन के ऊपर है, कोई भी स्क्रीन है, तो जिसको ज़रूरी है वर्क फ्रॉम होम है। इसके बारे में और थोड़ा ऐड करूंगा कि बच्चे हमारे भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लेटे लेटे वर्क फ्रॉम होम ना करें। वो तैयार हों, खड़े हों, पोडियम बनाएं, डेस्कटॉप के जो कंप्यूटर है उसको ऊपर रखें और टांगों को भी हिलाएं, आंखों को तो हिलाएं, जरूरी है टांगों को हिलाएं। तो 20-20 का फार्मूला जरूर फॉलो करें, तो ही आप अपनी आंखों को ड्राई आई डिजीज, डिजिटल सिंड्रोम, उससे बचा पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आई ड्रॉप्स या मेडिसिन डालनी पड़ेगी, तो बचा लें।
2: जी जी। और डॉक्टर साहब एक ये है ना कि आजकल हमें ऑनलाइन बहुत सारा पढ़ने का मिलता है मटेरियल, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लंबे समय तक नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं थोड़ा लेट जाते हैं टेढ़े होकर, या फिर वो लैपटॉप पर वैसे देखना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो भी उनकी दृष्टि पर अफेक्ट करता है ये सब चीज़ें?
0: बहुत बुरी तरह से।
2: अच्छा।
0: बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, दृष्टि पर ही नहीं पूरे शरीर पर।
2: जी।
0: हमें हमेशा बैठ के जो भी स्क्रीन है उसको डिस्टेंस पे रखना चाहिए।
2: जी। और कितना डिस्टेंस?
0: हम बड़ा अच्छा पूछा जी, आर्म्स लेंथ।
2: अच्छा।
0: मैं तो कहता हूँ आर्म्स लेंथ, एक जितनी लंबी आपकी बाजू है उतनी दूरी पर रखें। जितना दूर आंखों से रखेंगे उतनी आंखों को जो क्षति है वो कम पहुंचेगी।
2: जी। और जो स्मार्टफोन है, कई बार उसमें एक फीचर हम सुनने में आता है डार्क मोड, है ना, तो जो लोग ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमने डार्क मोड वो फीचर ऑन किया हुआ है और अब इसके बाद हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इस बात में कितनी सत्यता है
0: इसमें? जी को साइंटिफिकली प्रूफ डाटा तो कोई नहीं है
2: जी,
0: लेकिन हाँ जितनी ज़्यादा लाइट एमिट करेगा
2: जी
0: स्क्रीन जो है उतनी हानिकारक होगी, ये तो पक्का है, निश्चित है
2: जी।
0: तो डार्क मोड पे रखें, तो ऐसे साइंटिफिकली कोई स्टडी अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, अभी आई भी नहीं है
2: जी।
0: लेकिन फिर कहूँगा स्क्रीन इज बैड, लाइट मोड हो और डार्क मोड हो तो इट इज स्टिल लिटिल बेटर,
2: पर
0: स्क्रीन इज बैड।
2: और एक चीज और है कि कई बार रात में हम पढ़ते हैं और या काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे समय में कमरे में रोशनी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग बिल्कुल वो जीरो पावर का बल्ब जलाया और साथ में आप लैपटॉप पे या स्मार्टफोन पे काम भी कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या सुझाना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है वंदना जी। रात को अंधेरे में तो बिल्कुल स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए और लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे इस वक्त आपके स्टूडियो में है
2: जी।
0: बल्कि ट्यूब लाइट होनी चाहिए और लाइट ऐसी होनी चाहिए दिन के टाइम जैसे सूर्य भगवान हमें लाइट देता है
2: जी।
0: उतनी जितना लाइट होगा उतना ही आपकी आंखों पे बुरा असर कम पड़ेगा
2: जी। जी। और डॉक्टर साहब आपसे अब ये गुजारिश करेंगे कि कृपया हमारे स्टूडियो में यूं ही बने रहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा अंतराल लेना पड़ेगा और प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको और अपने श्रोताओं को लिए चलते हैं आकाशवाणी के शिमला स्टूडियो, और मिलते हैं आप सभी से सुबह।

0: प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जाए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने राज्य के मंदिरों में बढ़ाई चौकसी, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी। जनजातीय जिला किन्नौर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसान और बागवान हो रहे लाभान्वित। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धा पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से की मांग। और प्रदेश में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय, राज्य में वर्षा से बाधित संपर्क सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के मंदिरों में सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी दान पात्र टेम्पर प्रूफ होंगे, उन पर भी यूनिक पहचान नंबर होगा और मल्टी की प्रणाली अपनाई जाएगी। दान पात्र खोलने और चढ़ावे की गिनती जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित समिति की मौजूदगी में होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को जरूरी किया गया है। निर्देशों के अनुसार मंदिर में चोरी, हेराफेरी या छेड़छाड़ की किसी भी घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और सरकार को देनी होगी। आभूषणों का हर तिमाही में भौतिक सत्यापन और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट मंदिर के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य में एचपी शिवा परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारंपरिक खेती को आधुनिक लाभकारी बागवानी से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के बल उपमंडल का तमरोह क्लस्टर जापानी फल उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इससे किसानों के लिए समृद्धि व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस क्लस्टर में अब तक कुल 76 बागवान जुड़े हैं।

0: और 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जापानी फल के 7,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में उनके गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे हैं और उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एस जानकी अम्मा की मधुर धुनें आने वाले वर्षों में भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। मोदी ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और संपूर्ण संगीत जगत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जनजातीय जिला किन्नौर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों और बागवानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से उच्च तकनीकी पौधशालाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जिले में गुणवत्तापूर्ण फलदार पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे किन्नौर जिला संवाददाता।
1: योजना के अनुसार बड़ी पौधशाला 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्र स्थापित करने वाले किसानों, बागवानों या संस्थानों को 40% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रति हेक्टेयर 12 लाख तक की सहायता का प्रावधान है, जबकि 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम 24 लाख तक सहायता उपलब्ध होगी। बागवानी विभाग के अनुसार किन्नौर में फल उत्पादन मुख्य रूप से सेब आधारित है और यहाँ के बागवानों की आजीविका बागवानी पर निर्भर है। इससे स्थानीय युवाओं को पौध उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे तथा जिले में आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत उच्च तकनीकी पौधशालाओं का प्रत्यापन करवाना भी आवश्यक होगा। अंतिम किस्त जारी होने के 18 माह के भीतर पौधशाला का प्रत्यापन पूरा करना अनिवार्य रखा गया है। किन्नौर के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में यह योजना बागवानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से मांग की है। इस संबंध में केंद्र सरकार को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र गरीब बुजुर्गों को 200 रुपये तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करती है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पात्र बुजुर्गों को 1,100 और 1,700 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। सिरमौर जिला के कालाअंब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ कल आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्या के समाधान के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भूजल विभाग द्वारा 20 करोड़ की लागत से चेक डैम लगाए जा रहे हैं, जिससे यहां की जल समस्या में सुधार होगा। उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। मंडी जिले के बल उपमंडल का तमरोह क्लस्टर अब जापानी फल यानी परसीमन की व्यावसायिक खेती के लिए नई पहचान बना रहा है। एचपी शिवा परियोजना के तहत यहां करीब 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय फ्यू किस्म के 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे मंडी जिला संवाददाता से।
2: एचपी शिवा परियोजना के तहत यहां करीब 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय फ्यू किस्म के 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 12,500 हेक्टेयर में लगभग 7,500 पौधे रोपे जा चुके हैं, जबकि शेष पौधारोपण शीतकालीन मौसम में किया जाएगा। इस परियोजना से अब तक 76 किसान जुड़ चुके हैं। किसानों को पौधे के साथ ड्रिप सिंचाई, सोलर फेंसिंग, तकनीकी प्रशिक्षण और वैज्ञानिक बागवानी का मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2 और 3 लाख लीटर क्षमता के जल भंडारण टैंक भी स्थापित किए गए हैं। तमरो क्लस्टर न केवल जापानी फल उत्पादन का नया केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बागवानी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
0: चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए

0: प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस यात्रा का आयोजन हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले साल यात्रा के दौरान भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए मणिमहेश ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार वाया कुगती मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि यहां से प्राचीन परंपरा से आने वाली छड़ी यात्रा को ही अनुमति रहेगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है, हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। बीते 48 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में वर्षा से बाधित कई संपर्क सड़क मार्ग, पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुल्लू जिला में पिन पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में 189 सड़कें बंद हैं तथा 146 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित और 104 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई तक मध्यवर्ती क्षेत्रों में मध्यम और कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एलोपैथिक के समान वेतन, हाईकोर्ट के आदेश, कहा लाभ से वंचित रखना मनमाना, समानता के सिद्धांत के विपरीत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिमाचल के मंदिरों में चढ़ावे पर और सख्त होगा पहरा। पंजाब केसरी लिखता है, राम मंदिर प्रकरण के बाद मंदिरों की सुरक्षा को लेकर SOP जारी, हिमाचल में मंदिरों में दान की गिनती की होगी वीडियोग्राफी। दैनिक भास्कर की एक खबर है, चमियाणा अस्पताल में 3 टेस्ला MRI सुविधा शुरू, मरीजों की स्टीक जांच संभव। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, मॉनसून पर्यटन के लिए हिमाचल पूरी तरह तैयार। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सांगला में बैली ब्रिज ढहा, शिमला में भूस्खलन, हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, रजहाड़ा में लैंडस्लाइड से गाड़ियां दबी, 14 जुलाई तक येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने राज्य के मंदिरों में बढ़ाई चौकसी, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश। जनजातीय जिला किन्नौर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसान और बागवान हो रहे लाभान्वित। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धा पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से की मांग। और प्रदेश में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय, राज्य में वर्षा से बाधित हुए संपर्क सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में, यानी कि स्क्रीन लैपटॉप की हो, टीवी की हो या फिर स्मार्टफोन की हो, उसका हमारी आंखों पर क्या दुष्प्रभाव है। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन, और श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके लिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01892224391। तो डॉक्टर साहब, बात शुरू करने से पहले एक कॉलर जो है वो काफी देर से हमें कॉल कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
4: मैम, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार,
4: मैं जिला कांगड़ा गांव गुरकड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ, आपका पड़ोसी। तो मेरे ये है छोटी सी बात की, मतलब जैसे अगर किसी ने अपनी आंखों बचानी हो तो ऐसे, मतलब देखो आजकल कंप्यूटर के सारे सारे काम है, तो ऐसा नहीं है कोई चश्मा वगैरह लगा के काम करे तो उससे बच सके रोशनी।
5: हाँ गोल्डी जी नमस्कार। हाँ, कोई इस तरह का चश्मा नहीं है कि जो आपकी आंखों को बचा सके स्क्रीन से, कोई ऐसा।
4: हाँ जी,
5: हाँ समाज के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए। कोई ये जो चश्मा है कि ब्लू फिल्टर्ड है, तो उसका एविडेंस साइंटिफिक कुछ नहीं है। आंखों को सृष्टि ने बनाया घुमाने के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, पलके झपकने के लिए। जब हम स्क्रीन देखेंगे, खास करके स्मार्टफोन की, तो हमारी पलकें झपकेंगी नहीं और आंखें घूमेंगी नहीं। जो आंखों की मांसपेशियां हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में और सबको

0: ज्ञान विज्ञान मानना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग की 12 नर्व्स होती हैं मेन, जो हमारी सेंसरी, जो टच, देखने की जो है और सूंघने की और जो बाकी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। और भगवान ने उसके लिए 5 नर्व सिर्फ आँख को दी हैं। तो आँख सिर्फ देखने के लिए नहीं है, देखती तो एक चीज़ है, हमारा जो बैलेंस करना है, हमारा बॉडी को जो हम खड़े रहते हैं ज़मीन के ऊपर, और ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, तो खड़े करने में, पोस्चर में, चलने में आंखें सहायता करती हैं। तो जो आंखें सृष्टि ने बनाई घुमाने के लिए बनाई हैं, तो हम आंखों को घुमाते रहेंगे, पलकों को झपकते रहेंगे, तो ही इनको बचा पाएंगे। और इनको यूज़ जो करना, ओवर यूज़ जब करेंगे, जब एक आप खुद सोचिए, आप नज़दीक सारा दिन आंखों को देख रहे हैं, तो आंखों कितनी बताएंगी कि मैं थक चुकी हूँ। आपको प्यास लगती है, जी बताती है कि प्यास लगी, आप पानी पी लेते हो। आपके कान में कोई ध्वनि बड़ी जोर से गूंजती है, आप कान बंद कर लेते हो, लेकिन आंख नहीं बताएगी। आंख बताएगी, आंख तकलीफ होगी, रड़क पड़ेगी, आपकी नज़र धुंधलापन आएगा, हेडेक होगी, तब आप आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे। तो उसको बचने के लिए स्क्रीन अवॉइड करिए जितना पॉसिबल है। यदि आप स्क्रीन देख रहे हैं तो 20-20 का फार्मूला आप उसको अपनाइए और आंखों को घुमाइए, आंखों को बंद करिए। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको 24 घंटे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। ये हमें लत लग गई है, हमें सबको एडिक्शन हो गई है। हम सवेरे उठते सबसे पहले व्हाट्सएप, अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं। और इसके ऊपर गोल्डी जी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ सबके लिए कि फ़ोन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जैसे डॉन पिक्चर का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो बचना पड़ेगा, इससे नहीं बचेंगे आंखें खराब होगी। तो उससे बचने का उपाय एक ही है कि अपने आप को अकेला मत छोड़िए। जब आप अकेले हैं तो फ़ोन ऑन कोशिश करिए कि आप किसी के साथ हो। यदि आप 2 या 3 हैं आपके साथ, साथी कोई भी परिवार के हैं, कोई भी है, तो बातें करिए, इंटरेक्ट करिए, गॉसिप करिए, कोई गप लगाइए। नील आएंगे तो सर अब सारे जो अपना फ़ोन ऑन कर लेंगे। और तीसरी बात है कि आप आउटडोर में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने परिवार में ऐसा वातावरण पैदा करिए कि बच्चों के साथ खेलिए, बच्चे बन जाइए। इससे बचना बड़ा मुश्किल है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन बचने का जो साधन मैंने निकाला है, आप परिवार में ऐसा वातावरण पैदा करिए कि आप बातें करिए, खेलें, एक्सरसाइज करें, तो ही आप बच सकते हैं। अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में बन चुका है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। यही मेरा संदेश है।
1: जी जी, गोल्डी जी, कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसे बात की कि लोगों को एक तरह से स्क्रीन की लत लग चुकी है, है ना, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर समय वो कमरे के अंदर, घर के अंदर बिताते हैं। कई बार एसी चला हुआ है, पंखा चला हुआ है, लाइट ऑन है, और वो बस वहीं पे समय पूरा अपना दिन निकाल देते हैं। तो कितना ज़रूरी हो जाता है आँखों की देखभाल के लिए हमें बाहर जाना, कोई डे टू डे एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, या सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आना, ये सब कितने फायदेमंद हैं?
0: बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि के हम जो ये रचना रची है विश्व में, उसके हम ये एक जीव हैं
1: जी।
0: जैसे बाकी वन में जीव हैं, बाकी जो हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क, जो ब्रेन डेवलप करा, उससे हमने बड़ी तरक्की करी विज्ञान में। तो हमने अपने आप को सृष्टि से दूर कर लिया। सूर्य भगवान की हमारे धर्म में पूजा की जाती है। हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव कितना था कि सूर्य का सवेरे उठ के उसको पानी देते थे, और सुबह उठ के उसके जो सनलाइट है सुबह की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आँखों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और गर्मियों का मौसम है, ये मैं बोलता हूँ, सन हीट नहीं लेनी है आपने, सनलाइट लेनी है। सनलाइट जो है वो सुबह और शाम को जरूर बाहर जाना है, आंखों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें जो हैं उसको, जो कॉर्निया जो सबसे अगला हिस्सा है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं है, उसको खून की नसें वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो आप खुद सोचिए कि आंखों को नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है सनलाइट से। और आंखें पलके जो झपक रहे हैं उससे जो टीयर फिल्म बन रही है उनसे मिल रही है। तो इंडोर में बैठेंगे, एसी ऑन है, अब एसी की आप चर्चा जब करें तो एयर कंडीशन क्या करता है कि ड्राईनेस करता है कमरे के अंदर। आपने देखा होगा कि एसी बाहर पानी छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या, कमरे का पानी बाहर जा रहा है, तो ड्राईनेस हो रही है, अंदर ड्राईनेस हो रही है। और आंखें जब हम स्क्रीन टाइम बढ़ रहे हैं तो ड्राईनेस वैसे हो रही, पलके नहीं झपक रहे, तो दैट इज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये इकट्ठा होकर सारे आपके आंखों पर अटैक कर रहे हैं। तो एयर कंडीशन भी बहुत, जो लो टेम्परेचर रखते हैं, सब बच्चों को बोलते हैं।

0: सब जगह जब लेक्चर देता हूँ कि आप 26, 27, 28 टेम्परेचर रखें, पक्खा चलाएं, बहुत ठंडा कमरे को ना करें, जितना ठंडा करेंगे उतनी ड्राइनेस होगी। और आउटडोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब सुन लें, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कम से कम 3 घंटे जो बढ़ते बच्चे हैं, बड़ों के लिए भी आउटडोर में आपको जाना ही है, ये आपको कसम खानी है आज कि हमने आउटडोर में जाना है, फोन से भी बचना है और सूर्य भगवान का धन्यवाद करना है कि विटामिन डी मुफ्त में दे रहे हैं तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हेलो हेलो,
2: नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: रतन बोल रहा हूँ जी, ज्वाला जी।
1: जी रतन जी, अपना प्रश्न पूछिए।
2: पहले तो सर ये हमारा सौभाग्य है और डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह जी के एफर्ट्स हैं कि डॉक्टर साहब आज यहाँ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हुए हैं, बहुत
1: जी,
2: अच्छी बात।
1: रतन जी आप ना सीधा प्रश्न पूछिए क्योंकि और श्रोता भी लाइन में है ना इस वक्त।
2: सर मेरा सवाल है, मेरी मिसेज की उम्र है 57 साल,
0: हाँ जी,
2: अभी उसका दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है।
0: अच्छा जी।
2: तो उसमें कुछ स्टिफनेस रहती थी तो हमने टांडा में चेक कराया तो उन्होंने बोला जो प्रेशर है वो 26 है, ज्यादा है, ये होना चाहिए 5 से 21 के बीच।
0: ठीक बोला जी।
2: तो उसके लिए दवाई दी उन्होंने डालने को, तो मेरा सवाल ये है कि ये दवाई से ही ठीक हो जाएगा या कोई एक्सरसाइज वगैरह है, और इसके फिर खतरे क्या है, नहीं कंट्रोल होता।
0: हाँ जी, आपने थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा जो आज का टॉपिक है, फिर भी मैं जवाब देता हूँ कि ये आपने अच्छा पूछा। जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है, आँख का प्रेशर है, दबाव है 20 से नीचे चाहिए, यदि 20 से ऊपर है तो दवाइयाँ डालिए और टाइम टाइम के ऊपर चेक कराइए, इसको 20 से नीचे लाना पड़ेगा। यदि दवाइयों से आ जाता है नीचे तो ठीक है, अदरवाइज इसका इलाज लेज़र भी है, ऑपरेशन भी है, लेकिन हाँ प्रेशर आँख का 15-16 के आसपास होना चाहिए। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे हम प्रेशर को कम कर सकें, दवाइयाँ ही इसका इलाज है। और बार बार आँखों को चेक कराइए, जो काला मोती है उससे नज़र चली जाए तो उसको वापस नहीं ला सकते। तो आप, अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप इसको चेक कराइए और प्रेशर 17-18 वो आपको चेक कराना पड़ेगा बार बार, वो ज्वालामुखी में भी करा सकते हैं, हर जगह आजकल आई सर्जन है, लेकिन प्रेशर को नियंत्रण में रखवाइए।
2: ठीक है सर, नमस्कार।
1: जी रतन जी, कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब हम भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल आई स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में आंखों की कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे हम इस समस्या से बच सकते हैं?
0: बिल्कुल जी, एक तो 20-20-20 बार बार बोलूंगा, इसको याद रखिए। और दूसरा, आंखों को हमने एक्सरसाइज करनी है, वो हमारे लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं, यानी कि आंखों को एक जैसे पेन पकड़ लिया आपने, आर्म्स लेंथ में रखा, उसके ऊपर फोकस करिए, फिर अब पेन को धीरे धीरे आंखों के बीच में लाइए, नाक की सेध में, ताकि आंखें आपकी अंदर को जाएं, फिर वापस जाइए, फिर उसको राइट साइड पे लेके जाइए, फिर लेफ्ट साइड लेके जाइए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर दाहिने ऊपर, दाहिने नीचे, तो चारों तरफ आंखों को घुमाएं, क्योंकि मसल्स ऐसे बने हैं आंखों की मांसपेशियां, वो हमेशा हिलती रहनी चाहिए, और आंखों को जोर जोर से नीचे।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार जी। जी सबसे पहले रेडियो सेट से अपनी दूरी बना लीजिए
3: जी,
1: और अब अपना परिचय दीजिए।
3: मैडम मेरा नाम है ठाकुर बलबीर सिंह सीमा, चंडीगढ़ से, सेक्टर 5 से बोल रहा
1: हूं। जी, अपना प्रश्न कीजिए डॉक्टर साहब से।
3: मेरे को रेटिनिटिस पिगमेंटोसा की बीमारी है।
1: किस चीज की, एक बार फिर से बताइए।
3: आरपी
0: आंखों की बीमारी है।
3: हाँ जी, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा आरपी।
0: हाँ, वो तो वो अलग बीमारी है, खैर डिजिटल से वो आपको, आपने चेक तो कराया होगा जी, वो चंडीगढ़ में रहते
3: हैं। नया ट्रीटमेंट कोई निकला
0: नहीं अभी तक इसका, बड़ा मेरे को दुख से बोलना पड़ रहा है कि इसका कोई ऐसा सीधा ट्रीटमेंट नहीं निकला, लेकिन आप फिर भी हरे रंग की और लाल रंग की सब्जियों का सेवन ज्यादा करिए, उनका सूप पीजिए। हाँ वो सूप पीजिए, पर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं निकला जी अभी तक।
3: डॉक्टर ऐसा बोलते हैं शिकागो में कोई ट्रीटमेंट चंडीगढ़ वालों ने बोला
0: है। हो सकता है, मैं तो अभी कनाडा में जाके आया, पर मैंने भी काफी जगह इंटरेक्ट करा है, हो सकता है, रिसर्च चली हुई है, बहुत देर से चली हुई है इसके ऊपर।
1: जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब हम भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि खान पान कैसा रहना चाहिए अगर हम अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो।
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न जी, और इसका सीधा आंसर है जो हमारे पूर्वज खाते हैं
1: जी,
0: हमारे दादा परदादा जो खाते हैं, हरी सब्जियां
1: जी,
0: सबसे इम्पोर्टेंट फल फ्रूट जी। मैं ये बोलता हूँ

0: हिंदुओं में हमारे तीन माँ मैं समझता हूँ, एक धरती माँ सबसे पहले
1: जी।
0: तो धरती माँ जो चीज देती है सबसे बहुमूल्य चीज है वो है फल, जिसको हम तोड़ के सीधा खा सकते हैं। तो फल से ज़्यादा अच्छा पौष्टिक आहार कोई नहीं, और उसके बाद सब्जियाँ और उसके बाद दाल चावल जो भी धरती माँ देती है, और दूसरी अपनी माँ जो माँ बनाती है बच्चों की। तो जो माँ है वो भिन्न भिन्न तरह की दालें बनाती है, कभी चावल कभी, तो पौष्टिक आहार ये कि फुल जो खाना मिलता है। और तीसरी माँ हमारी गाय माँ, दूध दूध से बनी हुई चीज़ें, सब्जियाँ फल फ्रूट और विभिन्न दालें हैं चावल हैं। जिसको बीमारी है कोई शुगर की उसको परहेज करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों में खास करके हरी सब्जियां फल फ्रूट का सेवन बहुत होना चाहिए, दूध से बनी चीज़ें। और कृपा करके आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो जिसको जंक फूड बोलते हैं मैं उसको डेड फूड बोलता हूँ, वो कभी कभार जरूर खाइए, कोई बर्थडे पार्टी है कोई त्यौहार का दिन है, पर रोज उसकी लत भी ना डालिए। तो पौष्टिक आहार सब्जियां फल फ्रूट और
1: जंक फूड का आप यही कहेंगे कि उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा ना
0: ना बनाए कभी कभार, ठीक है।
1: हाँ,
0: जन्मदिन है, कोई खुशी का मौका है, बच्चा फर्स्ट आया है, जैसे पहले मेले लगते थे, मेले वाले दिन हमें माँ बाप पैसे देते, आज जो मर्जी खाओ, पर मेला तो साल में 2-4 बार लगता था, वही होना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये है कि कई लोग हैं जिनको आंखों की समस्या होगी है, मान लीजिए कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं या फिर कोई नंबर का चश्मा लगाते हैं, तो ऐसे में वो डिजिटल आई स्ट्रेन से किस तरह बच सकते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपका?
0: उनको और अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बाकियों के लिए तो है ही है। तो यूज स्क्रीन जस्ट टू अर्न और टू लर्न, आप कमाने के लिए और कुछ सीखने के लिए उसके लिए स्क्रीन यूज करिए। एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए कृपया स्क्रीन ना यूज करें। और जो कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं वो एयर कंडीशनिंग की बात, कॉन्टैक्ट लेंस ऊपर से लगाए तो कॉर्नियों को फिर ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उनको बड़ा ध्यान पूर्वक जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो घर में बैठे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस क्यों लगाने, तो ऐनक लगाइए तो कॉन्टैक्ट लेंस तो एक कॉस्मेटिक है, बाहर जाने तो लगाइए, तो कम यूज़ करिए
1: जी। और डॉक्टर साहब एक और बात है, कई बार जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसे में भी समय बिताने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर नहीं देखेंगे गाड़ी की खिड़की से, हम क्या करते हैं अपना फ़ोन निकालते हैं और उसको स्क्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो हानिकारक है चलती गाड़ी में अगर हम स्क्रीन का इस्तेमाल करें?
0: यही मेरा बस चले मैं तो चलान कर दूंगा जी।
1: अच्छा।
0: हारी करनी तो बहुत ही बुरा है। चलती गाड़ी में पढ़ना भी बुरा है
1: जी,
0: क्योंकि आपका शरीर भी हिल रहा है, आंखें बाहर भी देख रही हैं और आपकी नजदीक भी देख रही हैं, तो आंखों की तो मैं आंखों का डॉक्टर हूं और सीरियसली आंखों के लिए बड़ा चिंतित रहता हूं। आंखों को बचा के रखिए, सृष्टि ने हमें इतनी अच्छी दी है, दृष्टि है तो सृष्टि है, दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं बात है। तो मैं यही बोलता हूं, मैं आंखों का डॉक्टर, बड़ा सेंसिटिव हो जाता हूं, इमोशनल हो जाता हूं कि आंखों जब गाड़ी में तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, फोन तो बड़ी दूर की बात है।
1: जी जी, हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
2: मैं कृष्णदास बोल रहा हूँ मैक्लोडगंज से जी।
1: जी, अपना प्रश्न पूछिए।
2: डॉक्टर, मेरी आंखों में ना कोई पर्दे जो है ना बोलते हैं ना फर्क के ऊपर उठे हुए हैं। मैंने धर्मशाला में भी और आपके हॉस्पिटल मटौर में भी और बाद में रंडा में चेक कराई है, उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन तो नहीं करना लेकिन इंजेक्शन लगाना पड़ेंगे। मैं दोनों आंखों में दो दो इंजेक्शन लगा चुका हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: वो बोलते हैं कि ये आपकी नज़र तो जैसी है वैसी रहेगी, कम भी नहीं होगी और मतलब ज़्यादा भी नहीं होगी।
0: आप ये बात सुनिए, आपको शुगर की बीमारी है?
2: नहीं सर, डॉक्टर कुछ भी नहीं।
0: ब्लड प्रेशर की?
2: कुछ नहीं जी।
0: आपकी उम्र?
2: मेरी उम्र 77 है।
0: हाँ, केवरी उम्र से संबंधित आंखों के अंदर सोजिश आ जाती है, तो पहले तो
2: पर्दे उठे
0: हैं, सोजिश है, तो उसके लिए किसी जमाने में, हम 40 साल से आंखों के क्षेत्र में हूँ, तो पहले हम बोल देते थे आपकी उम्र हो गई है जी, आप पर्दे कमजोर हो गए हैं, लेकिन अब इलाज है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो जैसे डॉक्टर आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, बल्कि धन्यवाद करिए साइंस का कि आप देख पा रहे हैं, कम है नज़र मैं मानता हूँ लेकिन देख पा रहे हैं। पहले तो आप याद करिए, 30 साल पहले 70 साल की आयु के बाद आमतौर पर लोगों की नज़र चली जाती थी, हम बोलते थे आपकी उम्र हो गई है, तो अब इलाज है, और पर्दों की जब तक समस्या थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम हौसला मत छोड़िए, आप डॉक्टरों के पास जाते रहिए।
2: नहीं, मैंने दो इंजेक्शन लगवा लिए हैं, दो दो अभी एक एक और बोल रहा, तीन तीन लगाना पड़ेगा।
0: हाँ, लगाने पड़ेंगे जी, इंजेक्शन ही बचा रहे हैं, नहीं तो आप ये सोचिए कि ये इंजेक्शन ना होते तो आपकी जो नजर आ रहा है वो चली जाती, तो आप जो मिल रहा है भगवान का धन्यवाद।

0: दिमाग में होता 5,000 किलोमीटर चल गई है। तो इस देश में थोड़ा सा ये है, मैं बोलना चाहूंगा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए
1: जी,
0: हर आदमी को साल में आंखें जरूर चेक करानी चाहिए, हर बच्चे से लेकर बड़े तक साल में एक बार
1: जी।
0: और जो पीड़ित है बीमारियों से, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी और भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ भी बीमारी है, उनको आंखों को तो बार बार चेक कराना चाहिए। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं कि 3 महीने बाद आइए, जरूर जाना चाहिए
1: जी, जी।
0: और आपकी आंखें कुछ बोल नहीं रही हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप ठीक हैं, आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन अपनी शरीर के लिए तो आंखों के लिए तो जरूर निकाल सकते हैं। तो मेरा तो संदेश है कि चेक कराना चाहिए।
1: और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, हम देखते हैं ना कि कई बार बच्चे या हमारे जो बड़े हैं वो लंबे समय तक स्क्रीन को यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है या फिर उन्हें डबल विज़न जिसे कहते हैं वो भी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमने लंबे समय तक स्क्रीन यूज़ किया, खुद ही केमिस्ट के पास जाएंगे, आई ड्रॉप्स ले आएंगे और उनको डाल देंगे। तो ये कितना सही है?
0: ऐसा जी, ये सिर्फ, मैंने 40 देशों की यात्रा कर चुका हूँ आज तक कॉन्फ्रेंसेज में, ये सिर्फ हमारे देश में है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप दवाई ले सकते
1: हैं। जी, जी,
0: तो यहाँ भी सरकारें सख्त हो रही हैं, अब लॉ बन रहे हैं, तो अपने आप तो दवाई कभी भी नहीं लेना चाहिए, गूगल को अपना डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए। कोई भी समस्या है, आप संबंधित जो चिकित्सक है कोई भी है उससे सलाह लीजिए, फिर दवाई लीजिए, अपने आप दवाई ना लीजिए। और हमारे केमिस्ट भाई भी कृपा करके ये दवाई ना दें, क्योंकि अब लीगली ये चीज होने वाली है सून इस देश में भी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं दी जाएगी,
1: नहीं दी जाएगी। एक श्रोता लाइन पर है। हेलो,
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैम
1: जी, अपना
2: बात कर रही हूँ।
1: जी जी,
2: कांगड़ा से।
1: जी जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे प्रश्न कीजिए।
2: डॉक्टर, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग
2: सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी आजकल जैसे छोटे बच्चों में शुगर ज्यादा देखी जा रही है आजकल के टाइम में, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन हालांकि हम हिमाचल के बंदे हैं, हमें शुगर नहीं होने चाहिए क्योंकि हम बहुत मेहनती बंदे हैं, तो ये शुगर ज्यादातर जो यंग बंदे हैं उनमें ज्यादा देखी जा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है सर?
0: आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। इसका सिंपल कारण फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन आ गई है इससे बच्चों ने चलना फिरना बंद कर दिया है, जो जंक फूड बाजार में आ गया है, जो जो ये जिसको मैं बोलता हूँ सतेली माँ, पैसे देके जो हम खरीदते हैं बाजार से, ये बहुत हानिकारक है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं भी बड़ा चिंतित हूँ कि 18-20 साल की उम्र में जनते बच्चों में शुगर हो रही है, जिसको इन्फेंटाइल डायबिटीज बोलते हैं, और जो यंग बच्चे हैं उनमें शुगर हो रही है। तो उसका मेन कारण है लाइफस्टाइल, जो हमारा जीवन शैली जो बदल गई है। तो इसके लिए हमें जो माँ बाप हैं उनको ही बार बार ये कह रहा हूँ कि उनको वातावरण अपने घर का बदलना पड़ेगा, हमें खान पान वैसा ही रखना पड़ेगा जैसे मैं बार बार इस प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, स्क्रीन से बचना पड़ेगा। शुगर भी आ रही है और सफ़ेद मोती है और काला मोती है, 25-30 साल की उम्र में आ रहा है, 25-30 साल के। तो उसमें यह है कि जितना हम सृष्टि से जुड़ेंगे, भगवान से, यानी बाहर जाएंगे, घरों के जो अपने आप को कैद कर रखा है उसे बाहर निकलिए, तो बीमारियां जल्दी करके नहीं लगेंगी। आप तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, बट बच्चों को बचाना पड़ेगा।
2: जी सर, बहुत
1: जी, और आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर वो उनमें फोकस की कमी होती है और हर वक्त थके थके रहते हैं, तो आप ये बताइए कि डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालता है?
0: आंखों के बारे में बोल ही चुका
1: जी।
0: अब जो मानसिक चिकित्सा से जुड़े हैं डॉक्टर, उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत बुरा हाल है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि आप जब, ये मैं नाम नहीं लूंगा सोशल मीडिया के, जब आप जाते हैं तो आपको कई बार कोई आपका दोस्त मित्र यदि यात्रा पे है तो आपका जेलसी होती है, वो कोई गाड़ी खरीदता है तो जेलसी होती है, फिर ऐसा ऐसा कंटेंट है
1: जी।
0: जो बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक है, वो आप सबको पता, तो उससे बच्चों की पर्सनैलिटी में तो चेंज आएगी
1: जी।
0: बच्चा जिस वातावरण में जैसा रहेगा, यदि आश्रम में रहता है, और पुराने जमाने में जो राजा थे वो बच्चों को क्यों महलों से दूर गुरुकुल भेज देते थे, इसी कारण। और आजकल हर घर एक महल की तरह तो है, संपन्न है
1: जी।
0: हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे सब घरों में सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने वातावरण घरों में पैदा कर लिया, ये हानिकारक है बच्चों के लिए, सबके लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।

0: तो टाइम आ गया है, ये तो मैं एक और दो लाइनें और बोलना चाहता हूँ
1: कि
0: यदि या तो अपने घर को आश्रम बना डालिए, उसमें से ये एसी और टीवी उड़ा दीजिए, टेबल चेयर खाना पौष्टिक, या बच्चे को आपको ऐसे स्कूल में भेजना पड़ेगा जो आश्रम जैसा हो, तो ही हम बदल सकते हैं।
1: तो एक तरह से आपकी बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें बातें सिखाई थी, जैसे सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, सुबह की सैर के लिए जाना है या शाम को सैर के लिए जाना है, धूप में भी बैठना है, वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही संतुलित भोजन, घर का बना भोजन जो खाना है
0: बहुत ज़रूरी है जी। हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे,
1: हाँ जी,
0: लेकिन अनुभवी थे
1: जी।
0: और आजकल पढ़े लिखे बहुत हैं, डिग्रीज बहुत हैं, लेकिन अनुभव नहीं है
1: जी।
0: और मैं ये बोलता हूँ जो आज की यंगर जनरेशन है उनकी विजडम बहुत अच्छी है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, पर उनको अनुभव से सीखना चाहिए
1: जी, जी।
0: यदि कोई बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं उससे सीखना चाहिए, जो आर्टिफिशियल दुनिया हमने बना रखी है
1: जी।
0: उससे थोड़ा दूर रहें
1: जी।
0: जितना दूर रहें, जितना सृष्टि से नेचर से जुड़े, भगवान से जुड़े, उतना ही अच्छा है स्वास्थ्य के लिए
1: जी। एक और श्रोता लाइन पर है जी, संपर्क उनसे टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, एक ये भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे हाथ में ही जानकारियों का भंडार आ गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन जो कंफ्यूज हो जाती है कि हम कौन सी बात सच माने, कौन सी बात झूठ माने, तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और कई बार होता है कि माता पिता कुछ बता रहे हैं वो नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, लेकिन खुद से प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद उसके प्लस माइनस जो भी आता है फिर वहाँ से सीखते हैं, तो वो भी आज के समय में काफ़ी हानिकारक है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: और वापस विषय पर लौटते हैं तो एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि कई बार फ़ोन हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम स्क्रीन को साफ़ नहीं करते, और ऐसा भी सुनने में आता है कि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फ़ोन के साथ ही होते हैं, इसकी स्क्रीन के साथ। तो ऐसे में आप ये बताइए कि स्क्रीन का गंदा होना या स्क्रीन का धुंधला होना आंखों पर कितना दबाव डालता है?
0: बिल्कुल ठीक बात है जी, कोई भी चीज़ साफ़ नहीं रखेंगे तो ही हम बोलते हैं कि हाथों को बार बार धोइए, स्क्रीन को साफ़ रखिए। बिल्कुल ठीक बोला, और कुछ सॉल्यूशंस भी हैं स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, उनको भी यूज़ करिए। और आजकल तो हमारा जो जो ये ऋतु है वर्षा ऋतु, इसमें तो बैक्टीरिया वायरस और भी पनपता है, आई फ्लू बहुत फैल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो बार बार आंखों को धोइए, हाइजीन अपनी भी अच्छी रखिए और फ़ोन की भी अच्छी रखिए, बड़ा ज़रूरी है
1: जी। जी, और डॉक्टर साहब, अब समय तो हमारा कार्यक्रम का समाप्त होने ही वाला है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने श्रोताओं को जिस वक्त आपको सुन रहे हैं कि उन्हें डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: एक संदेश तो ये है इसकी कि अपने बच्चों को बचाओ
1: जी,
0: इसकी एडिक्शन से बचाओ, जितना हो सके अपने आप एक उदाहरण स्थापित करिए अपने घर के अंदर कि उनके सामने स्क्रीन ना देखें। मैं बच्चों के बारे में चिंतित हूँ, उनकी नज़रें ठीक रहनी चाहिए, भगवान ने हमें इतना अच्छा हमारी गोदी में बेटी हो बेटा देते हैं जिसके लिए हम तरसते हैं, जब उसको लेने के लिए इतना तरसते हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति हम ज़रूर हमारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। डिजिटल जो स्क्रीन है बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, बार बार बोलता रहूँगा, रोज़ बोलता हूँ, तो उससे बच्चों को बचाइए। और जो बड़े लोग भी हैं वो भी अपनी आंखों की एक्सरसाइज करिए, जब ही यूज़ करें आप स्क्रीन को, बहुत ज़रूरी है, आपने बैंक ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ नॉलेज लेनी है, आपने काम करना है उसके लिए, पर मनोरंजन के लिए इसको यूज़ ना करें। अपने शरीर को हिलाइए, बाहर जाइए, आंखों को हिलाइए, आंख को झपकते रहिए, आंखों को बचाइए, क्योंकि सृष्टि है तो दृष्टि है तो सृष्टि
1: जी, जी, जी।
0: दृष्टि है तो सृष्टि है, यदि सृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है
1: जी, जी।
0: तो यही मेरा संदेश है, अपनी आंखों को बचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी धर्मशाला का, और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया सब मिलके हम अपनी आंखों को बचाएं, यही मेरा संदेश
1: जी। जी, और डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद
1: जी। श्रोताओ, डॉक्टर संदीप महाजन ने हमें कितनी ही पते की बातें बताई, लेकिन हम भी चलते चलते यही आपसे कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया से जुड़िए, लेकिन अपनी सेहत से नाता मत तोड़िए। आंखें हैं तो इस खूबसूरत दुनिया के सारे रंग हैं, और डॉक्टर साहब की सलाह और जानकारी को याद रखिए, अपनी स्क्रीन लाइफ को ग्रीन लाइफ में बदलिए। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला सुरेंद्र कपूर से।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
4: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
3: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
3: वो कैसे?
4: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
3: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
4: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
3: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
4: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
3: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
4: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
5: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: गीतों का कारवा लेकर हाजिर हो चुकी है आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण और सभी श्रोताओं को हमारा सुप्रेम नमस्कार।

खट्टा मीठा फिल्म से अगला गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। केके और सुनिधि चौहान की दिलकश आवाजें, इरशाद कामली के बोल हैं, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

गीतों का कारवा ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज अब आप सुनेंगे दामिनी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, संगीत नदीम श्रवण का, बोल समीर के।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत

0: पैरवी का परिणाम है।
1: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एक और खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं के लिए चुनकर लाए हैं फिल्म मृत्युदाता से। मोहम्मद अजीज, विनोद राठौर और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजें हैं। समीर की बॉल और संगीत से सजाया है आनंद श्रीवास्तव ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। हिम्मतवार फिल्म से बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की आवाजें हैं। संगीत से एक बार फिर से सजाया है इस गीत को नदीम श्रवण ने।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब सुनिए लक्ष्मी की आवाज में ये हिमाचली लोकगीत।

पहाड़ों की सुर, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब सुनिए मंजू चिश्ती की आवाज को।

नरोत्तम कुमार की आवाज में गाए इसी अंतिम लोकगीत के साथ हमारा आज का हिमाचली गीत और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर यहीं पर

संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के मंदिरों में सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी दान पात्र टेम्पर प्रूफ किए जाएंगे और उन पर भी यूनिक पहचान नंबर होगा तथा इनमें मल्टी की प्रणाली अपनाई जाएगी। दान पात्र खोलने और चढ़ावे की गिनती जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित समिति की मौजूदगी में होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को जरूरी किया गया है। निर्देशों के अनुसार मंदिर में चोरी, हेराफेरी या छेड़छाड़ की किसी भी घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और सरकार को देनी होगी। आभूषणों का हर तिमाही में भौतिक सत्यापन और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट मंदिर के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से मांग की है। इस संबंध में केंद्र सरकार को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र गरीब बुजुर्गों को ₹200 तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रतिमाह प्रदान करती है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पात्र बुजुर्गों को 1,100 और ₹1,700 प्रतिमाह पेंशन दे रही है। जनजातीय जिला किन्नौर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों और बागवानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से उच्च तकनीकी पौधशालाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जिले में गुणवत्तापूर्ण फलदार पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: योजना के अनुसार बड़ी पौधशाला 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्र स्थापित करने वाले किसानों, बागवानों या संस्थानों को 40% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रति हेक्टेयर 12 लाख तक की सहायता का प्रावधान है, जबकि 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम 24 लाख तक सहायता उपलब्ध होगी। बागवानी विभाग के अनुसार किन्नौर में फल उत्पादन मुख्य रूप से सेब आधारित है और यहाँ के बागवानों की आजीविका बागवानी पर निर्भर है। इससे स्थानीय युवाओं को पौध उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे तथा जिले में आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत उच्च तकनीकी पौधशालाओं का प्रत्यापन करवाना भी आवश्यक होगा। अंतिम किस्त जारी होने के 18 माह के भीतर पौधशाला का प्रत्यापन पूरा करना अनिवार्य रखा गया है। किन्नौर के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में यह योजना बागवानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि एस जानकी अम्मा की मधुर धुनें आने वाले वर्षों में भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। मोदी ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और संपूर्ण संगीत जगत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का

0: प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। मंडी जिले के बल उपमंडल का तमरोह क्लस्टर अब जापानी फल यानी परसीमन की व्यावसायिक खेती के लिए नई पहचान बना रहा है। एचपी शिवा परियोजना के तहत यहां करीब 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय फ्यू किस्म के 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे मंडी जिला संवाददाता से।
1: एचपी शिवा परियोजना के तहत यहां करीब 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय फ्यू किस्म के 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 12,500 हेक्टेयर में लगभग 7,500 पौधे रोपे जा चुके हैं, जबकि शेष पौधारोपण शीतकालीन मौसम में किया जाएगा। इस परियोजना से अब तक 76 किसान जुड़ चुके हैं। किसानों को पौधे के साथ ड्रिप सिंचाई, सोलर फेंसिंग, तकनीकी प्रशिक्षण और वैज्ञानिक बागवानी का मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2 और 3 लाख लीटर क्षमता के जल भंडारण टैंक भी स्थापित किए गए हैं। तमरो क्लस्टर न केवल जापानी फल उत्पादन का नया केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बागवानी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: चंबा जिला की प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस यात्रा का आयोजन हर वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले साल यात्रा के दौरान भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए मणि महेश ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार वाया कुक्ती मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि यहां से प्राचीन परंपरा से आने वाली छड़ी यात्रा को ही अनुमति रहेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नर्मदा शर्मा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रीमती निष्ठा वासन जी से, जो कि आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आप धर्मशाला के निवासी हैं। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं।
1: हाँ नर्मदा जी, मैं धर्मशाला की ही निवासी हूँ। मैं यहाँ बड़ोल में रहती हूँ और मैं एक रिटायर्ड अध्यापिका हूँ। मेरा लगभग नौकरी का जो समय है वो 31 साल तक रहा है और बहुत अच्छा समय था हमारा, क्योंकि उस समय वॉक टॉक और चौक का टाइम था
0: जी।
1: और वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था, अच्छा लगता था पढ़ाना भी और बच्चों को हम लोगों से पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था।
0: अच्छा, कितने साल हो गए आपको सेवानिवृत्त हुए?
1: मुझे सेवानिवृत्त हो गए लगभग दो साल
0: हुए अभी। अच्छा, तो वो पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो बचपन का टाइम था वो कैसा रहा और कैसे आप उस समय को आज भी याद करती हैं?
1: नर्मदा जी, हमारा बचपन का समय बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग मिलजुल के रहते थे। ये नहीं पता होता था कि ये गली का लड़का है या गली की लड़की है
0: जी।
1: बहुत प्रेम भाव होता था, एक भाई बहन वाली भावना होती थी। और शाम को टाइम, मतलब हम लोग देखते थे कि कब घड़ी की सुइयां आएं और 4 बजे हम लोग बाहर निकल जाएं और हमें खेलना है। और हम दौड़ दौड़ के खेलते थे, रेत में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। ऐसी कोई सेंसिटिविटी थी नहीं, ना पेरेंट्स में ना बच्चों में, कि हाँ कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। माहौल बड़ा साफ सुथरा था।
0: सबसे बड़ी बात जो है वो यही है, आज का और उस समय का जो फर्क हम महसूस करते हैं कि कोई रोक टोक नहीं होती थी।
1: जिन बातों के लिए नर्मदा जी होनी चाहिए वो तो थी, लेकिन ये है कि खेलते हम खुलेआम थे, बचपन का टाइम था।
0: हाँ।
1: भावनाएं बड़ी साफ सुथरी थी,
0: बिल्कुल,
1: और विचार बड़े सुच्चे थे सब लोगों के।
0: वही कह रही हो ना कि अपना जो मोहल्ला था तो उसमें एक घर की बेटी है तो वो मतलब पूरे मोहल्ले की बेटी है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा माहौल रहता था।
1: हाँ बिल्कुल नम्रता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि एक मोहल्ले की बेटी, क्या एक कॉलोनी की बेटी जो है वो पूरी कॉलोनी की बेटी ही होती थी।
0: जी जी।

0: स्कूल में छुट्टी होती थी तो हम लोग इकट्ठे घर आते थे। अगर एक भी छूट जाता था तो स्कूल के मतलब अपनी कॉलोनी के लड़की लड़के पहले काउंट करते कि हम लोग पूरे हो गए ना
1: जी,
0: चलो जी अब चलते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल दूर हुआ करते थे,
1: दूर हुआ करते थे। और जो समय है आज का, इसके साथ अगर हम तुलना करें तो आज अगर 10-15 मिनट का रास्ता भी है तो भी पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं बच्चों को। और वो समय ऐसा होता था कि हम लोग पैदल जाते थे, जैसे सभी लोग मिलके इकट्ठे, और कितनी भी दूर, कितने कितने किलोमीटर दूर स्कूल होते थे तब भी, क्योंकि पहले इतने पास पास स्कूल नहीं होते थे। आजकल तो हर 100 मीटर पे स्कूल
0: है, हर 100 मीटर पे स्कूल है
1: जी।
0: ठीक बोल रही हैं आप, वही वाली बात है नर्मदा जी, आज का समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पेरेंट्स बहुत पॉजेसिव हैं
1: जी,
0: क्योंकि बच्चे बहुत कम,
1: बच्चे कम,
0: एक एक दो दो घरों में बच्चे हैं, पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि असली प्रॉपर्टी यही है, और उसका थोड़ा सा इफेक्ट अलग से जा रहा है। बच्चों को आदत हो गई हुई है पेरेंट्स के हर चीज के साथ चलने की, और पेरेंट्स को आदत हो गई है हर बच्चे के साथ चलने की।
1: बिल्कुल,
0: हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमें खुला छोड़ा जाता था।
1: थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं हम कि ये भी फर्क है कि जो दुर्घटनाएं मैं कह सकती हूँ कि अब हो रही हैं, जो घटनाएं अब घट रही हैं, वैसा भी कुछ नहीं होता था पहले।
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना कि उस समय बचपन होता था
1: जी।
0: आज के समय में टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इतना ज्यादा मतलब एडवांस कर दिया है कि बच्चों में बचपन खत्म हो गया।
1: बिल्कुल,
0: बचपन रहा ही नहीं बच्चों में। अब बच्चे इतने मैच्योर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसी मैच्योर बातें करते हैं
1: जी।
0: और ऐसे ऐसे जवाब भी कई बार दे देते हैं पेरेंट्स को। हम लोग सुनते हैं, बींग टीचर हम लोग देखते थे, कई बार सामने सामने उलझ भी जाते थे बच्चे पेरेंट्स के साथ। ऐसा हमारे समय में नहीं होता था, क्योंकि एक गैप था और पता होता था कि पेरेंट्स के सामने कौन सी बात करनी है, और टीचर्स का भी डर होता था,
1: डर होता था।
0: आज वो समय बिल्कुल खत्म हो गया।
1: आज तो टीचर डांट भी नहीं सकते हैं बच्चों को, और उस समय खूब पिटाई भी होती थी है ना।
0: तभी तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते थे है ना, इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता था। आज तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी होता है कि नहीं अगर इसके इतने मार्क्स आए हैं तो मेरे बच्चे के इससे ज्यादा आने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं आज के जमाने में।
1: आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कौन कौन सी खेलें खेलती थी।
0: नर्मदा जी, हम लोग तो देखो लड़कियां थी ना, तो हम लोग खो खो खेल लेते थे। जब चार लड़के भी आ गए मोहल्ले के तो हम पिट्ठू बड़ा इंजॉय करते थे, छुपन छुपाई बड़ी इंजॉय करते थे है ना, रेत के घर बनाते थे हम लोग और देखते थे कि किसका घर सबसे ऊंचा हो गया और किसका घर सबसे नीचे है
1: जी।
0: तो इन चीजों को हम बहुत इंजॉय करते थे। आज के बच्चे उस चीज को नहीं इंजॉय कर पा रहे, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चे उसी के साथ लगे रह रहे हैं,
1: समय ही नहीं है बच्चों के पास,
0: समय ही नहीं है,
1: घर आते ही पढ़ाई फिर से करनी है।
0: और नर्मदा जी एक बात और है ना, हमारे समय में कहां जिम का जमाना था
1: जी। बिल्कुल,
0: हम लोग दौड़ कूद के ही अपना जमाना, यही जिम था,
1: यही जिम होता था।
0: आज बच्चे जिम में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो घर में कुछ काम करें, पेरेंट्स की हेल्प करवाएं या कुछ गार्डनिंग का काम कर लें, वो उनको अपनी डिग्निटी से बहुत डाउन काम लगता है।
1: तो आप इसमें मतलब किसको दोषी मानती हैं, कि बच्चों का कसूर है या पेरेंट्स का?
0: नर्मदा जी, दोष तो समय का है, समय का इसलिए दोष है कि अब वो समय रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे कम हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग दौड़ दौड़ के इसी पे आश्रित हैं, क्योंकि अगर बच्चा 5 मिनट ट्यूशन के लिए लेट हो गया तो भी मुसीबत है। हमारे टाइम में ट्यूशन को एक बड़ी मतलब ऐसे समझा जाता कि हाँ उसने ट्यूशन लगाई हुई है, माय गॉड यार क्या हो गया इसको है ना। आज तो वो जमाना खत्म हो गया, तो हम किसको दोष दे सकते हैं? स्ट्रेस को ही दोष देंगे कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है बच्चों को कि पेरेंट्स उसको रिलीज नहीं कर सकते, बल्कि और ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं इसीलिए कि नहीं कंपटीशन बड़ा ज्यादा है,
1: अपेक्षाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं।
0: अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा हैं, और कुछ बच्चे भी देख सुन के अपने आप को समझते हैं कि नहीं हमें इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। उस दौड़ में क्या है कि वो बस एक किताबी कीड़ा बन के रह जा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां तक मेरी भावना है।
1: दूसरी
0: बात ये है कि उनके शरीर का कोई एक्सरसाइज नहीं है, मानसिक संतुलन जो है एक लेवल तक है, क्योंकि हम लोग चार लोगों में जाते थे, बातें करते थे, सुनते थे, समझते थे एक दूसरे को। आज बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही बात करते हैं, फेसबुक से बात करते हैं,
1: मिलना जुलना कम,
0: मिलना जुलना रहा ही नहीं, बहुत कम हो गया बच्चों का। ट्यूशन है, ट्यूशन पे जाके सिर्फ पढ़ेंगे, चलो पढ़ा तो भी ठीक है, जो ना पढ़ पाए वो भी ठीक है, लेकिन टाइम सारा मतलब बाउंडिंग्स बहुत ज्यादा हैं टाइम
1: जी। अच्छा, आपने बताया कि आप शिक्षिका रही हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली?
0: नर्मदा जी, मैं इस विभाग से बहुत

0: ज्यादा संपर्क में रही, क्यों कि मेरे मदर भी टीचर थे
1: अच्छा
0: उस समय में
1: जी, जी।
0: और वो रिटायर हुए एज ए प्रिंसिपल। तो जब मम्मी हमें घर आके कोई बातें सुनाते थे तो हमारा मन मचलता था कि हम भी कभी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो चलो बहुत अच्छी एजुकेशन हमने भी ली, पेरेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी,
1: बिल्कुल।
0: तो चलो आज तक इस मुकाम तक इसीलिए पहुंची हैं, ड्यूटी ओवर पेरेंट्स एंड माँ को देख के। माँ का बड़ा ज्यादा रोल,
1: माँ का बहुत बड़ा
0: बहुत ज्यादा रोल
1: है।
0: था।
1: हर माएँ सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मतलब माँ बाप दोनों ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी आगे निकले।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो क्या आपके उस जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद हो?
0: मेरे जीवन की बात ये है कि उस समय नर्मदा जी हमने एनसीसी ले रखी थी।
1: अच्छा।
0: तो एनसीसी में मुझे स्टेट में अकेले पैराशूट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।
1: अच्छा।
0: और मैंने वो आगरा में करी, 35 दिन का था। और मेरे आने पर जब मैं वो सक्सेसफुल होके आई, सर्टिफिकेट लेके आई, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑनर मिला मेरे को। रेडियो स्टेशन में बुलाया गया, वहाँ एक्चुअली मेरा संपर्क वहीं से जुड़ा था स्टेशन के साथ, तो बड़ा अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया गया। तब टीवी नए नए चले थे, तो मतलब बड़ा ऑनर मिला। वो पल मुझे भूलते नहीं है कि कैसे उन्होंने मेरे को कोट पैंट ऑफर किया, फिर 26 जनवरी की परेड में मैं वो पहन के गई, फिर मेरा वहाँ पे बकायदा अनाउंस हुआ कि ये आज की हमारी स्टेट की सबसे बड़ी और बहुत जो भी था, चलो अच्छी या कैसे भी करके ये हमारे स्टेट को इसने रिप्रेजेंट किया और सक्सेसफुल होके आई है। तो वो समय भूलता नहीं है, वो टिल डेथ चलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो ये यादें होती हैं जो हम संजो कर रखते हैं ना, कब कब कौन से हमें प्राइज मिले, किसने अप्रिशिएट किया।
0: हाँ।
1: तो ये जो काम होते हैं याद रहते हैं जिंदगी भर। तो अब आप सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो अभी का समय जो है वो आपका कैसे बीत रहा है?
0: नर्मदा जी ऐसा है ना कि नौकरी में बंदा एक्टिव रहता है, दौड़ता है, भागता है, हर चीज को मैनेज करके रखता है ना। लेकिन सेवानिवृत्ति का भी एक टाइम उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा ही हुआ है, क्योंकि उस समय फिर इंद्रियां थोड़ी थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जो स्मार्टनेस है ना वो बॉडी में रहती है
1: वही ना, तो आप
0: एक डिसिप्लिन बना रहते हैं
1: और किसी ना किसी गतिविधियों में तो जुड़े ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर हमने देखे कि वो रिटायर हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, या घर में कोई मेड आती है उनके बच्चों को पढ़ाना, या कुछ मतलब किसी ना किसी जो सोशल वर्क जिसको हम बोल सकते हैं उनमें जुड़ी रहती हैं। तो अपने अपने तरीके से हर कोई अपना समय जो है व्यतीत करता है, तो वो आप कैसे करती हैं?
0: जैसे मैं रिटायर अभी नहीं हुई थी तो
1: अच्छा।
0: मैंने इनर व्हील एक संस्था है, मैं इनर व्हील के साथ जुड़ी
1: अच्छा।
0: पहले ही जुड़ गई थी मैं।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: तो उसका संपर्क ज्यादा ये है कि स्कूलों के साथ ही होता है, तो चलो बच्चों को भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं जितना
1: जी जी।
0: हो पाए, है ना।
1: हाँ, मैंने सुना है उनका लड़कियों की शादियों में भी काफी कुछ दान देते हैं, सहयोग देते हैं।
0: और पिछले साल मैं प्रेसिडेंट भी रही हूँ इसकी।
1: अच्छा।
0: और मैंने रिप्रेजेंट किया अपने क्लब को
1: जी।
0: और काफी अच्छा गया मेरा टेन्योर। और यही है कि स्कूलों के साथ जुड़ के रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो स्कूल ही बसा होता है कि बच्चों के साथ जुड़ के रहो, इनकी हेल्प करो, है ना, जितना भी हो सके इनके साथ इनको गाइड करो।
1: बिल्कुल।
0: ये मिस गाइड अगर हैं तो इनकी काउंसलिंग करो, तो वो मैं अंदर मेरे आज भी है।
1: हाँ, वही ना, वो जो टैलेंट आपके अंदर है तो
0: हाँ,
1: वो आप औरों को बताएंगे, समझाएंगे उनको। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुछ लिखती भी हैं।
0: हाँ नर्मदा जी, मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ।
1: तो ये कब से शौक है आपको लिखने का?
0: ये शौक मेरा शुरू से ही था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि मैं बताया मेरे मदर टीचर थे, संस्कृत के टीचर थे वो।
1: अच्छा।
0: और वो बहुत अच्छा लिखते थे।
1: ठीक।
0: तो स्कूल में कोई थॉट लिखना होता था तो मेरा इंतजार होता था कि आज मेरे मदर का नाम था श्रीमती तारा देवी।
1: अच्छा जी।
0: तो कि आज तारा बहन जी की बेटी ने बोर्ड पे पता नहीं क्या लिखना है।
1: अच्छा।
0: तो मैं होता तो माँ का ही पीछे बैग था,
1: लेकिन
0: मैं लिखती थी, आज का थॉट मैं कभी दोबारा रिपीट नहीं करती थी।
1: अच्छा।
0: तो वहीं से मेरे अंदर ये भावना आई लिखने की, तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ।
1: अच्छा, तो हमारे श्रोताओं के लिए आज कुछ सुनाएंगी आप?
0: हाँ, मैं ज़रूर, मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत लिखने की। तो मैं ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है ना
1: जी जी,
0: इनके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है कि घबराना
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: ठीक,
0: बहुत अच्छी है। ऐसा है ना कि एक तरफ तो हम निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी जिंदगी तो सट के बाद शुरू हुई है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि पहले तो हम ऐसे ही भागते, दौड़ते, कूदते, उधर बच्चे लेके जा रहे हैं, आज उधर बच्चे
1: जिम्मेदारियां बहुत होती,
0: स्कूल की जिम्मेवारियां, और घर में आना तो घर का बस ऐसे आके चुन्नी टांगनी और फटाफट किचन देखना कि बच्चों का खाना लेट ना हो जाए, घर के बुजुर्ग

0: जो है इनको हर चीज़ टाइमली मिलनी चाहिए, और
1: और
0: अपने आप को हमने इग्नोर किया।
1: बिल्कुल, और ये टाइम ऐसा होता था कि तब कोई हेल्पर भी नहीं होते थे घर पे,
0: नहीं
1: है
0: होते
1: ना,
0: थे हेल्पर, बिल्कुल
1: खुद ही
0: नहीं
1: करना
0: होते
1: होता
0: थे,
1: था सारा
0: हम
1: काम।
0: सब काम खुद ही करते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: और अब मुझे ये फील होता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है।
1: जी
0: मेरे
1: बिल्कुल
0: ख्याल में हर जो सीनियर सिटीजन है, हर किसी के मन में यही है कि 60 साल के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है,
1: बच्चों की
0: क्योंकि
1: शादियां हो गई होती हैं
0: बच्चों
1: या
0: की शादी,
1: जॉब कर रहे होते हैं
0: हाँ
1: बच्चे,
0: बिल्कुल
1: तो आप
0: बिल्कुल
1: फ्री होते हैं।
0: फ्री हो जाते हैं हम लोग,
1: हाँ
0: चलो घर बन चुके होते हैं,
1: जी,
0: बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट हो जाती
1: हो
0: है,
1: गई होती है।
0: शादियां भी चलो टाइमली हो ही जाती
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: बच्चों
1: हाँ
0: की,
1: हाँ जी
0: लेकिन कुछ लोग जो है ना वो अपना मन मार के बैठ जाते हैं कि नहीं अब हम सट के हो गए हैं, अब नहीं।
1: जी
0: मैं कहती हूँ नहीं, सट के बाद ही ज़िंदगी शुरू हुई है, अपने आप को स्ट्रांग रखो।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं,
1: जी,
0: मैं उम्मीद करूँगी श्रोताओं को ज़रूर अच्छी लगेंगी।
1: जरूर जरूर।
0: अब तो वो मुकाम है कि हर किसी के लिए दिलदारी रख, दिल ना दुखे किसी का बस इतनी सी समझदारी रख, जीवन के इस पड़ाव पर हटकर पहचान वाली कलाकारी रख, सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, ये सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, फिर भी जुबान पे एक प्यारी सी मुस्कान रख, बस यूं ही जिंदगी चलती है, और चलते रहो वक्त के साथ, थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, ठोकरें खाकर भी संभलते रहो, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, अकेले में भी थोड़ा मुस्कुराना सीखो, छोटा सा जीवन है, बस फूलों की तरह महकते और मुस्कुराना सीखो।
1: बहुत
0: बस
1: अच्छी।
0: यही चंद लाइनें मैंने लिखी थी कि ये मेरे जो साथी हैं उनको थोड़ी सी प्रेरणा हो जाएगी।
1: चलिए, ये तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका बहुत खूबसूरत सा संदेश हुआ। अपने युवाओं के लिए और जो शिक्षक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं युवाओं को यही कहूंगी कि वैसे तो हम मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये कर रहे हैं, वहां दान दे रहे हैं, सब कुछ है ना, लेकिन जो घर में तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, उनके आशीर्वाद लो, वो
1: बिल्कुल
0: असली दान है,
1: जी,
0: उनका सहयोग दो, उनको समय दो, वो असली दान। मैं
1: बिल्कुल
0: युवाओं को यही संदेश दूंगी कि उनको थोड़ा, ठीक है समय के साथ थोड़ा सा इंसान, मैं वहमी तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि वो अकेलापन महसूस करता है, उस महसूसियत को थोड़ा सा कोऑपरेट करो।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर घर
0: हाँ
1: में बुजुर्ग हैं तो
0: बिल्कुल
1: उनके साथ वो कुछ चाहते नहीं है ना, उनको
0: बिल्कुल
1: ये रहता है कि हमारे साथ कोई थोड़ा सा समय बिता ले,
0: बस
1: हमारे साथ बातचीत करे, है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: अपना सुबह शाम के वक्त में से थोड़ा सा टाइम उनके लिए दें,
0: बिल्कुल बहुत जरूरी
1: है
0: है,
1: ना,
0: बहुत
1: उनका और
0: जरूरी।
1: हाल चाल पूछ लिया, थोड़ी देर उनके साथ समय बिता लिया। कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हमने देखे कि अकेले रहते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ कभी कहीं गए और वो अकेले रहते हैं तो फिर वो उठने नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और बैठे,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तब ये
0: बिल्कुल
1: चीज़ महसूस होती है कि ये कितने
0: हाँ
1: प्यासे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे अपने
0: बिल्कुल,
1: जो हैं, जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जो टाइम है वो उनके
0: कहीं
1: साथ
0: ना कहीं
1: बिताएं।
0: नर्मदा जी हमारे बच्चे भी मजबूर हैं, क्योंकि आज कमाई का साधन बड़ा टफ हो गया है, बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन काम करना मुश्किल है, काफी टफ है, तो हमें भी बच्चों को वहाँ कोऑपरेट करना है। हाँ ये है कि संस्थाएं ज्वाइन करो, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ के, उनको चाहिए किसी संस्था के साथ जुड़ जाएं, और वो लोग आते हैं घर में, करते हैं बातचीत, ऐसी कोई
1: हाँ,
0: बात नहीं,
1: ये
0: इनकी
1: एक
0: पिकनिक्स
1: अच्छा
0: ऑर्गेनाइज करते हैं।
1: साधन है, ये अच्छा एक,
0: हाँ
1: क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ उनका आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: सभी एक ही मिलती जुलती आयु के होते हैं,
0: बिल्कुल
1: सेवानिवृत्त
0: बिल्कुल
1: होते
0: बिल्कुल, अपने
1: हैं।
0: अपने एज ग्रुप के होते हैं, अच्छा लगता है, और उस साइड पे ही ज्यादा हमें जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी कसूर कम है, लेकिन जहां तक हो सके बच्चों को जरूर साथ देना चाहिए, पेरेंट्स का थोड़ी बातचीत, हाल चाल पूछने से ही काफी ज्यादा पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब खुश भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें पूछा।
1: अब वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है, ऐसा तो थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और, कि कई बार हम मार्केट में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अकेले चले होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को मतलब समझना चाहिए कि अगर उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो खुद लेके जाएं, छुट्टी ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना बिल्कुल इस मतलब इस तरह से वो बिजी रहते हैं कि बिल्कुल भी टाइम, अगर उनके अपने बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चा बीमार है तब भी तो टाइम निकालते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: मुझे जब मैं देखती हूं तो मुझे बड़ा दुख लगता है इस
0: नहीं
1: चीज का।
0: नर्मदा जी, ये कारण, ये बात ही दुख वाली है कि पेरेंट्स अकेले चले हुए हैं, इस एज में कई बार चक्कर आ जाता है, कई बार इंसान थक जाता है, कई बार पसीने से वो, थोड़ा सा बच्चों को, आप ठीक बोल रहे हो, सोचना चाहिए, समय देना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे बुजुर्ग एक

0: ऐसी चीज है ना कि जो समय निकल गया या हाथ से बंदा निकल गया, बाद में रोने का धोने का कोई फायदा नहीं होता। ये सब काशी विश्वनाथ सब कुछ यही है जो हमारे घर के अंदर है, इसी
1: बिल्कुल।
0: की पूजा करो, यही असली संसार है।
1: और बहुत सारे परिवार ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने बुजुर्गों को साथ रखते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं, वो उन्हीं का आशीर्वाद होता है कि,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: नम्रता जी, दुआएं कभी बेकार नहीं जाती।
1: जी।
0: कहते हैं दुआ और बददुआ दोनों रंग दिखाती हैं, लेकिन बददुआ बहुत जल्दी रंग दिखाती है। दुआ प्रभु समेट के रख लेते हैं कि तेरे को वक्त पे मिलेगी, इसका जवाब तेरे को वक्त पे मिलेगा, तो वो फलते हैं, ऐसी
1: अच्छा
0: बात
1: चलिए,
0: नहीं।
1: अब चलते चलते आप अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है और जब भी याद आती है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो आप बांटना चाहें।
0: हाँ नर्मदा जी, ये तो है, बचपन ही है। बचपन सबको अच्छा लगता है, या कुआरापन सबको अच्छा लगता है, क्योंकि
1: जी
0: वो एक फ्री लाइफ होती है।
1: बिल्कुल।
0: मैं वैसे बेसिकली जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी
1: अच्छा
0: और बड़ा डिसिप्लिन्ड लाइफ थी, और अच्छा लगता था वो सारा। वही मैं वही याद करके रह जाती हूँ कि देखो हमारे घरों में ऐसे होता था। आज वो सारा मतलब खत्म ही हो गया, सारा कोई सिस्टम। हमारा पढ़ाई का अंदाज खत्म हो गया, हमारा खेलने का अंदाज खत्म हो गया, हमारी साफ सफाई का या जो भी कैसे भी कर लो, हमारी दोस्ती का एक अंदाज साफ सुथरा सब खत्म हो गया। वो सब याद आता है कि आज के समय में और उस समय में बड़ा फर्क था, वो समय वाकई मेमोरेबल था।
1: तो निष्ठा वासन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जो जीवन है उसके बारे में जान के। अब अपने परिवार के बारे में बताएंगी, आप कौन कौन है आपके परिवार में?
0: मेरे इधर वाले परिवार में मेरे हस्बैंड हैं
1: जी
0: और मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी MSc टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी,
1: जी
0: मैरिड है जम्मू में।
1: अच्छा
0: और यहाँ बेटा मेरा, हमारा ऑप्टिकल्स का बिजनेस है और वो यहीं पे हैं। उन्होंने मतलब दृष्टि के उसमें ही अच्छे से वो एजुकेशन ली हुई है। और एक मेरी बहू है, मेरा नाता पोता सब
1: सब
0: हैं।
1: हैं, छोटे छोटे
0: हाँ,
1: बच्चे। तो
0: छोटा सा
1: कैसा लगता
0: परिवार
1: है, अब
0: है।
1: दादी हैं, नानी हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। इस स्टेज पे तो यही चीज़ें अच्छी लगती हैं
1: बिल्कुल।
0: कि बच्चे खुश रहें, खेलें हमारे साथ, है
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ हाँ
0: तो उनके साथ तुतली तुतली भाषा में बात बात करो तो ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों का इतना बचपन नहीं देख पाए, क्योंकि हम नौकरी में भी थे, कुछ हम परिवारों में भी बंधे हुए थे।
1: जी,
0: तो आज वो ऐसे लगता है कि वो बचपन वापिस आ गया, तो अच्छा लगता है।
1: बचपन वापस आ गया ऐसा महसूस करते हैं। और जो अपने बच्चों के साथ इतना टाइम आप नहीं दे पाते पाए होते हैं ना, तो उसको अपने वो जो दोते और पोते होते हैं उनमें देखते हैं। और
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बोलते हैं ना कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार उनके साथ
0: हाँ
1: होता
0: ये
1: है,
0: तो
1: दादा
0: पक्की,
1: दादी और नाना नानी
0: हाँ
1: को।
0: हाँ नर्मदा जी, ये पक्की बात है कि मूल से सूद प्यारा होता ही
1: जी
0: है ना।
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: कहीं ऊंचा भी रो पड़े तो हमें ऐसे लगता पता नहीं क्या हो
1: जैसे देखो, आपने डांटा होगा
0: गया।
1: अपने बच्चों को, लेकिन जब उनको कोई डांटता है तो आप अपने बहू बेटों को नाराज होते होंगे, या बेटी है आपकी तो उनको भी
0: बिल्कुल
1: नाराज
0: बिल्कुल,
1: होते होंगे ना।
0: नहीं
1: ऐसा
0: मैं नाराज तो नहीं होती उनको बिल्कुल भी, लेकिन ये
1: मतलब
0: है
1: उनको रोकते होंगे
0: कि
1: कि नहीं मत डांटो, या
0: ये
1: फिर
0: है कि अपने
1: बच्चे।
0: सुझाव देते हैं कि देखो
1: हाँ
0: इस समय इसको ऐसे तो ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाली घुट्टी दे दो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा ऐसे
1: वो तो
0: अच्छा लगता
1: होता
0: है घर
1: है
0: में।
1: घर में ये
0: हाँ
1: चीज़ें, जैसे पुराने तो जो
0: बिल्कुल
1: उनको एक्सपीरियंस होता था दादा दादी नाना नानी को,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: घर में क्या बच्चों को कौन सी बीमारी हो गई है तो क्या देना है, घरेलू नुस्खे जो हैं वो भी
0: हाँ
1: दादी नानियों को
0: बिल्कुल,
1: आते हैं,
0: दादी
1: तो
0: नानी को।
1: उनको अपना के भी बहुत। तभी इसीलिए बोलते हैं ना कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं दादा दादी नाना नानी के साथ रहने में
0: हाँ
1: कितना फ़ायदा होता
0: ये तो है,
1: है
0: ये
1: ना।
0: तो
1: और
0: है,
1: आजकल जो एकल परिवार हैं तो उनको कितनी मुश्किलें आती होंगी,
0: बिल्कुल जी। आज का
1: ना।
0: जमाना ये है ना नर्मदा जी, कि सारे कमाएं तभी घर चलता है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए हम लोग बच्चों को कहीं क्रच में छोड़ें या कोई हेल्पर रखें या कुछ कैसे भी करके, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, इसके दादा दादी नाना नानी घर में हैं, हम आज़ादी से जा सकते हैं।
1: जी
0: बेशक हेल्पर है,
1: हाँ,
0: लेकिन फिर भी उसको भी देख रेख करने वाला
1: देखना,
0: कोई
1: हाँ
0: है घर
1: देखने
0: में,
1: वाले चाहिए
0: तो
1: होते हैं।
0: हम उस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ मैं,
1: जी जी जी
0: कि नहीं मैं बच्चों को देखना है, हमने अभी इस समय कहीं नहीं जाना, बच्चे आएंगे, बच्चे इन द सेंस के मेरे बेटा बेटी या बहू बेटा जब
1: हाँ,
0: आएंगे उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि इसको हमने अकेले नहीं छोड़ना हेल्पर के
1: जिम्मेवारी समझते हैं ना, तभी
0: पास।
1: परिवार
0: हाँ जी,
1: चलते हैं कि एक दूसरे
0: हाँ
1: को समझो,
0: बिल्कुल,
1: है ना। आपने
0: बस
1: उनको ये उनकी हेल्प होती है कि वो अगर जॉब
0: हाँ
1: कर रहे हैं तो आपने बच्चों को संभाला है, और
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को तभी अटैचमेंट भी होती है,
0: हाँ
1: प्यार भी
0: नर्मदा
1: होता
0: जी ये तो है,
1: है
0: बच्चों
1: ना।
0: का अटैचमेंट तभी होती है अगर आप अटैचमेंट दोगे, तो
1: बिल्कुल
0: ये तो
1: बिल्कुल।
0: आदान प्रदान है,
1: हाँ
0: अच्छा लगता है। और
1: दादा
0: हमारा भी,
1: दादियों को भी
0: हाँ
1: अच्छा लगता है और बच्चों को भी ज़्यादा प्यार होता है।

0: ज्यादा
1: कि जब कोई फरमाइश उनकी पूरी नहीं हो रही है तो वो अपने दादी नानी के पास जाते हैं,
0: ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही जाते हैं कि ये लेना, ये करना, ऐसे करना। समझाने वाली जगह पे हम समझा देते हैं कि ये चीज नहीं लेनी, जो लेके देनी है वहाँ शौक से जाते हैं, बच्चे अच्छा समझते हैं।
1: अच्छा, जैसा ये होता है कि दादी नानियाँ जो है वो कहानियाँ भी सुनाती हैं, किससे कहानियाँ कई बच्चों को सुनाती हैं ना, तो आप भी सुनाती हैं?
0: हाँ, नर्मदा जी कभी कभार सुना भी लेते हैं, लेकिन वही बात है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल बच्चों को खाना भी खिलाना हो तो थोड़ा सा उनको कार्टून वगैरह लगा दो, उसी में बहुत अच्छी स्टोरीज आ जाती हैं, बहुत सारे हनुमान चालीसा आ जाते हैं, लेकिन हम लगाते ऐसे ही चैनल हैं जो शिक्षाप्रद हों, और लगाने बहुत कम हैं। सिर्फ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा खुश रखने के लिए, या थोड़ा सा जैसे पेरेंट्स बाहर हैं तो उनको थोड़ा एंगेज रखने के लिए वो स्टोरीज वहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब बच्चे सुन सकते हैं, हमें भी अच्छा लगता है।
1: अच्छा, आप शिक्षिका रही हैं 31 साल तक ना?
0: जी।
1: तो आपके समय का खैर ज़्यादा पुराना तो नहीं हुआ है आपका भी समय, लेकिन फिर भी पिछले 31 साल से आप पढ़ा रही हैं, तब के और आज के जो शिक्षक हैं उनमें क्या फ़र्क है, और आप कुछ अपने सुझाव देना चाहती हैं क्या?
0: हाँ नर्मदा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब हमारा समय था ना वो था वॉक टॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है? तो वो बोर्ड का समय और वो चॉक टॉक बहुत अच्छा समय था, बच्चे ड्रॉ करते थे, हम बच्चों से बोर्ड पे लिखवाते थे, और बच्चों की राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती थी, कॉपी का पेन पे बहुत अच्छा लिख लेते थे। आज के बच्चों में ये कमी है, उनकी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है। हमारे जब पेपर होता था 3 घंटे में, तो हमें ये होता था कि सुंदर भी लिखना है और पेपर कंप्लीट भी करना है। आज बच्चों के पेपर छूट जाते हैं क्योंकि उनकी लिखाई में वो इतना दम नहीं है, ना वो खूबसूरती है, ना वो इतनी समझ है। अब देखो ना, हमारे समय में अगर हम इंग्लिश पढ़ाते थे तो हम उसको ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा बच्चों को करते थे कि नहीं ये आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक किया। आजकल तो स्लैंग, बच्चे ठीक है, अगले को समझ आना चाहिए, आपने बोल दिया उसने भी सुन लिया, लेकिन वो चीज़ वो गहराई नहीं रह गई एजुकेशन में।
1: और राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते थे,
0: राइटिंग
1: तो वो भी बच्चों में रहता था क्रेज कि किसकी हमारी ये ज़्यादा अच्छी,
0: कंपटीशन होता था, कंपटीशन
1: होता था,
0: बकायदा कंपटीशन होता था, और बोलने का बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था, कौन पोएम अच्छी बोल सकता है, कौन सुर ताल के साथ बोल सकता है, विद एक्शंस कौन बोल सकता है। आज वो जमाना कहाँ, टेक्नोलॉजी खा गई वही समय खत्म हो गया।
1: चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम तराने मन के। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मृत्युदंड फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। ये गीत हमने जिस फिल्म से लिया है उसका नाम है सात रंग के सपने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
7: तराने मन के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमने लिया है फिल्म आंटी नंबर 1 से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: तराने मन के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए ओमकारा फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में। बोल गुलजार के हैं और संगीतकार हैं विशाल भारद्वाज।

तरानी मन के ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस समय दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद कार्यक्रम सैनिकों के लिए की शुरुआत हम कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। आवाज़ है मन्ना डे की और फिल्म का नाम है पैगाम।

0: मामा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म अनजाने से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म वंश से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो के युगल स्वरों में। बोल समीर के हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।

0: रेडियो दीदी प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा लेकर। और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ढेर सारा लाड प्यार और दुलार आपकी रेडियो दीदी प्रवीण आप सभी को भेज रही है। और हाँ नन्हे दोस्तों, जब ये दीदी आपको बहुत सारा लाड प्यार और दुलार भेजती है तो इस प्यार को आपने संभाल कर रखना होता है और अपने थैले में इस दुलार को भर के रखना होता है। और बहुत अभिनंदन करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने उन तमाम श्रोताओं का जो अपने कीमती वक्त के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आज के इस अंक में। तो नन्हे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हमारा स्टूडियो एक बार फिर से सज चुका है नन्हे मुन्ने कलाकारों के साथ। जी हाँ, आप सभी को हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि कब रेडियो दीदी हमारे दूसरे दोस्तों से हमें मिलवाएगी, हमारी बातचीत करवाएगी। तो बच्चों, आपका इंतज़ार मानते हैं बहुत लंबा होता है, आपको बहुत सारा इंतज़ार ये दीदी करवाती है, लेकिन हम भी क्या करें भाई, ये जो बच्चे आज हमारे बीच बैठे हुए हैं ना, ये सच में बड़े शरारती हैं और रेडियो दीदी से ना बहुत लंबा लंबा और बड़ा बड़ा इंतज़ार करवाते हैं। कि अब बच्चे भी बिल्कुल एक्साइटेड हो चुके हैं कि रेडियो दीदी अपनी बातों को थोड़ा सा विराम दो और हमें बोलने का मौका दो। तो बिल्कुल, तो ज्योति दीदी, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद प्रवीण, कार्यक्रम बाल सभा में आए हुए हमारे इन नन्हे कलाकारों का, ज्योति दीदी का बहुत बहुत प्यार।
0: अब फटाफट हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी नजर जा रही है यहाँ पर बैठे हुए एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा है, मुझे देखकर थोड़ी सी हंस भी रही है। चलिए इनसे इनका नाम जानते हैं, अपना नाम बताइए।
2: स्वास्तिका।
0: स्वास्तिका जी, नाम बहुत ही सुंदर है, तो नाम का अर्थ भी बता दीजिए।
2: स्वास्तिका का मतलब होता है जो मंदिर में एक
0: स्वास्तिक बना होता है।
2: जी
0: जी, बहुत प्यारा नाम है और आपके नाम का अर्थ भी बिल्कुल आप ही की तरह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। स्वास्तिका, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं?
2: मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
0: 9वीं कक्षा की आप छात्रा हैं। और ये बताइए कि आज आप स्टूडियोज में हैं तो आपको कौन लेकर आया?
2: मैं विद्यालय की ओर से आई हूँ।
0: जी,
1: कौन से विद्यालय से आप आए हैं उसका नाम भी लीजिए।
2: PM श्री केंद्रीय विद्यालय अयोल।
0: स्वास्तिका, आपने बताया कि आप 9वीं कक्षा की छात्रा हैं, तो विषय कौन कौन से आप अभी पढ़ रहे हैं?
2: मैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST, संस्कृत भी अभी फिर से जुड़ गया है और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: जी, स्वास्तिका ये बताइए कि खाने में आपको क्या क्या पसंद है?
2: खाने में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मसाला डोसा और पाव भाजी।
0: मसाला डोसा
2: जी,
0: पाव भाजी
2: जी।
0: क्यों पसंद है?
2: क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है क्योंकि मसाला डोसा है दक्षिण भारत से
0: जी,
2: और मुझे दक्षिण भारत बहुत पसंद है, वहाँ के कपड़े, वहाँ का खाना, वहाँ का संगीत मुझे बहुत लुभाता है।
0: अच्छा, आपने दक्षिण भारत की बात कही स्वास्तिका, तो आप वहाँ पे जाते रहते हैं?
2: नहीं, मैं कभी गई तो नहीं हूँ, पर मेरी इच्छा है जाने की।
0: इच्छा है आपकी जाने की? चलो, हम कामना करते हैं कि भविष्य में आप पढ़ाई को लेकर दक्षिण भारत की यात्रा, वहाँ की सैर जरूर करें। ये बताइए कि विषय आपको सबसे अच्छा कौन लगता है?
2: मुझे इंग्लिश और साइंस।
0: साइंस

0: है ना?
1: बिल्कुल। और घर में कौन-कौन है?
0: घर में दादू दादी, मेरा छोटा भाई, मम्मी और पापा और मैं।
1: ठीक है, आपने छोटे भाई का जिक्र किया,
0: जी
1: तो थोड़ी सी मारकुटाई लड़ाई
0: होती रहती है
1: होती रहती है।
0: जी।
1: तो उसमें जीतता कौन है?
0: मैं ही जीतती हूँ ज्यादातर तो
1: क्योंकि आप बड़े हैं।
0: जी।
1: तो ये जो छोटी मोटी भाई बहन के बीच नोकझोंक होती है ना, ये जीवन भर की खट्टी मीठी यादें होती हैं। स्वास्तिका, ये बताइए कि बड़े होकर आप क्या बनोगे?
0: मैं बड़े होकर लॉयर बनना चाहती हूँ।
1: इसमें अध्ययन की, पढ़ाई की, संघर्ष की, मेहनत की जरूरत है फिर
0: बिल्कुल
1: तो।
0: बिल्कुल।
1: तो कितना टाइम देते हैं आप अपनी पढ़ाई को?
0: पढ़ाई को 2 से 3 घंटे
1: हो जाता है।
0: हो जाता है
1: और पढ़ाई के अलावा आप घर के कामकाज करते हैं?
0: जी। मम्मा के साथ मदद करवाती हूँ घर के कामों में, संडे के दिन भी। संडे के दिन तो पूरा दिन
1: पूरा दिन
0: जी।
1: वो मम्मा कहते हैं या फिर आप अपने दिल से करते हैं?
0: कुछ तो मुझे पता है कि मेरी ड्यूटीज़ हैं, मेरे को मम्मा का हेल्प करना होता है, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, क्योंकि मम्मा भी थक जाते हैं तो। और फिर अपने छोटे भाई को पढ़ाना।
1: तय, यही प्यार आप दोनों का हमेशा बना रहे और विश्वास बना रहे। तो स्वास्तिका, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में आई तो क्या सोचकर आप स्कूल से निकले
0: मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसा
1: थे?
0: था, और कहीं ना कहीं मन में एक्साइटमेंट भी थी बहुत कि मज़ा आएगा।
1: आपको यहाँ पर आकर सच में मजा आया या
0: मज़ा
1: नहीं?
0: आया बहुत
1: आ रहा
0: अभी
1: है मजा?
0: जी।
1: ठीक है, तो क्या सुनाएंगे आज आप? स्वास्तिका, हम आपको ये बता दें कि इस समय रेडियो पे आपका प्रोग्राम चल रहा है,
0: जी
1: ठीक है? बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको सुन रहे होंगे,
0: बिल्कुल
1: इवन आपके दादा दादी, आपके
0: जी
1: नाना नानी,
0: जी
1: मम्मी पापा, सब भी, यहाँ तक कि आपके अध्यापक भी आपको सुन रहे होंगे,
0: जी
1: है ना? तो कैसा लग रहा है आपको?
0: अच्छा लग रहा है अभी तो
1: अच्छा लग रहा है।
0: जी।
1: क्या सुनाएंगे आप?
0: क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो मैं एक बहुत ही प्यारा गाना, पहाड़ी गाना है जो मायने मेरी आज आपको सुनाऊंगी।
1: तो स्वास्तिका, शुरू कीजिए।

0: अरे वाह, बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब। जानना चाहेंगे स्वास्तिका कि गाना गाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली?
1: जी, गाना गाने की प्रेरणा तो मुझे मेरे पिताजी से मिली, और वैसे भी घर में पूरा संगीत का ही माहौल रहता है। मेरे दादू भी गाते हैं, मेरी दादी भी गाती हैं, मेरी मम्मी भी गाती हैं, और पापा भी और भैया भी बजाते हैं। तो
2: पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप गा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये वक्त, ये घड़ी की सुइयां ना कुछ समय के लिए बस ठहर जाएं और हम आपका ये गाना सुनते रहें सुनते रहें। बहुत ही मीठा और इतना अच्छा आपने गाया, यूँ लगा कि साक्षात माँ सरस्वती का निवास आपकी वाणी में है। और हम उम्मीद करते हैं और भगवान से ये कामना करते हैं कि आप इसी क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएं, बहुत दूर तक जाएं, और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नाम बताइए।
3: मेरा नाम संकल्प है।
2: संकल्प, कब से आप पीछे बैठे हुए थे? आपको नहीं लगा कि मैं सबसे पहले उठूं और दीदी को जाकर बताऊं? दीदी, मेरे बारे में भी तो पूछो।
3: मैं चाहता हूँ कि दीदी भी बताए और दीदी भी आगे बढ़े।
2: और आपका जो ये फेस है ना, ये बता रहा है आप बहुत शरारती हो।
3: जी,
2: अच्छी लगती है आपको शरारतें करना?
3: वैसे दीदी के साथ कर देता हूँ शरारतें।
2: दीदी के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं?
3: बाकी तो मैं कभी कभार कर देता हूँ।
2: अरे वाह, क्या बात है। स्कूल में भी करते हैं?
3: स्कूल में कभी कभार कर देता हूँ शरारते।
2: आपने कहा कि आपके घर में दादा दादी हैं, तो कितना वक्त आप अपने दादा दादी के साथ बिताते हैं?
3: वैसे तो हम रानीताल में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वार्टर में रहते हैं। वैसे जब फैमिली फंक्शन वगैरह होता है तब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम।
2: दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं?
3: नहीं
2: नहीं
3: सुनते हैं, वैसे रात को कभी कभार सुना देते हैं।
2: हाँ, रात को सुनते हैं तो सुबह को भूल जाती हैं सारी कहानियाँ।
3: होता है ऐसा कभी कभार।
2: अरे वाह,
3: वो अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं।
0: तो कोई कहानी आपको याद है अभी जो आप सुना सको हमें, या कोई शरारत याद है जिसपे हम सब हंस सके, या कुछ भी अपनी मर्जी का?
2: संकल्प, आप बड़े होकर क्या बनोगे?
3: मैं बड़े होकर सिंगर बनना चाहती, म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ।
2: म्यूजिशियन आप बनना चाहते हैं? हाँ, वो तो आप पियानो बजा रहे हैं इतना सुंदर, हम बिल्कुल समझ गए हैं। आपने कहा आप सिंगिंग करते हैं, तो क्या सुनाओगे?
3: तो मेरे गाना है एक।
2: एक गाना?
3: गाने का नाम है शिव कैलाशो के वासी।
2: अरे वाह, क्या बात
0: भाई। ये जो अपनी बोली में आप गाना गा रहे हैं ना, इसमें बहुत मिठास है, बहुत अपनापन है।

0: वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सुंदर आपने गाया, और यहाँ पर भी हम तालियां बजा रहे हैं संकल्प आपके लिए। और जितने भी श्रोता इस समय आपको रेडियो पे सुन रहे हैं ना, वो भी जरूर घर पर बैठकर आपके लिए खूब सारी तालियां बजा रहे हैं।
1: जी हाँ ज्योति, बिल्कुल। और वो भी ये सोच रहे होंगे कि जब संकल्प इतना बढ़िया इतना सुंदर गाना गा सकता है तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यही छोटे छोटे नन्हे कलाकार बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत इस समय है। तो संकल्प, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम बढ़ रहे हैं अगले नन्हे कलाकार की ओर, और एक प्यारी सी मुस्कान इस समय इनके चेहरे पर है। थोड़ा सा डर भी है, लेकिन आपका डर अब हम बिल्कुल छूमंतर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि दीदी के पास है जादू वाली
0: छड़ी।
1: छड़ी तो सबसे पहले नाम बताइए अपना।
2: मेरा नाम यशस्वी है।
1: यशस्वी, अब हम यशस्वी को अपनी बिल्कुल गोदी के पास लेंगे, ठीक है? आपको डर नहीं लगेगा। यशस्वी, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं?
2: मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: और अपने विद्यालय का नाम बताइए।
2: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ओल।
1: ठीक है। और ये बताइए कि आज आप यहाँ पर हैं, किसके साथ आप आए हैं?
2: मैं अपने स्कूल की तरफ से आई हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्कूल के अध्यापकों का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए। घर में और कौन कौन है?
2: मेरे घर में मेरे दादा दादी, मेरी मम्मी पापा और मैं, और मेरा एक छोटा भाई रहते हैं।
1: आपका भी छोटा भाई है? अरे तो फिर वही बात है कि लड़ाई होती है दोनों में।
2: हाँ जी।
1: फिर जीत किसकी होती है?
2: मेरी होती है, लेकिन वो भाई मम्मा से बोल देता है।
1: दीदी ऐसे मारती रहती है ना? दीदी गंदी है, दीदी की पिटाई किया करो, ऐसा ही होता है ना। खाने में आपको क्या क्या पसंद है?
2: मुझे खाने में ज्यादातर तो आलू गोभी पसंद है।
1: आलू गोभी। लेकिन यशस्वी, एक बात आपसे पूछिए कि भाई जब किसी सीजन में, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, गोभी तो नहीं मिलती है, फिर आप कैसे काम चलाते हो अपना?
2: फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा को स्पेशल भेज दो।
1: हाँ, टिफिन में कुछ स्पेशल भेज दो। और हरी सब्जियाँ?
2: हरी सब्जियाँ भी पसंद है।
1: अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हरी सब्जियाँ, जितना हो सके आपने हरी सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना है, ठीक है? सुबह जब आप स्कूल के लिए उठते हैं तो क्या समय सारणी आपकी रहती है, क्या टाइम टेबल रहता है?
2: मेरा 6 बजे।
1: 6 बजे आप उठ जाते हैं? पक्की बात है
2: जी?
1: नहीं तो मम्मा से पूछना पड़ेगा
2: जी।
1: मम्मा कितनी बार आवाज़ें लगाते हैं कि यशस्वी उठ जाओ, स्कूल की बस आ जाएगी?
2: मम्मा 3 बार बोलते हैं फिर भी मुझे इतनी गहरी पड़ती है, लेकिन मैं उठती नहीं।
1: आप उठते ही नहीं हो, सपने देखते होंगे उस टाइम, है ना
2: जी?
1: सपने में क्या देख रहे होते हो?
2: कि मैं बड़े होके कैसी कैसी होंगी, सोचती रहती हूँ।
1: बच्चों की दुनिया ज्योति कितनी रंगीन होती
0: जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल काल्पनिक दुनिया होती है, बहुत मजेदार, जिसमें ना कोई चिंता है, ना कोई तनाव है, ना कोई परेशानी है।
1: अरे भाई, हम सपने देखे ना ऐसे सुबह सुबह, है ना, तो पूरा सिस्टम ही डगमगा जाएगा। कितनी बढ़िया लाइफ होती है बच्चों की, जब जी चाहे गहरी नींद सो जाओ और जब जी चाहो जितना मर्जी बड़ा सपना देख लो, है ना। लेकिन यशस्वी, आपने एक अच्छे से समय सारणी बनानी है, और वो नौबत ही नहीं आने देनी है कि मम्मा एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी आवाज़ आपको लगाए, ठीक है
2: जी?
1: और अब आप
2: जी
1: क्या सुनाओगे?
2: एक कविता।
1: ठीक है, सुनाइए।
2: फूलों से नित हंसना सीखो, बोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीर झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जग

गाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना।

0: बहुत शुक्रिया। और ज्योति, बिल्कुल आपके साथ हमारे एक और नन्हे कलाकार बैठे हुए हैं, और अब रेडियो दीदी ये चाहती है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर विराम लें और आप बढ़ें इस नन्हे कलाकार की तरफ।
1: जी जी बिल्कुल। और मैं इस नन्हे कलाकार को बहुत देर से देख रही हूँ, बिल्कुल मेरे पास में ही है और एक इंस्ट्रूमेंट भी इस बच्चे के पास है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस बच्ची का नाम।
2: मेरा नाम राव्या धीमान है।
1: राव्या। जी राव्या, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। इस नाम का मतलब क्या है?
2: मेरे नाम का मतलब है पूजनीय।
1: पूजनीय। वाह, बहुत अच्छा नाम। किसने रखा है आपका ये नाम?
2: ये नाम मेरे चाचा जी ने रखा है।
1: आपके चाचा जी ने। जी, तो वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका रखा हुआ नाम वो बहुत पसंद किया जा रहा है। और राव्या, ये बताइए कि आप ये जो इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठी हैं ये क्या है, जरा बताइए।
2: ये जो मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट है, इसको हारमोनियम बोलते हैं।
1: जी, तो कब से आप बजा रही हैं हारमोनियम?
2: मैं कक्षा 5वीं से।
1: कक्षा 5वीं से। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अभी आप कौन सी कक्षा की छात्रा हैं
2: मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ।
1: और 5वीं कक्षा से आप जो हैं वो इसे बजा रही हैं। तो कहाँ से प्रेरणा मिली है आपको संगीत की दुनिया में जाने?
2: जब कक्षा 1 से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हूँ,
1: योल में।
2: हाँ जी, तो तब हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, तो वहाँ पे बच्चे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तो मेरे को उनको देखकर लगता था कि मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी ये बजाना है, तो मुझे वहाँ से ये प्रेरणा मिली हारमोनियम बजाने की। स्कूल
1: जी, और फिर आपने किससे सीखा?
2: के म्यूजिक मैम से।
1: जी, तो उनका शुभ नाम भी लीजिए।
2: हमारी म्यूजिक अध्यापिका का नाम श्रीमती रीना कुमारी है।
1: जी, आप हमें हारमोनियम बजा के बताइए।

0: ये जो तर्ज आपने बनाई है, ये आपने पहाड़ी गीतों पर बनाई है। पहला गीत धोबन
1: जी
0: और दूसरा गीत
1: भला सिपाहिया डोगरिया।
0: जी। वाह, बहुत सुंदर आपने बजाया। कितना समय दे पाती हैं?
1: जी मैं हारमोनियम सिर्फ स्कूल में ही प्रैक्टिस करती हूँ,

0: और कभी कभी घर पे वैसे टाइम नहीं होता पर बहुत ही कम मेरे पास समय होता है हारमोनियम के लिए, क्योंकि स्कूल जाना, फिर वहाँ पे स्कूल में प्रैक्टिस करनी, पढ़ाई करनी, कभी कभी हारमोनियम की प्रैक्टिस करनी, फिर उसके बाद आके एकेडमी जाना, फिर वहाँ से आके पढ़ाई करना। तो घर में प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं लगता, इसलिए स्कूल में प्रैक्टिस होती है।
1: अब ये जानना चाहेंगे राव्या आपसे कि आप 8वीं कक्षा की छात्रा हैं, तो कौन सा विषय आपको बहुत पसंद है?
0: मुझे गणित और अंग्रेजी सबसे अच्छी लगती है।
1: अगर गणित और अंग्रेजी में से एक को चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे?
0: तो मैं गणित को चुनना चाहूंगी।
1: गणित को चुनना चाहेंगे। भाई बड़ा ही मज़ेदार विषय है, लेकिन आपको पता है दीदी बहुत डरती है इस विषय से। दीदी को बहुत डर लगता है गणित विषय से, आपको नहीं लगता है?
0: नहीं जी, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ
1: जी
0: और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है, और मेरा एम भी यह है कि मैं इंडिया के लिए ओलंपिक्स खेलूं।
1: जी बहुत अच्छी सोच है आपकी, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तो आप करेंगी ना और मेडल
0: जी
1: लेकर आएंगी ना ओलंपिक से?
0: जी
1: जी खूब तालियां बजाएंगे फिर हम आपके लिए, जैसे अभी आपके लिए बजा रहे हैं, जो आपने हारमोनियम बजाया है ना उसके लिए। राबिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो ज्योति, एक बार फिर से इन सभी कलाकारों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे
3: बच्चों,
4: जय।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his 3-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organisation, EPFO, has introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted Provident Fund to regularise their status. Labour and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a Provident Fund Trust recognised under the Income Tax Act 1961. The ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to concerned regional office.

हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज़ में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देववर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे एक श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की ओर से सुरीला सफ़र भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य

0: जिससे गुना किया जाए, फलसफा फलफलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं और त्वरित फल के लालच में गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि अंक वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है। भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा हैं। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी। प्यार, दूरी, भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं। बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है। और इसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे तो, एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा। अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती। ज़रा विचार कीजिएगा, सभ्यता बहुत पुरानी है। जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज के कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी और मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाएं तो उम्र का आकलन नहीं होगा, ना समय की गणना होगी, ना रुपये पैसों की गिनती होगी, ना दूरियों का अंदाज़ा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं, और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम, बस बता दीजिए इस गीत में अभिनेता कौन है। अभिनेता का नाम बताइए और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूँ कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए, वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है। बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ, और बताइए इस गीत के अभिनेता कौन है।
1: जी।

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। 10 अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, 0 और 1। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज़ को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को 1 और 0 में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें 7 नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि 7 का अद्भुत महत्व है। 7 दिन है, 7 स्वर हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, सप्तर्षि 7 हैं और विवाह के फेरे भी 7 होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी, पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव ज़रूर हुए हैं, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि 9 उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है। कोई कहता है कि उन्हें 7 नंबर पसंद है, किसी को 8 पसंद है, किसी को 3 पसंद है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो, वो शून्य हो जाता है। और किसी को 6 पसंद है, किसी को कोई अंक 5, 25, 30, 29, कई सारे अंक पसंद है, किसी को 12, 21 पसंद है, किसी को 1 अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि 13 अंक लोग गलत मानते हैं और 13 बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में 13 अंक को गलत माना ही नहीं गया शायद। किसी को 18 नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूँ क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूँ अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहाँ तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है, है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहाँ तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत के ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है, वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आँख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, दस नील, पद्म, दस पद्म, शंख, महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है, सागर, छः सागर, दस सागर, पंद्रह सागर, तैतीस सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे दो खरब तक पता है, एक खरब, सौ अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, ख़त्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है, महाभारत के युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे, और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया जी, ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रहे हैं रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है और हंसते हुए कह रहे हैं कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, तो मेरी जॉब का क्या होगा ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को ज़रा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान, कई सारी चीज़ों की बात आती थी, तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो, किताब हो, कोई भी चीज़ हो, आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के, वर्ग पहली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आती हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहली है, इस पहली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए, और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन हैं।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज़ में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज़ बहुत पसंद है, पूरी वादियाँ गूंजती हैं इस आवाज़ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है, और एक ग्रंथ है आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना इसमें खगोल शास्त्र गणित काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है लीलावती ग्रंथ का, फिर से आई बात आई है, उन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है, और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं, और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दशकुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित, मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूँ, मगर आज बच्चों को 1, 2, 3 तो आते हैं, पर हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 ना पढ़ने में आते हैं ना लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है, और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है, और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ।

बताती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है, और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित विज्ञान, शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं, और पहला कन्नड़ में, कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6,00,000 पदे हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियाँ आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूँ, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हो, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हो, इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले ज़माने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है। जी, 5 सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं, और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं, और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देववर्मन का संगीत और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़े मज़ेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना 5 पैसे का एक सिक्का और 1 पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, 6 पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को

मैं जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं तो एक दर्द देना तो बनता है, वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है, और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

हम सुन रहे थे तीजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र में बस इतना ही। गणित के साथ पले, बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज़्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का

बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।

सोचो फिर बोलो। बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हों या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे, तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार

0: 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट

0: संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
1: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए

0: 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयो और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

संगठन का सत सत सत सत नागिन देश दे सगन दादा किट सत सत सत सगन सच सग सगन का सगन का किट सत सग सगन का जी सगन दा दादा किट सग सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू

0: झूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है।
1: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 से 2031 तक हाई वैल्यू नट मिशन की शुरुआत करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी और चिलगोजा जैसे नट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के तहत करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागों के कायाकल्प और उच्च घनत्व पौधारोपण के तहत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि ये पहल

0: इन फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी को एक सुदृढ़ तकनीक आधारित और बाजारोन्मुखी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशव्यापी चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटों के दौरान टास्क फोर्स की टीम द्वारा दो अलग अलग मामलों में 77 ग्राम से अधिक चिट्टा और एक अन्य मामले में करीब 2 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन मामलों में पुलिस प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर रही है। प्रवक्ता के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना है बल्कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और समाज में व्यापक जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मॉनसून की वर्षा से इन दिनों नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। चंबा जिला में भी वर्षा का दौर जारी है जिसके चलते जगह जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला में कई संपर्क मार्ग भूस्खलन के चलते अवरुद्ध है जिन्हें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी जुटी हुई है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है।
1: बारिश के समय पे थोड़ा ट्रैवल अपना कर्टेल करें, अवॉइड करें। रात के समय पे ट्रैवल जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। नदी नालों से परहेज करें उनके पास जाने से, क्योंकि इस समय पे जो भी हमारे डैम्स हैं वहां पे भी वाटर जब उनका भर जाता है तो रेगुलरली वहां से भी रिलीज किया जाएगा। तो ये कुछ एहतियातन चीजें हैं जिनको आप बरतें ताकि जिला प्रशासन की आप मदद कर सकें, सहयोग कर सकें कि इंसिडेंट फ्री मानसून हमारा निकले। प्रशासनिक लेवल पे इसकी तैयारियां हैं, उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग, सब डिविजन लेवल मीटिंग सभी के माध्यम से की जा चुकी है। 1077 जो कि हमारी हेल्पलाइन है वो 24/7 एक्टिव रहती है। अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा होता है कृपया 1077 पे आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें।
0: कांगड़ा जिला के शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कल शाम धनोटू कुठेड़ में एक क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, भाईचारे और स्वस्थ जीवन का आधार है और युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल शाम, आज शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामायिक चर्चा। विषय है कृषि यांत्रिकीकरण माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मशीनीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के पूरे चक्र में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, फसल संरक्षण, कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन जैसे सभी प्रमुख कार्य शामिल हैं। कृषि मशीनीकरण के मानव और पशु श्रम पर निर्भरता कम होती है जिससे कृषि कार्य समय पर अधिक दक्षता और सटीकता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत घटती है, श्रम उत्पादकता बढ़ती है, कृषि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है और किसानों की आय और खेती की समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकरण पर अब सब मिशन SMAM शुरू किया गया। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत केंद्रीय प्रायोजित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों का लाभ उन किसानों और क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इस योजना का विशेष ध्यान छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों पर है। ये योजना कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना को बढ़ावा देती है। ये ऐसे केंद्र हैं जहां कृषि मशीनें, औजार और उपकरण उपलब्ध होते हैं जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। ये योजना उच्च प्रौद्योगिकी और महंगे कृषि उपकरणों के लिए हब स्थापित करने और कृषि मशीनरी के वितरण में भी सहायता प्रदान करती है। कृषि यांत्रिकीकरण पर

0: सब मिशन को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच बेहतर बनाकर, श्रम की आवश्यकता कम करके और खेती की उत्पादकता बढ़ाकर समावेशी और कुशल कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शन और फसल कटाई के बाद के कामों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच बढ़ाकर कृषि उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। साथ ही कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करते हुए फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य संवर्धन और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करता है। खेतीबाड़ी के यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक मदद के लिए ये योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कृषि मशीन की लागत का 40% व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को 50% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ड्रोन सहित मशीनीकृत कृषि सेवाओं के उपयोग के लिए प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। किराए पर मशीनें देने के लिए फॉर्म मशीनरी बैंक बनाना, ये योजना SHG, FPO और स्थानीय संस्थाओं को कृषि मशीनें खरीदने के लिए 80-90% तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। CHC की स्थापना के लिए 2,50,00,000 रुपये तक की परियोजनाओं पर कुल लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि FMB की स्थापना के लिए 30,00,000 रुपये तक की परियोजनाओं पर 80% वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। हाईटेक और ज्यादा उत्पादकता वाले इक्विपमेंट हब बनाना, कार्यकुशलता बढ़ाने और महंगी और उन्नत कृषि मशीनों तक किसानों की पहुंच आसान बनाने के लिए फसल विशिष्ट कार्यों हेतु अन्य उन्नत और उच्च क्षमता वाली कृषि मशीनरी से सुसज्जित केंद्रों की स्थापना करना सुनिश्चित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत लघु कृषि मशीनों पर 100% तक की सब्सिडी और फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 95% तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। SMAM के तहत वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक लगभग 9,405 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से देश भर के किसानों को लगभग 22,00,000 कृषि मशीनें उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: उत्पादकता में वृद्धि, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सामायिक चर्चा। वाचन स्वर था राकेश शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं, गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरशाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चौपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

सहारा। हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्टकार्ड और चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियाँ भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए? इसी भावभूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: कोई नहीं है घर में, और ये रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल, एक पूरब को जाता है दूसरा पश्चिम को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात

0: आओगी?
1: पूछिए।
0: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
1: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं, जरा कपड़े बदल लो, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
0: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
1: क्यों, आप क्यों, ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
0: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
1: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
0: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
1: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
0: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
1: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
0: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर सिंगार किया, फिर चली गई।
1: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
0: कभी खुद ही आकर देखो ना।
1: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
0: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
1: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
0: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
1: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
0: और मैं किचन में ये गया।
1: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
0: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
1: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
0: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक से आइए।

0: क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना।

0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
1: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे, मजा आ गया।
1: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
1: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
1: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
1: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
1: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे आखिर बात क्या है?
1: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है। लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
1: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था रूम।

इसकी हवाओं में तैरा था, लेकिन लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविता बाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं हम, बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो। मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूं, क्यों? आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है, आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं? चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो? ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो, ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी तो।

0: भी रहूंगी तो पहाड़ा नहीं, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप। मेरे किए क्या हो सकता है, और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम

0: बहन हो पल्लवी की?
1: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
0: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
1: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
0: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
1: पता नहीं।
0: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी?
1: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
0: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
1: जमती थी? पता नहीं।
0: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी,
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघलकर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को। अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार वो अकेले

0: सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय, सच कहूं मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गए तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं?
1: अरे नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू, फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते तो अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान, कब हुआ?
1: देख पल्लू, तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा, तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका
1: लड़का है?
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे

0: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
1: जाने दो, आगे चलते हैं।
0: ओके।
1: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
0: कौन?
1: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
0: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
1: मतलब महीने भर रहेगी?
0: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
1: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
0: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
1: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
0: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
1: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
0: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
1: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो दो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसे हुए कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
0: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
0: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
0: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपने ये फिलोसफी, हानि तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
0: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
0: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है। मीनाक्षी,
0: सूखे पेड़ से तो किसी को छांव

0: भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है। इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ठूठ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन जानेगा।

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती।
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार। और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में,

0: बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था. डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे. फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है. तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है. तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहाँ की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नज़रिए से देखा जाता था. पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब ही नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ. और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है. तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है. और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा. फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने. फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है. पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे. ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था. तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था. लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे.
1: बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता.
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना. और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत.
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं.

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम नहीं, और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व्ड थे। तो ये जो बात है ना, जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे

0: दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफ़ी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज़ के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज़ चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलों देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे ले सकते थे। हाँ,
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे, आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदा जी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रख

0: रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ। ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज़ धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमज़ोर
0: होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रैजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज़ की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका ICU में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक ICU में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और होना चाहिए। नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज़, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए, बहुत, और
0: बहुत
1: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय,
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी जाना ज़रूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहाँ गए थे, काफ़ी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हज़ार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे।
0: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे।

0: माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहाँ कहाँ से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं बस। उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक दो तीन महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी। लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वाज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब ख़राब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस ज़माने के रास्ते वहाँ पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी।

0: बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
1: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
1: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे
1: जी,
0: बहुत शरारती रहे
1: जी,
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है।

0: उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके MA वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं BA होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ PDA में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन PDA का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये PDA में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो PMT की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी,
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी जी
0: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। okay. और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी

0: जो सीख है ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी, वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफ़ी बार हम काफ़ी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें PhD करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर PhD किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, ख़त्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की, और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है, तो मैं NGOs के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे, इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच,
0: शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन आंदोलन में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: First innings yesterday, while India were all out for 285 runs. In Wimbledon tennis, world number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. IST. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. The semi-final lineup for the FIFA World Cup has emerged with Argentina, England, France and Spain sealing spots in the last four. England defeated Norway 2-1 while Argentina outclassed Switzerland 3-1 in the quarterfinal this morning. In the first semi-final, France will meet Spain at Dallas in US at 12:30 a.m. on Wednesday, while England will take on defending champions Argentina at 12:30 a.m. on Thursday. And with that, we end this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन फिल्मों से। मीठी मीठी सर्दी व गर्मी से भरी शाम के सायंकालीन प्रसारण में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वर्षाकटोच का आप सभी श्रोतागण अभिवादन स्वीकार करें। प्रसारण की शुरुआत कर रहे हैं रोचक नवराज हंस के युगल स्वरों में गाए इस भजन के साथ।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी बाटला हाउस फिल्म से, भजन फिल्मों से। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म से, साधना सरगम की आवाज़ में।

अभी आपने सुना जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म से ये भजन साधना सरगम व साथियों की आवाजों में। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति नानू की जानू फिल्म से आलमगीर खान जावेद अली के युगल स्वरों में।

आलमगीर खान जावेद अली के युगल स्वरों को अभी आपने सुना। फिल्म नानू की जानू में भजन फिल्मों से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति चित्रा सिंह की आवाज में।

इसी भजन के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से, FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम युवा मंच का। इसमें आज का विषय है वीकली पल्स, जिसमें हम आप युवा साथियों को देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल अपने घरों में होंगे, जहां भी होंगे। हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी श्रोतागण, हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई बहन सकुशल रहें। तो आज का दिन है रविवार, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रविवार वाले दिन हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं वीकली पल्स, यानी हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स। जी हां युवा साथियों, तो आज हम कार्यक्रम में इस पर ही चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। तो जानकारी साझा करने से पहले हम लेंगे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि हमें पता है हमारे युवा साथी इंतज़ार करते रहते हैं, और साथ ही साथ उनका मूड भी फ्रेश हो जाता है। और जब मूड फ्रेश होता है तो जानकारी को ग्रहण करने का आनंद ही कुछ और है। तो चलिए चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and

0: safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
0: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa. कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे प्यारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और युवा साथियों, आज बात होती है वीकली पल्स यानी नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स पर। तो चलिए पहले बात करते हैं नेशनल अपडेट्स की। युवा साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है, जिसके तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भारत और यूके के बीच ऑटोमोबाइल को लेकर व्यापार समझौता लागू हो गया है। और मौसम के मिजाज और आपदा की अगर हम बात करें तो देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और भारी बारिश, भूस्खलन और हादसों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पुणे के मोशी इलाके में हुई डंपिंग ग्राउंड हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। तो कार्यक्रम में अपडेट्स ऐसे ही जारी रहेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: युवा मंच कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज के युवा मंच कार्यक्रम में बात होती है वीकली पल्स पर, जिसमें आप सुना करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वर्षा कटोच। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की। ईरान और अमेरिका के तनाव की अगर हम बात करें तो मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष काफ़ी बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने और जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्यवाही करते हुए ईरान के 140 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के निधन की अगर हम बात करें तो कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सीनेटर लिंडसे ग्राहम का भी आकस्मिक निधन हो गया है। वैश्विक घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कनाडा के टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हॉर्मुज में फंसे भारतीयों की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज में जलडमरू मध्य में जहाज पर हुए हमले के बाद एक भारतीय नागरिक के लापता होने की खबर है, जबकि 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। मतदाता सूची में अपडेट की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा जारी किया गया है, जिसमें नए मतदाता के लिए फॉर्म 6 में बदलाव किए गए हैं। और युवा साथियों, अगर हम फुटबॉल की बात करें, फीफा विश्व कप 2026 की तो सेमीफाइनल की जंग तय है। जैसे कि फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो गई हैं, जिनमें अर्ली अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन शामिल है। अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। निर्धारित समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर था, जिसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज ने गोल दागकर अर्जेंटीना को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड की रोमांचक जीत की अगर हम बात करें तो जूड बेलिंगहैम के शानदार 2 गोल एक्स्ट्रा टाइम विनर सहित की बदौलत इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। जी हां युवा साथियों, ये कुछ अपडेट से अंतर्राष्ट्रीय। और अब लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में फिर से कुछ एक अपडेट्स लेकर। तब तक कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

कह रही है कि अपनी वाणी को विराम दीजिए, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले बताना चाहेंगे कि इस जानकारियों से भरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और जाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे हम अपने युवा साथियों से कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। बच्चों को नदी नालों से दूर रखें। अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को अनुमति दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शामे गजल। शाम 6:30 पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज बातचीत होगी रिश्तों की अहमियत पर और हमारे साथ बात करने के लिए हमारी महिला बहनें बात कर सकती हैं 01892224391। ये है हमारे स्टूडियोज़ का नंबर। इसको डायल करके आप हमारे साथ सीधा बात कर सकते हैं। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे का प्रसारण समय रहेगा अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस का। देशकान आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निदेशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। सुरों की महफिल कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 का। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8:15 पर हिमबीट्स कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। और अब एक नजर आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 10 बजे रविवार सरीय संगीत सभा, 11 बजे हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: एक कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। ऊना जिला के पालकवाह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल व रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरोली के खड्ड क्षेत्र में आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर पहले चरण में 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि दुर्गम क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र की सोलंग पंचायत में आज उन्होंने कहा कि राज्य के कुल बजट का करीब 18% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जा सके। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 3000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। वे आज प्रदेश के मेधावी आईटीआई विद्यार्थियों के एक दल को नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए कजाकिस्तान रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने उम्मीद जताई कि ये विजिट विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत औद्योगिक प्रक्रियाओं और वैश्विक कार्य संस्कृति को निकट से समझने व सीखने का अवसर प्रदान करेगा। भाजपा ने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो भाजपा राज्य में जन आंदोलन शुरू करेगी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, परंतु सरकार नहीं चेती और ये उससे और अधिक स्थिति आज विस्फोटक हो। यही स्थिति बरकरार रही तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन खड़ा करेगी।
0: दूसरी ओर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का दावा किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा ने पार्टी में करीब 32,000 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए मोर्चा गंभीरता से कार्य कर रहा है।
2: 4 महीने से लगातार अनुसूचित जाति मोर्चा प्रत्येक बूथ पर 5 अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो काम किया, हिमाचल प्रदेश के 8,000 बूथों में से 6,000 बूथों पे 32,000 जो कार्यकर्ता मोर्चा ने जोड़े हैं, आने वाले 3 महीने के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता से हमारा पदाधिकारी जाएंगे, मिलेंगे, उनका सत्यापन होगा और उन सूचियों का पुनरीक्षण होगा, ताकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें अनुसूचित जाति मोर्चा की जो एक निर्णायक भूमिका है, उस भूमिका को निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश का एससी मोर्चा अनुसूचित जाति वर्ग के घर घर जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में अलग जगाएगा।
0: सिरमौर जिला में रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने सरकार से प्रभावित पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि बजट के अभाव में प्रभावित पंचायतों में स्कूलों और सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापित परिवारों ने अन्य लंबित मांगों के जल्द समाधान का भी आग्रह किया है।
3: जब से HPCL ने हमारी जमीन ली है, तब से जो है हमारे क्षेत्र में कोई भी पंचायत राज के जितना भी बजट आता है वो नहीं हो रहा है 2007-08 के बाद। आज हमें इतने साल हो गए यहाँ पे, हमारी कोई भी जो मान लो कोई स्कूल है उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, कोई सड़क है डंगे टूट गए तो यदि हम पंचायत में जाते हैं तो कहते हैं कि जो HPCL का वाला HPCL के पास जाते हैं तो हम तो कर नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है आज की डेट में, से कम 17 पंचायत जो हमारी आती है।
0: प्रदेश में वर्तमान में 2,56,000 से अधिक किसान करीब 45,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार की नई पहलों के बाद प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

0: कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामे गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई ये गज़ल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह के युगल स्वरों में।

0: अभी आपने सुनी भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल, शामी गजल। कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display,

0: अभी आपने सुनी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
5: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
7: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
7: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
4: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
7: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available.
7: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
6: Nexa.
0: कार्यक्रम श्यामे गजल में आप सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गज़ल के साथ हमारा आज का शाम गज़ल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्यामी गज़ल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। सभी श्रोताओं से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में सिर्फ हमारी जो महिला बहनें हैं वही कार्यक्रम में फ़ोन करें, ताकि समय जो है हमारे पास बहुत कम होता है, और जब हमारे भाई लोग फ़ोन करते हैं तो हमें उनको समझाने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी महिला बहनों को ही इस कार्यक्रम में फ़ोन करने दें, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम महिलाओं के लिए ही है।

सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाली सारिया साड़ियाँ जिहड़ियां बोबो भैणां हैं साढ़े निक्के न्याणे हैं बजुर्ग हैं साढ़े लोके भाऊ भैणां हैं ते इन्हां सारिया जो तुहाड़ी बड़की बोबो यानी वर्षा कटोच की प्यार भरी राम राम तकदे हैं तुहां। मैं तो भगवान ने यह प्रार्थना कर दी कि तुहां सारे अपने घर च कुशल मंगल कन्नै होने कन्नै अज दा प्रोग्राम लेके मैं हाजिर होई तुहाड़ी बड़की बोबो कन्नै कार्यक्रम मैं मिंजरा कन्नै अज इस चाहां थोड़ी थोड़ी अपनी बोबो भैणां कन्नै गलबात भी करनी। गलबात दा अहां विशे रख्या रिश्तियां दी अहमियत। जी हाँ बोबो भैनो, जिहड़े साढ़े जिंदगी च रिश्ते हैं भरा भैणां दे सस्सू सोहरियां दे जेठ जठानियां दे ननान ननोईये दे मतलब जितने भी रिश्ते हैं साढ़ी जिंदगी च तिन्हां दी अपने अपने स्थान पर क्या अहमियत है अहां ते दी पर गलबात करनी। कन्नै साढ़े जेहड़े भाऊ हैं सै अज सांझो माफ रखन क्योंकि अज असां सिर्फ अपनियां बोबो भैणां कन्नै गल करनी है। कन्नै वैसे बोबो भैणां साढ़ियां जुड़ना लगी पईआं ने, भाइया तौल तौल करा क्योंकि तुहां जुड़ गए तां ही साढ़ा कार्यक्रम जिहड़ा सै सफल बनना। कन्नै जे तुहां रेडियो ऑन नहीं कीता तां फटाफट हत्थां धोई के रेडियो ऑन करा। कन्नै साढ़ा ये जिहड़ा कार्यक्रम मिंजरा है ये सुनना तुहां कन्नै इस च साढ़े कन्नै गलबात भी करनी। ठीक है जी, तां मैं तां ये चाहदी कि पहले अहां शुरुआत कर लैंदे इस भजने कन्नै, तां आओ मिली जुली के सुनदे अहां ये भजन।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो। बस
0: हाँ जी नमस्ते जी,
1: नमस्ते जी।
0: अपना नाम दसा पहले।
1: मैं जी संतोष कुमारी जलाड़िए से बोला दी। ये सब पर अगे ब्रह्मण ते अगे यूनिवर्सिटी दे पास साइड अस
0: छतड़ी
1: गांव
0: वाले
1: है। हां
0: पासे,
1: जी
0: छतड़ी वाले पासे।
1: हां जी हां जी हां जी हां जी।
0: अच्छा जी, तो अज तुसा कार्यक्रम च फोन किया, थोड़ा मता मता स्वागत है। पर मुझे ये दसा भी तुहां सुनिया भी आज अहां कैस पर गलबात करनी है।
1: थोड़ा दिया था इंटर सुनिया हाँ कि
0: बिल्कुल
1: रिश्ते और
0: बिल्कुल, रिश्तों की अहमियत पर आज अहां गलबात करनी है। तो क्या बोलना चाहेंगे तुहां इस विषय पर?
1: रिश्ते दी है जी। मैडम जी पहली तो ये है जी बहु बेटियां जड़ी नहीं कि एक बच्चा हुआ था
0: हाँ जी,
1: इसके बाद फिर सगा रिश्ता नहीं बदलना तब रिश्ता समझना क्या कौन की
0: गल तो थोड़ी सही है, पर जेड़े रिश्ते हैं तिन्हें अहां कियां, तिन्हां दी अहमियत कने तिन्हें कियां अहां सहेजी के रखिए। कि क्योंकि बोलते ना रिश्ते जेड़े हैं से साड़ी जिंदगी च ना बड़ा अहम रोल जेड़ा ऐसे अदा करते हैं ना।
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ जी
0: मनी
1: हाँ
0: लिया जी चौंके अंदर तुहां भी होयो भरे हो न, तो अंदर सस है तो तिन्हां दी अपनी अहमियत है, ससुर साहब हैं तो तिन्हां दी अपनी अहमियत है ना
1: हाँ जी
0: जी।
1: हाँ जी
0: तो क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर तुहां?
1: तभी यहाँ ता दिखा पे कने कने हेल्प कर दे पे बहुमा इनु माने ना ने कम
0: हाँ जी
1: मेरे हाथ बटाई दे
0: जी
1: यहाँ चलो छोटा मोटा काम करी ता कुछ पे चल सब्जी बनाई थी कुछ की भांडे मांजी पाए कुछ आटा गुन्नी पाया इतना
0: बहुत
1: इतना दिन
0: अच्छी
1: से
0: गल है। इं मिली जुली के जड़ा है
1: हाँ
0: ना
1: जी
0: सह कम चलदा। पर मैं ये पूछा दी कि क्या अहमियत क्या है, मतलब जी मनी लिया तुहाड़े सस सहुरा ने घरे च
1: जेठानी
0: या जेठ जेठाणी है ना।
1: हाँ जी जेठानी हो रही है इन्हें इज्जत करनी
0: बिल्कुल
1: इन्हें समझना रिश्ते हो
0: बिल्कुल
1: हाँ जी कने रही है ननाना बेचारियां तो तीन बब मां नहीं रही होंगे तो तीन भी बेचारियां थोड़ा दिया देना पौंदा मतलब अग्या
0: बिल्कुल,
1: कि
0: क्या होंगे
1: हाँ
0: ना जी,
1: कुछ
0: बब माँ हमेशा नहीं बैठी रहते है ना जी।
1: हाँ जी हाँ
0: नाता
1: जी
0: जेड़ा बनता सारी उम्र का सह बनता भरा भरजाइया ने
1: हाँ जी हाँ
0: है
1: जी
0: ना जी। तो
1: हाँ जी
0: ननाना का जेड़ा रिश्ता ऐसा तो बहुत ही ऊपर है ना, सर्वोपरि जिसी वहाँ बोली सकते है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो
1: तीने भी हाँ प्यारे करने चलो फोन कर दे रहे अन्यो जी तू हाँ आई अन्यो रे अन्यो आऊंगे तो इज्जत करनी थी ना दी बैठने उठने खाने पीने च
0: बिल्कुल
1: यही तो
0: बिल्कुल
1: होता प्यार और था क्या गिलाइए भी चलो साले का कुछ की सूट दे इतना तीने
0: बिल्कुल बिल्कुल, दिखा ना जी लेने देने का कोई भुखा नहीं हुंदा है ना। कने
1: जी
0: 21 सूटे ने कुत्थू तिना दा साल निकल जाना। पर क्या है, गल है प्यारे दी कने गल है रिश्ते दी अहमियत दी।
1: हाँ
0: ननाना
1: जी
0: दा
1: हाँ
0: जेड़ा
1: जी
0: औहदा है ना घरे च सब ते बड़ा हुंदा
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: है ना
1: जी
0: जी। बेचारियां परदेसां च ब्याही तियां हुंदियां, सद गए तुहां तां तिना आई आना, नहीं सद गए तां तिना फिर से बोल देना टारा मारने वाला ही कम हुंदा है ना जी।
1: सही गप होंगी फिर तो पे को किसा दगा ता ही कहना होंगे ना माँ प्यो होन तो चल होंगे ना जाए होंगे आदमी
0: हाँ कने से सुहाग भी है ना, बोलिया सदगे तो पाई जांगी फेरी, मैं हूं नहीं हूँ
1: हाँ
0: तेरी है ना जी।
1: जी
0: तो बिल्कुल जड़ी साड़ी जिंदगी च रिश्तों की अहमियत है ये सानू समझना चाहिए। कने जगह जगह पर इन्हों का मान सम्मान जड़ा ऐसा सानू करना
1: करना
0: चाहिए। ना क्या
1: हाँ
0: दस्या
1: जी
0: तुहां अपना?
1: संतोष कुमारी जी कने फिर फुलके पक दे रहे वो कने सब्जी बन दी रही है सर
0: बिल्कुल, मिंजो कुनी नहीं गलाया कुड़िए
1: हाँ जी
0: खावो रोटी है
1: मेरे
0: ना।
1: अम्मा बाद जी मेरे बापू बाद जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, माओ बब्बा की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर यह है कि माँ बाप भी नितनी बे रहेंदे भी एक कड़वी सच्चाई है ना।
1: नहीं नहीं जी ये भी आदि है बच्चा छड़ी आंदे सात भरा फरोजी होंगे अपने घर
0: राह वाह
1: का
0: जेड़ा पौंदा सह भरा भरजाइया ने हुंदा, तां ननाना ही भी चाहिदा कि सह भरा भरजाइया दे रिश्ते दी अहमियत समझन।
1: हाँ जी हाँ
0: कहने
1: जी
0: भरा भरजाइया भी चाहिदा कि ननान आई हो तां तिसा दी तितनी खातरदारी होना चाहिए जितनी माओ बब्बा
1: हाँ
0: दे
1: जी हाँ
0: टाइम
1: जी
0: हुंदी ही
1: हाँ
0: है ना
1: जी हाँ
0: जी।
1: जी जी ना महसूस नहीं हुआ कि हाँ भाई जिथू बैठेंगे तिथु ना बेही रहन बेचारियां
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलो तुहां इतना अच्छे मान सम्मान भरियां गल्लां कीतियां रिश्तियां पर, इस तरह तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। इयां जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला कन्नै, कन्नै सुनदे रहे साढ़े सारे कार्यक्रम। फोन करने वास्तै
1: धन्यवाद
0: मता मता धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ
0: जी, राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: नान दसा अपना
1: मीनू बोली नगरोटे पे
0: नगरोटे कुसा जगह ते
1: चाड़ी पे। हाँ
0: चाड़ी गया ते। क्या काम काज लाया इस वक्त तू? हाँ,
1: जी, बस खाना पीने का काम लाया मैडम जी। जैसे
0: अच्छा जी, तो विषय तो सुनिया होना तू हाँ साड़ा।
1: मैम जी थोड़ी देरी हुई, मुझे लगा है बैटरी डाउन हुई थोड़ी लीता।
0: तो हाँ, मेरी जिहड़ियां बोबो भैन है ना, तो हाँ गौर नहीं कर
1: अच्छा
0: दियां, तो पता नहीं होंदा कि अज कह देने मिंजर आनियां होंदियां, तो पहले पहले चार्ज कर लिया करा फोना फाना आयो। हाँ जी, तो आज का विषय है रिश्तियां की अहमियत पर बोलना तो हाँ, कि तो हाँ क्या समझते कि जिंदगी चाड़िए जेडे रिश्ते हैं ना, तिना की अहमियत कितनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, थोड़े क्या विचार हैं तिना साझा करा साढ़े कन्ने।
1: होनी चाहिए मैडम जी। सारे रिश्ता जेड़ा है अच्छा होना चाहिए सारे कन्ने।
0: बिल्कुल, कुथू ते
1: बच्चे
0: शुरू कर दे तो हाँ,
1: कन्ने
0: सब ते शुरू कुथू ते कर दे तो हाँ, शुरुआत जड़ी हुंदी से पहले अपने घरे ते हुंदी है ना जी, फिर ही चल दे हाँ अड़ोस पड़ोस दी तरफ, फिर तिस्ते गांव बद दे हाँ।
1: रिश्तेदारी।
0: बिल्कुल, तो हाँ।

0: अपने घरे च दसा भी कुस कुस रिश्ते की अहमियत जो तुह कियां कियां दिंदे? सारे अलग अलग टाइम देना पौंदा है ना, कि कोई घरे च नाराज ना होई जाए, घरे आले दी अपनी अहमियत है, इस रिश्ते दी बच्चियां दी अलग अहमियत है, ससु सोहरियां दी अलग, भरा भैणां दी अलग, है ना जी? तो कियां मैनेज कर दे तुहां, कियां मैनेज कर दे? अच्छा जी, अच्छा सस सोहरा भी है ना? अच्छा, क्या लगता तो अंजो कि सासू मां अंदर बैठे उनका घर च क्या होंदा, इस रिश्ते दी क्या अहमियत है तुम्हारी नजर च? बड़े बैठे हो तो बोलते कि कोई चिंता नहीं होंदी, जित्थू मर्जी तुहां जो मर्जी काम करी लिया, ये भरोसा होंदा कि घरें बड़े बैठे होन, दरवाजा खुला है, उसी चीज़ा दी कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, है ना जी? कने इयां भी चूल्हे चौंके च बरकत जेड़ी है सै कुस कन्ने है, ससू सौरियां कन्ने। अच्छा जी, तां ननान वगैरह भी हैं तुहाड़े? चलिए, मतलब तुहां सारियां रिश्तियां दी अहमियत जेड़ी है सै समझदे हैं, कने टाइमे टाइमे पर तुहां तिन्हां नूं टाइम भी दिंदे, है ना जी? नां क्या दस्सिया तुहां अपना? मीनू। मीनू जी, तुहां जो पता है कि अज तुहां कुस कन्ने सुना दे कार्यक्रम? अच्छा, तो अज मैं तुहाड़ी बड़की वो वर्षा कटोच तुहाड़े कन्ने गलबात करा दी, कने तुहां कार्यक्रम च फोन किया, रिश्तियां दी अहमियत पर तुहां इतना अच्छा बोलिया, तिस तेईं तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। कने इयां जुड़ी रहना तुहां आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने, कने सुनदे रहना सारे कार्यक्रम। हाँ जी, जुड़ने तेईं तुहाड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद। सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा इस वेला तुहां सुना दे आकाशवाणी दी धर्मशाला केंद्र ते, कने अज मैं तुहाड़े कन्ने तुहाड़ी बड़की बोबो, पर कार्यक्रम जो अग्गे बधाने ते पहले अहां लैणा कमर्शियल ब्रेक, कने फिर अहां अगला फोन जेड़ा ऐसे अटेंड करना।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
5: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
4: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
4: वो कैसे?
5: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
4: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
5: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
4: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
5: फायदा ही फायदा, परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
4: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
5: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
6: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
7: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
7: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
7: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: कमर्शियल ब्रेक के बाद तुहां सारियां बोबो भैणां दा हां एक बारी फिर मता भारी जिहड़ा ऐ सै स्वागत करदे, कने साड़ी एक बोबो फोन करा दी आवाज़ सुनदे। हैलो, ये बेचारे ना बड़िया देरा दे करा दे हे, तुहां ट्राई करदे रहे सारे ही, कने फोन तुहाड़ा लगना ही लगना। तो अज जिहड़ी अहां गल करा दे सै करा दे रिश्तियां दी अहमियत पर।

0: कन्ने अज थुआढ़े कन्ने थुआढ़ी बड़की वो वर्षा कटोच। हैलो हैलो हैलो जी, जोरे ने गला।
1: हैलो मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नां दसा, ग्राएं दा नां दसा, पूरा कुछ ते कियां गला दे तुहां, सारा कुछ दसा।
1: मैडम जी फतेहपुर ते बोला रहे हां।
0: ज्वाली फतेहपुर की धर्मशाला फतेहपुर?
1: नहीं नहीं, ज्वाली फतेहपुर ते जी।
0: अच्छा जी, नां क्या है तुहाडा?
1: किरण।
0: किरण, क्या करदे तुसा?
1: हाउसवाइफ है मैडम।
0: क्या बात है, सब ते टफ नौकरी है ये।
1: हां जी,
0: बोलिया कम में नानी कने खुरिया बसरानी है ना। अज तुहां साडा विषय सुनिया होना, इयां हां गलबात करा दे, कोई ऐसी गल नहीं, रिश्तियां दी अहमियत पर अज हां गलबात करा दे कि साडी जिंदगी च ना रिश्तियां दी बड़ी अहमियत हुंदी, तां क्या बोलना चाहंगे तुहां इस पर?
1: मैडम जी तुहां बड़ा अच्छा विषय चुने, अजकल रिश्ते दा अजकल ए चीज तां मिला दी आई नहीं कुछ भी।
0: बिल्कुल, साढ़े एक श्रोता सखी जुड़े हे तो तिना बोलिया भी इको एक बच्चा होआ दा तो बुआ ताऊ चाचे मामे सारे रिश्ते जड़े हैं से हल्के हल्के खत्म होआ दे, पर हाँ खत्म नहीं होना देने, ना भी उन अखें बखें अड़ोस पड़ोस रिश्ते तो जिंदा है नहीं हैं, है ना। तो समझो तिना कने तिना दा परिचय करवाई के दसना चाहिए कि बुआ दा रिश्ता ये होंदा, मामे दा रिश्ता ये है, ताऊ चाचे सारे रिश्ते जड़े हैं ना, चलो अपना ही कह पर परिवार च और भी तो हैं रिश्ते, और भी बच्चे हैं।
1: मैडम जी बच्चा तो भावे एक ही हो है, पर गलाने मतलब किसी दसना तो चाहिए था ना कौन रिश्ता कुछ कने कौन रिश्ता है।
0: बिल्कुल, सोवा ना दा एक ही ना रखी ते आंटी कने अंकल है ना, तो सह आंटी कने अंकल तो तुहां कुसियो भी गलाई सकदे, तक तां गई तुहाड़ी बुआ कने तां गई तुहाड़े मामे चाचे ताऊ भैणा मासियां है ना नानियां।
1: मैडम जी फिर अंग्रेजी स्कूल बच्चे पढ़ाने तो तिने सिर्फ दो ही शब्द आंदे, फिर और कोई शब्द नहीं आंदा
0: तिने, तो गलती कुदी अहां तुहां दी, तो गलती अहां तां अंग्रेजी बनाईते बच्चे तां।
1: हां जी साड़ी है तियां देखो देखी जियां ते ओदा बच्चा इस स्कूल पढ़ा दा, असां भी तियां ही पढ़ाना।
0: चलो पढ़ाता तुहां अच्छियां स्कूलां च ना, पर यह है कि शुरुआत जिहड़ी हुंदी ना जी से घरे ते हुंदी, पहले सिखानी अपनी बोली कने जोड़ना बच्चे पहले अपनी संस्कृतियां कने है ना, क्योंकि एक टाइम आंदा फिर तुहां भी अम्मा बापू दे बजाय फिर मॉम कने डैड पर आई जाना है ना, तो फिर लगदा सा हल्के हल्के आप ही बुरा लगी पौंदा लगना, सच गलाया कि नहीं? सह चीजा ठीक नहीं लगदियाँ, तो बच्चे तुहां जरूर अपनी, मैं नहीं बोला दी तुहां अच्छे स्कूलों च पढ़ा, अच्छी तुहां शिक्षा दिया,
1: अपने मतलब के रिश्ते कने अपनी पहाड़ी बोली अपने मतलब के सभ्यता
0: बिल्कुल
1: अपनी
0: छोटी-छोटी चीजें भी जरूर दसना चाहिए, कने रिश्तियां खास करी बुआ मामे ताऊ चाचे नाने आस पड़ोस च जेड़े साढ़े रिश्ते हैं ना, बेशक अपना एक ही है पर अड़ोस पड़ोस च भी तो होने ना रिश्ते, है ना। रिश्ते तो साढ़े बरकरार ही हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल, कने ना भी हुन तां मैं बोलना चाह दी कि जेड़े आसे पासे साढ़े रिश्ते हैं ना, तिना च जाई के बच्चे दसा कि ए रिश्ते हुंदे। बिल्कुल बिल्कुल, तो तुसा बड़ी अच्छी गलबात कीती रिश्तियां पर, तो ना क्या दस्या तुहां?
1: किरण मैडम जी।
0: किरण, किरण जी तो बाकी कार्यक्रम भी सुनते तुहां?
1: मैडम जी हाँ, सवेरा 6 बजे लगा लेंदे कने राती 8-9 बजे तक चलदा है सारा।
0: क्या बात है, किदे लगदे तुहां जो सारे जेडे?
1: बड़े अच्छे लगदे मैडम जी, बड़ी ज्यादा जानकारी मिलदी है और हर एक गल जेड़ी है से रेडियो च सुनने मिली जांदी है और अपना काम भी करदे रहने हैं।
0: बिल्कुल, कने रेडियो दा सब ते बड़ा सुख हुंदा कि आलतू फालतू कुछ नहीं बोलदा रेडियो, जिहड़ी स्टीक जानकारी है ना सही तुहाडे तक पहुंचानी है।
1: हां जी हां जी, कने बड़ा अच्छा मतलब के हरेक चीज मिली जांदी इथों तुहां जो मर्जी तुहां अपने मतलब के तुहाडे अपनी ओ है।
0: बिल्कुल, अज तुहां कुस कन्ने गल करा दे वैसे, कार्यक्रम सुनिया तुहां, अज कौन बैठिया तुहाडे कन्ने? क्या बात है, मैं सोचा कि जेडे पहले हाड़े श्रोता भैन जुड़ी हुई सह बोले मैं हूं ही ऑन किया ना, तो भाई टाइम ऑन करी दिया करा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगे थोड़े कन्ने गल्लां बातां करी के, इं जुड़े रहा तुह आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने, कने सुनते रहे सारे सारे कार्यक्रम जुड़ने। क्या बात है, तो 25-26 साल मेरी भी नौकरी हुई है, तो मजा ही आई है।
1: हाँ जी हाँ जी, मतलब कि पहले तो हाँ थोड़ा थोड़ा सुनता।

0: हेलो,
1: हेलो जय देवा जी, बच्चों
0: नमस्कार जी।
1: कटोर जी, आपका बड़ा ही हमें स्वाभिमान और वेयर सो प्राउड। आप हमारी हिमाचल दी कोकिला और इतनी मीठी आपकी स्वर है, सुर है, गाने दी आपने हमें इतनी बड़ी विरासत हिमाचल को।
0: मता मता धन्यवाद। अपना शुभ नाम दसा भला क्या है?
1: मैं रेशमी कटोच गुलेरिया बोला जी, और मैं थोड़े फॉलो भी कर दी और
0: योलते
1: बड़ा अच्छा लगता थोड़े सुनी करी।
0: योलते बोला दे तुहां
1: हाँ जी
0: तुहां साढ़े नियमित श्रोता ने तुहां हर कार्यक्रम च जुड़दे सन, जो बहुत अच्छा लगता कि इस उम्र च भी मतलब कि श्रोता साढ़े कन्ने इतने शिद्दत कन्ने साढ़े कार्यक्रम जो सुनदे। तो क्या बोलना चाहेंगे तुहां रिश्तियां दी अहमियत पर, क्योंकि टाइम
1: रिश्तेदार
0: बड़ा
1: का
0: घट है।
1: सदे का रिश्ते ना, ये भी पहले शुभ शिक्षा दें दे, पति च सारा बयान हुंदा कने कि गीत है भाई, जांदी दा गोरी दा कोई भेत नहीं है, ससु बगैर चौके बरकत नहीं है, सोरे बगैर झुंड पल्ला नहीं है। देखा जगह जगह दे रिश्ते नो, रिश्ते दी मर्यादा मान सम्मान पिछली पीढ़ी दा बड़ा अच्छा निभाई था,
0: बिल्कुल
1: हर
0: बिल्कुल
1: रिश्ते
0: बिल्कुल
1: अगली पीढ़ी च थोड़ा जे किंतु परंतु है, क्योंकि ऐसा यही होना बे घर परिवार दे संस्कार दस के था है ना,
0: बिल्कुल। अहाँ
1: हुन
0: ही
1: ते
0: गल करा
1: आदमी
0: दे
1: माहौल
0: कि
1: बदली गया। हाँ जी
0: बिल्कुल जिन्हें साड़ियाँ श्रोता भैन बोला दी है ना कि एक एक बच्चा है, चलो ठीक है हाँ मन दे, पर जेडे आस पड़ोस च भी रिश्ते हैं, तिन्हां च भी बुआ चाचे ताऊ मासियाँ
1: बिल्कुल,
0: भैन
1: हर
0: सब निकली
1: रिश्ते का
0: आनियाँ।
1: मान सम्मान, मामे ने जाना भाई एक अलग चा होंदा था,
0: बिल्कुल
1: बुआ दा घर एक अलग चा होंदा, पर उन से अंकल आंटियां जो रिश्ते बढ़ी है, लेकिन पिछली पीढ़ी ने तो बहुत अच्छे बुलाए, क्योंकि रिश्ते च कई जगह उतार जुड़ाव खट्टा मीठा, पर अपने अन तो सब कुछ है ना, दाम
0: बिल्कुल
1: वाला स्वाद
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जगह जगह दे रिश्ते, और हमें निभाना भी चाहिए। रिश्ते च प्यार भी है, नाराजगी भी है, अपना है तो सब कुछ, लेकिन जेड़ा हूं अगे अगे
0: बोले
1: होना
0: ना,
1: ना, लोगों
0: अपना
1: का
0: मार
1: टाइम
0: गावी
1: नहीं,
0: ता जे मार गाता ते नि मारी के तो छाऊआ सटना। ये
1: छाऊआ
0: रिश्तियां दी
1: सटना।
0: अहमियत
1: बिल्कुल
0: है
1: जी
0: साड़ियां दी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना जी।
1: कहने ना कहने चमड़ी लगनी हुंदी, मतलब होना चाहिए, यहाँ दी विरासत है, यहाँ दी संस्कृति है,
0: बिल्कुल
1: मान मर्यादा वाणी व्यवहार, कुछ वहां चुप रहना कुछ बोलना है, आए तो यही शिक्षा देती यहाँ दे पेरेंट्स दादी वगैरह
0: सीढ़ियां का आदर करना
1: शुरू।
0: सीखना चाहिए था, तुहाड़े बोलने का मतलब ये है
1: हाँ
0: कि
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना।
1: ये जरूरी भी है, ये यहाँ दी पहचान भी है।
0: बिल्कुल तो हाँ,
1: हाँ जी
0: बहुत अच्छे गलबात की थी साढ़े कन्ने इस कार्यक्रम
1: बड़ा
0: से।
1: अच्छा लगा था, आज फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन होया, और कभी मौका मिल गया तो मैं जरूर मिलना है, बहुत ही अच्छा लगता
0: सांझो भी बड़ा अच्छा
1: कहने।
0: लग्या तो हाँ
1: हाँ जी
0: कार्यक्रम च फोन किया, कन्ने इतने अच्छे विचार तो हाँ साढ़े सारे सखियां भैणा कन्ने साझा किते। जुड़ने वास्ते थोड़ा मता मता
1: ठीक है जी,
0: दिले ते
1: सारे
0: धन्यवाद।
1: सुनते बोलते सुख शांत जी, कहने मिंजरा हो दिया त्योहार हो दे, खुशियां ने मना,
0: जी जी
1: धन्यवाद
0: तो हाँ
1: जी।
0: भी

0: भाई गल इ'यां ऐ भाई, हून घड़ियै दियां सूइयां जेह्ड़ियां असें ज्यादा बोलने दी अनुमति बोबो भैनों आई नहीं देआ दियां। ते अज्ज जिन्हें भी बोबो भैनें इस कार्यक्रम च सानूं फोन कीता तिन्हां दा मता मता कन्नै दिले ते धन्यवाद। कन्नै जेह्ड़ियां रेही गेइयां असें अगली बारी जरूर साढ़े इस कार्यक्रम च जुड़न। कन्नै तुहानूं दस दईए इस बड़े अच्छे कार्यक्रम जो तुहाड़े तक पुजाने च जेह्ड़ा तकनीकी सहयोग दित्ता सह दित्ता विकास पठानिया होरां, कन्नै इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह, कन्नै हुण अपनी बड़की बोबो यानी वर्षा टोजो आग्या दिया। राम राम जी। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय

0: जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुँचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू दी तरफा दे राम राम। किसान साथियों ट्यालेपुर एमएनजेसो की केसरो ता केसरो जी राम राम।
1: बड़का चाचू जी राम राम तो अंजो भी और दो हाथ जोड़ी करी साडे किसान भाई बहना जो भी केसरो दी राम राम। कने ट्याले पर हां आई पुजो एन कने जानकारियां दा पिटारू भी लेके आयो एन कने सोगी ही लोग गीत भी जड़े से आज जरूर सुनाने।
0: बिल्कुल कने दिखा केसरो जी की असादा जड़ा किसान के भी तरह तरह दी खेती बाड़ी के भी कर दे हन है ना। और खेती बाड़ी दे कने कने कई तरह दे व्यवसाय जो भी कर दे हन।
1: बिल्कुल बहुत
0: और
1: सारे व्यवसाय जड़े खेती बाड़ी के अलावा भी अहां करी सकते हैं और अच्छी आमदनी कमाई सकते हैं ना जी।
0: बिल्कुल कने देखा कि आज अहां जेड़ी गलबात करनी है किसान साथियों से है मुर्गी पालन दे बारे च।
1: बिल्कुल
0: ता खेती बाड़ी दे कने कने पशु पालन और मुर्गी पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था दा जेड़ा महत्वपूर्ण के भी हिस्सा है।
1: बिल्कुल
0: वर्तमान समय च मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय दे रूप च के भी जोरा कने विकसित के भी हुआ करता है। कने ग्रां दे लेकर शहर तक लोग रोजगार और आय बढ़ाने ताई मुर्गी पालन दा जेड़ा काम के भी कर करदे हन।
1: जी
0: मुर्गिया दे अंडे और मांस दी प्राप्ति हुंदी है कने जिन्हां दी बाजारा च हमेशा मांग बनी रहंदी है।
1: बिल्कुल
0: मुर्गियां जो वैज्ञानिक तरीके कने पाली करी उन्हां दे अंडे और मांस प्राप्त करने दी प्रक्रिया जो मुर्गी पालन बोलदे हन।
1: बिल्कुल
0: ए घट छोटे स्तर पर के भी घरेलू उपयोग ताई कने बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्य दे के भी किया जाता है।
1: जी
0: आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके के कारण मुर्गी पालन का व्यवसाय के भी पहले दी अपेक्षा ज्यादा के भी सफल और लाभकारी के भी हो गया है।
1: बिल्कुल कने सोगी किसान साथियों दिखा मुर्गी पालन जड़ा है से ग्रामीण कने शहरी दोनों क्षेत्र च रोजगार प्रदान करता है। घट पैसे च भी इस व्यवसाय जो शुरू किया जा सकता है और जितने भी साड़े बेरोजगार युवक हैं या महिलाएं जड़ी घरे रहनी है न, इस काम जो अपनाई सकती है और आत्मनिर्भर बनी सकते हैं।
0: अंडा और चिकन प्रोटीन विटामिन कने खनिज दे अच्छे स्रोत हैं। बच्चे रोगी और वृद्ध ताई अंडा के भी अत्यंत पौष्टिक के भी मान्या जाता है। किसान खेती दे कने कने मुर्गी पालन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस दे उना दी आर्थिक स्थिति के भी मजबूत होनी है। मुर्गियां दी जड़ी बीट है खेतरा ताई के भी बड़ी उत्तम जड़ी खाद के भी मान्या जाती है। कने इस दे भूमि दी जड़ी उर्वरता के भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल
0: मुर्गी पालन दी नस्ल दी गल की जाए तो मुर्गियां दी कई नस्ल होंदियां हन। कुछ अंडा उत्पादन ताई प्रसिद्ध हैं, कुछ मांस उत्पादन ताई। भारत च व्हाइट लेग हॉर्न रोड आइलैंड रेड कने ग्राम प्रिया कड़कनाथ ये जड़ी नस्ल लोकप्रिय हैं। कने कड़कनाथ नस्ल अपने काले मांस और औषधीय गुण के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मुर्गी पालन जो सफल बनाने ताई कुछ गल्लां दा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। मुर्गी फार्म ऐसी जगह पर होना चाहिए जित्थे स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त हवा कने प्रकाश उपलब्ध होए। कने सुखी जगह और सुरक्षित होना चाहिए। कने मुर्गियां जो पौष्टिक और संतुलित भोजन देना के भी बड़ा जरूरी है। उना दे भोजन च अनाज दाल खनिज और विटामिन होना चाहिए। कने स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: मुर्गियां दे रहने की जगह के भी साफ रखना चाहिए। गंदगी दे रोग फैलने का जड़ा खतरा बढ़ता है। कने मुर्गियां जो समय समय पर टीके लगवाना चाहिए हैं।
1: बिल्कुल
0: बीमार मुर्गियां जो अलग रखना चाहिए ताकि संक्रमण के भी ना फैले।
1: बिल्कुल कने संक्रमण का खास ख्याल रखना है। अगर लगता है कि तुहाड़ियां मुर्गियां जड़ी इनसे थोड़ी ढिली पई हैं यानी कि बीमार हैं तो जरूर इन्हें जो टाइम पर जो ऐसा पशु चिकित्सक जो दसी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल कने दिखा आजकल मशीने और आधुनिक उपकरण का उपयोग करके मुर्गी पालन ज्यादा आसान और लाभदायक हो गया है।
1: बिल्कुल
0: तापमान नियंत्रण स्वचालित भोजन व्यवस्था और दवाइयां दे उपयोग दे उत्पादन के भी बढ़ता है। कने लाभ दी गल की जाए तो अंडे और मांस दी बिक्री दे अच्छी आय

0: दी है। ग्रामीण क्षेत्र च गरीबी और बेरोजगारी के भी घटती है, कहने महिला जो घर बैठे रोजगार के भी मिलता है।
1: बिल्कुल
0: देश दी पोषण समस्या जो दूर करने च सहायता मिलती है, कहने विदेशा च अंडे और चिकन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। और बड़ी अच्छी जानकारी जड़ी है बड़का चाचू तू आज टियाले पर दिती है कि साड़ा जड़ा किसान है से खेती बाड़ी दे इलावा भी इन सभी व्यवसाय जो अपनाई सकता है और अच्छी आमदनी कमाई सकता है।
0: बिल्कुल, ता किसान साथी उन्हा शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत, ता सुन देने लोकगीत।

0: किसान साथियों, संजय दे बिल्ले दिखाए प्यारा दे लोक गीत जेड़ा तहां सुनया कने तुहां जो भी सुनाया जरूर तुहां जो अच्छा लग्या होना है। कने संजय दे टाइम जेड़ा लोक जानकार ऐसे सुन के साडे दिने दी थकान जेड़ी से दूर हो जांदी है।
1: बिल्कुल, कने इस लोक गीत दे बाद उणा चलना अगली जानकारी दी तरफ।
0: जी
1: तां सुनदे ने जानकारी।
0: जी
2: किसान साथियों, जिवें कि तुसां जानदे ने कि टियाले दे माध्यम कने असां तुहानू तिकर ढेरों सारी जानकारियां कने भी पहुंचांदे ने, चाहे से जानकारी डॉक्टर दी हुण, विज्ञानिकां दी हुण, या फिर असां दे उन्नत किसान भाई दी हुण। तां इसा ही कड़ी विच अज असां जानकारी तुहां कने सांझा करनी है, से है खेत बचाओ अभियान दे बारे च। इह खेत बचाओ अभियान क्या है, इह कदों शुरू कीता है, इस दे बारे च अज असां गलबात करनी है। तां इस दे संबंध विच जानकारी देने ताई साडे टियाले पर मौजूद हन डॉक्टर रूपिका शर्मा, बिस्याबाद विशेषज्ञ विकास खंड कांगड़ा च कार्यरत हैं। तो सारे से पहले डॉक्टर रूपिका शर्मा जी, तुसा दा टियाले पर बहुत बहुत स्वागत है जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद कि तुहां आज में जो मौका दित्ते अपने टियाले पे, तुहां ने गल सांझा करने दा आज में जो बड़ा अच्छा मौका मिलिया है, तो इस मंच दे माध्यम ते आहां सारियां तक ये जो जानकारी है खेत बचाओ अभियान दी
1: जी जी जी
3: सांझा करके।
2: तो डॉक्टर रूपिका शर्मा जी, सारे से पहले मेरा प्रश्न तुहाडे कने ए है कि ए जेड़ा खेत बचाओ अभियान क्या है, ए कदों शुरू कीता है, कने क्या इसदे जेड़े उद्देश्य हैं?
3: सब ते पहले तो मैं तुहानू दस चाहती कि ए आड़ी जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक जन आंदोलन है।
1: जी जी।
3: ते इस मुख्य भूमिका हांदे जो माननीय प्रधानमंत्री हांदे श्री नरेंद्र मोदी जी दा सोच छुपियो, कने हांदे जो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी दा जो एक बड़ा अच्छा सोच है इससे बिहाइंड कि जिन्हां ए आंदोलन शुरू कीते, जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। इसका मुख्य मोटिव जो है, उद्देश्य है जो आड़ी कृषि भूमि है उसा जो बचाना है, मिट्टी कने जो जल संसाधन है उन्हां दा संरक्षण करना है। ठीक है, खेत बचाओ दा मतलब है कि खेत हां कुती चली नहीं पियो कि हां बचाने।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: खेत की जो हां दी मिट्टी है, खेतां दे मतलब जो है मिट्टी आड़ी जो वैसे हां ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तुहानू जो पता है हरित क्रांति आई, तो उस टाइम हां दे देश की जरूरत थी कि हां अपनी प्रोडक्शन इनक्रीज करनी है, तां अच्छियां वैरायटियां भी आईयां, खाद दा बड़ा उपयोग होने लग गया। पर चलो खाद दी गल आई थी, तां खाद था कि जो फसल हां लगा दे उस दे हिसाबे ने जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी खाद पानी, चाहे से है यूरिया पानी है, चाहे इफको दीजिए 12-32-16 तो जान देन कितनी मात्रा किस फसल दी कितनी मात्रा है, हाँ निर्धारित मात्रा थी हर एक फसल वास्ते, तो सह पानी है। पर ओया उससे थोड़ा विपरीत कि आहा जी जितू 1 किलो दी जरूरत है, थू 10 किलो पा दे, कने जो एक्सेसिव यूज करा दे, हाँ जुडिशियस यूज नहीं कीती, हाँ एक्सेसिव यूज कीती है केमिकल फर्टिलाइजर ने, उसने आड़ी जो मिट्टी एक लिविंग एंटिटी है ना, उस भी जीवाणु होंगे जो आहा लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते मिट्टी अंदर जो होंगे, यहाँ खाद पाई पाई खत्म करी थे, आहां दी मिट्टी जो ऐसे हुण बंजर हुंदी जा दी, कने शुरू च ताड़ी प्रोडक्शन ठीक आई, पर हुण आहो पता चला दा कि प्रोडक्शन ना सो गई, आहो प्रोडक्शन तां मिल गई पर जो हां रसायनिक खादा यूज करा दे एक्सेसिव, कने केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करा दे, उसने आड़ी मिट्टी भी खराब हो दी, कने आड़ी सेहत भी खराब हो दी।
1: तां
3: जो आड़ी केंद्र सरकार कने जो आड़ी प्रदेश सरकार है उन्हां मिली के एक जो जन आंदोलन शुरू कीता खेत बचाओ अभियान, उसके माध्यम ते आहां गांव गांव च पंचायतां च जा दे, कने आहां टीमां बनाईआं, जो टीम्स आड़ी बनी है इनसे केवीके दे साइंटिस्ट भी हैं, आत्मा स्टाफ जो आज यहाँ दा डिपार्टमेंट है उस आत्मा एक अलग प्रोजेक्ट है जो प्राकृतिक खेती दे संबंधित कार्य दिखता, उना दे भी बीटीएम एवीटीएम आहां सोगी जा दे, कने आहां जो कृषि विकास अधिकारी कने खंड लेवल पे जिया मैं विशेषज्ञ कृषि विकास विषयवाद विशेषज्ञ दे रूप पे कांगड़े कार्यरत है, तां सोगी एक टीम हुंदी जिया कृषि विकास अधिकारी हुंदे, कृषि प्रसार अधिकारी हुंदे, सह आहां सोगी जा दे केवीके कांगड़ा डॉक्टर संजय डॉक्टर दीप सर हैं, सह आहां सोगी जा दे, आहां दिने दो दो तीन तीन पंचायतां कवर कर पूरे आहां देश च नहीं होता, पूरे देश भर च टीमां बनी आ, कने से पंचायत लेवल पर ग्राउंड लेवल पे लोगों जाए के जागरूक करा दे कि थुआ जो भी केमिकल यूज करना है थुआ साबे ने बरता कि जो थोड़ी फसल है उस दे साबे ने थुआ यूज करना है, अगर जरूरत नहीं है तो हां मिट्टी दा सबसे पहले मेन मोटिव है कि जो मिट्टी है थोड़ी उसे जांच करा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: कने मिट्टी दी जांच ते बाद थुआनू जो पता लगना कि आहां सिर्फ पा दे 12-32-16 NPK हुंदा जी नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस है ना, कने आहां पा दे यूरिया नाइट्रोजन, पर आड़ी मिट्टी च कने आड़े पौधे चाहिए कोई 17 तत्व होंगे मिली मिलाई के है ना, बोरोन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, कुछ ना कुछ रूप है ना, तसे सारे दी चलो टेस्ट रिपोर्ट जी आड़ा ये सॉइल आहां दा हेल्थ कार्ड बनता, तीन मिट्टी दी भी चलो सैंपलिंग होंगी टेस्ट होंदा आड़े जिले च, हर जिले च लैबोरेटरी है, जो यूनिवर्सिटी ऐसे भी आहां दे जिले च, अच्छा पालमपुर कृषि

0: विद्यालय तिथु भी टेस्टिंग होंगी, केवीके भी टेस्टिंग करा था, कनाडा विभाग भी पालमपुर चाड़ी सॉइल टेस्टिंग लाए वे, तिथु टेस्टिंग होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स लेंदे, पर तिथु आहां दे माध्यम ते सैंपल कलेक्ट किते जांदे, कने से आपू भी पहुंचाई सकदे सैंपल, कने जो मिट्टी दी जलू टेस्ट रिपोर्ट होंगी तो उस च पता लग जांदा कि उस च नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस कितना कितनी मात्रा च प्रेजेंट है, हम बाहर पानी की जरूरत है कि नहीं है जरूरत, कने जितनी जरूरत है उतनी पा, कने कई बार बोरन कैल्शियम या आहां दा जो ऑर्गेनिक कार्बन भी घटी जांदा, आहां गोबर की खाद नहीं पाते हैं रसायन की बात, तो जो
1: बिल्कुल
0: हमारा ऑर्गेनिक मैटर है घटा दा डे बाय डे, ता ए भी सलाह दिया दे इना शिविरां दे माध्यम ते कि तुहां चलो खाद पाना धीरे धीरे कम करा, कि परसेंट तक तुहां घटा कने जो ऑर्गेनिक देसी मैल है उसी भी पा अपने मिट्टिया च, ताकि मिट्टिया दी थोड़ी दी सेहत जो है से ठीक होना लग पे, कि एकदम एक दिन च तां सुधार होना नहीं है,
1: बिल्कुल
0: ये तो
1: बिल्कुल
0: थोड़ा थोड़ा टाइम 2-3 साल लगे, अगर थोड़ा धीरे जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करा, कने अगर तुहां देसी खाद गोबर है, कने कच्चा गोबर नहीं पाना चाहिए, देसी खाद वगैरह पा, उन्होंने चीजें ने क्या कि मिट्टिया के जीवाणु जो होंगे से दोबारा जागृत हो जाते, कैंचुए याने जो आड़े मित्र कीट जो शिवराज चौहान जी की तुह अगर सुन गए स्पीच, तो उन्होंने मेन मोटिव भी ये दिता कि जो आड़े मित्र कीट तो पहले सुने होने पिताजी होंगे थे या पास फेल बोलते थे, सह चीजा लुप्त हो दी क्योंकि यहाँ रसायनिक खादा पाई पाई के सह भी यहाँ खत्म करी थे, तो सह चीजा ताई जागृत होनी है दोबारा, चल वहां देसी तरीकों के साबे ने अपनी खेती बाड़ी करना शुरू करके दोबारा।
1: बिल्कुल, खेत बचाओ अभियान की जी गलबात करा कर देना।
0: हां जी
1: हाँ, मतलब लोका दे खेत खलाना ते कर भी गए ना, है ना, पंचायत स्तर पर भी तुसा काम किता, ता इस ते कितना करी तुहानू ऐसा लगे कि लोग जागरूक होए भी हैं, ता कितना करी तुहानू ये लगा था कि कितने करी लोग मतलब इस दी खेती दी तरफ आ कर देना।
0: जैसे हम एक मैसेज हां दिंदे जी आड़े ग्राई च प्रधान नाल चलो उन्होंने नियुक्त होने 15 जून ने शपथ होनी, उन्हें जो भी कॉन्टेक्ट करा दे, जो आड़े ऑलरेडी आत्मा दे थ्रू क्लस्टर्स बने उन्होंने ग्रुपों कॉन्टेक्ट करा दे, बट फिर भी होंगे कि हाँ 20 बोला दे तो 10 पूछते,
1: बिल्कुल
0: लोग उन्हें नहीं चाहते से पहले सोचते कि मिलना क्या है जी, कैंप तुहां रखे एग्रीकल्चर वाले तो तुहां देना क्या है, मतलब देना अगर हां देंगे तो चलो हां पनीरियां भी दिया दे, रिफ्रेशमेंट करा दे, कुछ बी भी देते हैं जी जो हर प्रावधान होंगे, है ना, पर कई बार होंगे कि हाँ सिर्फ जानकारी है, कने बी कने पनीरियां दे अलावा जो जानकारी है जो हां जानकारी शेयर करा दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल परसों भी जी 2-3 दिन ते किते लोग तो हां जानकारी ये देना चाहते कि सरकार ने एक और योजना चलाई हो जिस फार्मर रजिस्ट्री जो है वो कंपलसरी करी थी, जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, तो उस 2,000 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट होंगी से उन्हें किसान जो मिलनी है जिन्हें एग्री स्टैक पोर्टल च अपनी फार्मर रजिस्ट्रेशन कराई होंगी, उसके तहत ही होंगे फार्मर आईडी जनरेट हुआ दी, तो जिन्हें जिन्हें किसान की फार्मर रजिस्ट्री हुई होंगी कने फार्मर आईडी जनरेट हुई होंगी उन्हें जो ही 2,000 रुपया क्रेडिट होना है, ये जानकारी हां जन जन तक पहुंचाई दिसंबर महीने ते हां लगी हो इस आंदोलन च जिया एग्री स्टैक वाले रजिस्ट्रेशन ने, तो इसने ही लोगों जानकारी मिली चुकी है, लोग अहां कापियां लेके आए समझाया कि तुहां जो पैसे ता नहीं पो दे कि तुहां अपना ऑनलाइन नहीं कराया, वो लोगों को फायदा तो हो रहा है जब हम घर घर तक उनको अप्रोच कर रहे हैं, जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं ग्रुप्स बने हैं जो वहां दे सीआरपी हुंदे या ग्रुप लीडर हुंदे उन्हां जो हां टारगेट दिया दे कि तुहाड़े ग्रुप दे 20 मेंबर हैं, तो जिन्हां दे पीएम किसान सम्मान निधि दे अंडर कोई भी तुहाड़ी इंस्टॉलमेंट हो दी तो उन्हां जो तुहां लोक मित्र केंद्र वाले फ्री करा दे, सरकार उन्हों प्रति रजिस्ट्रेशन 12 रुपए दिया दी है, तो सह फार्मर जो कोई पैसा नहीं खर्चना है सिर्फ उन्हें अपना आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए, फोन जो तुम्हारा आधार कार्ड ने लिंक है सह लेके जाना क्योंकि ओटीपी होना, कने अपना खसरा नंबर पता होना चाहिए था, कने राशन कार्ड नंबर पता होना चाहिए था, फिर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो जानी, कने एक और गल मैं ऐड करना चाहती हाँ शिविर च जाके दसा दे यहाँ दिया जो भी केंद्र कने सरकार दिया प्रदेश सरकार दिया स्कीम चाहे आड़िया एग्री मशीनरी है जिस पावर वीडर ट्रैक्टर मिलते या आड़े सॉयल कंजर्वेशन दे काम है, आने वाले समय सरकार ने उन्हें जो ही किसान जो फायदा देना है जिन्हें एग्री स्टैक पोर्टल च फार्मर रजिस्ट्रेशन कराई होंगी, कने अपना फार्मर इनरोलमेंट नंबर आईडी से जनरेट कराई होंगी, हम कोई भी यहाँ फॉर्म लेना है हुई सकता आने वाले टाइम चाहे जी बीज डिपार्टमेंट सब्सिडी पे कोई भी इनपुट दिया था तो सह जिन्हों का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाऊंगा उन्हें जो इसे फायदा मिलना है, तो एक रिक्वेस्ट रहेंगी कि जिन्हें कराई लिया से बड़ा ही अच्छी गल है, कने जिन्हों का अली नहीं कराया सह मेरी हथ जोड़ के तुहाड़े ने विनम्र प्रार्थना है कि तुहां इसे जो सरकार जो फायदे दिया दी है उसका फायदा उठाने, तुहां सिर्फ जाना है लोक मित्र केंद्र हर पंचायत च होना ही है हर ग्राएं च होना ही है, तो तुहां उन्हां जा कने अपना रजिस्ट्रेशन करा ताकि आने वाले समय तुहां जो सारी सुविधाएं जो है सरकार द्वारा मिली सकन।
1: डॉक्टर रूपका शर्मा जी की इस च कोई शक नहीं कि गल करदे ना हां राज्य सरकार दी या केंद्र सरकार दी, ता असा दे किसानां दे हित ताई मती सारी जिहड़ी फायदे कन भी योजना दे माध्यम कन उहनां ताई आवा करदे ने, ता इस विच असा गल करनी कि जिहड़ी ए प्राकृतिक खेती कन परंपरक रसायनिक खेती ए किस तरह दी खेती है इसके बारे च क्या बोलेंगे तुहां?
0: प्राकृतिक खेती दा मेन ए है कि यहां जो हुंदा रसायन नहीं यूज करनी जो बाहर खाद केमिकल फर्टिलाइजर

0: ऐसे नहीं यूज करना है, हाँ कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ऐसे नहीं करना है, हाँ कने जो बी ब्याज होंगे जो हाँ हाइब्रिड यूज करते से भी यहाँ कटते कट यूज
1: बिल्कुल
0: करने, जो
1: बिल्कुल
0: अपना लोकल बीज होंगे से धीरे धीरे खत्म हुआ था। प्राकृतिक खेती का बढ़ावा सरकार दिया दी, प्रदेश सरकार भी दिया दी, कने सेंटर की सरकार भी दिया दी, तो उस मेन यही है कि रासायनिक खादों का उपयोग धीरे धीरे खत्म करा, कने अड़े कीटनाशक कने जो वहां कृषि करण यहाँ जी बी जो महंगे बीज हाइब्रिड बोलने दे खरीदा दे इतने महंगे महंगे, तो कोशिश करा कि अपना बीज भी आपू वाली रखा जी या फसलों का पहले अड़िया दुनिया वरायटियां जो होंगे हैं लोकल लुप्त हो रही हैं उन्हों का भी उन्होंने संभाले के रखा, गोबर गोमूत्र जो अड़े प्राकृतिक खेती के घटक हैं जीवामृत
1: जी
0: बी
1: जी जी
0: है ना
1: जी
0: बीज अमृत घन जीवामृत, फिर जो अहां दे पेस्टिसाइड की जगह से आंदे अड़े कीटनाशक जी अग्नि अस्त्र हुई या नीम वाण हुई या सह दिया चीजा खट्टी लस्सी का उपयोग करा, इन चीजा जो यूज करके जो खेती हो रही उसी प्राकृतिक खेती बोलते, रासायनिक खेती से आंदी जिस तो हाँ गोबर नहीं पा दे,
1: जी
0: जिस
1: जी
0: तो हाँ गोमूत्र नहीं यूज करा दे, जिस तो हाँ बी लोवा दे हाइब्रिड ट्रैक्टर चला दे, उन बैला बूला सारा कंसेप्ट खत्म हुई है, ट्रैक्टर चला दे बी हाइब्रिड पा दे कने यूरिया दे छिटियां दे या दे कने हाँ एनपीके पा दे सैड़ी रसायनिक के टोटल, यहाँ फिर जो कीड़ा हो जाए जो एक कीड़ा दुसिया ता हाँ स्प्रे खरीदना चली पोवा दे
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: जिस दी जरूरत नहीं भी है अगर मान लिया दो चार एक थ्रेशोल्ड लेवल हुंदा हर कीड़े का एक थ्रेशोल्ड लेवल की जितनी उसी पॉपुलेशन है तो उससे बड़ी करी होंगी ताई से नुकसान पहुंचाता है ना, ता चलो उसे ट्रेस करा दे ताड़े जो मित्र कीट है से भी खत्म हुआ दे, पहले उन्दे छोटा मोटा नॉर्मल कीड़े होंगे
1: जी
0: जड़े
1: जी जी
0: सुनी
1: जी
0: असर नहीं होंगे तो पताजी होंगे या कुछ वैसे कीड़े होते थे या मैना होता पक्षी होते थे वही खा जाते थे, पर हाँ स्प्रे पे आई होता से रासायनिक चीजा थोड़ा जहा कटाना पोनिया हाँ जो उनकी अड़ी
1: बिल्कुल
0: सेहत पे भी उन्हों का प्रभाव पुआ है।
1: बिल्कुल कहने देखा कि अगर असदा किसान साथी प्राकृतिक खेती जो अपनांदा है
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: प्राकृतिक खेती कने जेडे उत्पाद पैदा होने न
0: हाँ जी
1: से असा दी सेहत भी ठीक होने न और बीमारियां भी कहने भी घट लगनियां न।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: ता
0: बच्चे
1: ये यहाँ आशा करते हैं कि असा दे जेडे किसान साथी कहने भी प्राकृतिक खेती की तरफ आन, अपनी सेहत का भी ध्यान रखन और अपना जेडा एक पर्यावरण जो बचाने ताहे भी सहयोग कहने भी करन।
0: बिल्कुल ठीक जी
1: ता दिखा डॉक्टर साहिबा कि असा दा जेड़ा किसान साथी के भी असा दे बुजुर्ग दे टाइम में जेड़ी खेतीबाड़ी के भी
0: हाँ
1: करा
0: जी
1: करते हैं
0: हाँ
1: है ना,
0: जी
1: और एक ऐसा भी समय था कि असा दे बुजुर्ग के भी उन्हां दी एक आय दा साधन खेतीबाड़ी ही था,
0: हाँ जी
1: लेकिन आज दे वर्तमान समय च ये जेड़ी प्राकृतिक खेती है इसकी का जो सांझो जेड़ी जरूरत के भी महसूस हुआ कर दी है।
0: देखा प्राकृतिक खेती की जरूरत तो महसूस हो रही, सबसे पहले जी तो हाँ बोलिया कि बीमारियां बढ़ा दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो प्राकृतिक खेती दे मुख्य घटक है इनकी देसी गाय का सुने होना तो कि देसी गाय का गौमूत्र हुंदा कने
1: बिल्कुल
0: गोबर
1: बिल्कुल
0: हुंदा उस जीवाणु अधिक हुंदे,
1: जी
0: ता
1: जी
0: उस दे ही कई घटक हां बनाए हो जिया बीज अमृत घन जीवामृत है ना, तसे स्प्रे ताए कने खाद वास्ते जो उन्हां दा हां गोबर कने गौमूत्र यूज करा दे ता उइए ही कंट्रोल हो जांदियां 100 बीमारियां, कने चलो हां बारे ते कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, तो जो हमारा उत्पाद अहां लेना है तसे भी हेल्दी होना, तो हां करे भी रखी के दिखा जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ऐसे थोड़ा 4 दिन ठीक रहना, कने उइए जो स्प्रे वाले टमाटर या भिंडी लोवा तो सही एकदम पली उदी लगती 2 दिन अंदर खराब हो जाती,
1: बिल्कुल
0: आंधी हेल्थ पे भी जी तो पता है सुने तो आजकल न्यूज भी होता कि जो हाड़ा हिमाचल प्रदेश है से 2 नंबर पे आई है कैंसर पेशेंट शुगर आड़ी बढ़ा दी, बीमारियां ता बढ़ा दी है क्योंकि हाड़ा जो उत्पाद ऐसे ठीक नहीं रहा, तो उसी वहां एकदम क्योंकि यहाँ अपना पेट भी भरना है तो एकदम हर रासायनिक खादों छड़ी भी नहीं सकते क्योंकि इसका उत्पाद जी प्राकृतिक खेती चलो तो रसायन एकदम कटानी है हाइब्रिड बीज से तो नॉर्मल सर्टिफाइड या ओपी वराइटीज का बीज पाना है, तो हाँ एकदम थोड़ा ये नहीं सोचना है तो हाँ कि जितनी अगर मनी ले पहले उपज 10 क्विंटल कणक निकलती तो 10 हो ही सकता से अद्धी पे भी आई है,
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल
0: तो हाँ काई मारने की दवा नहीं पानी तो हाँ कोई वो नहीं पाना बारे तेजी या मन ले रस्ट आई आदि तो हाँ टिल्ट या शाइन कोई दवाई स्प्रे करा दे या सब्जियां पे भी तीन तो छोटे दे बीमारी हो दी तो हाँ उसे हरा भरा या कीड़िया मुक्त रखने ते तो हाँ स्प्रे कर दिया दे थोड़ी उत्पाद तो बढ़ी आदा, पर तो हाँ जो स्प्रे करा दे से थोड़े सब्जियां दे माध्यम से थोड़े शरीर च जा दी कने शरीर जा दे तो बीमारियां बढ़ा दी, तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कने जो जो तो हम बोले कि युवा बच्चे हैं उन्होंने उत्साह खेती बाड़ी से छड़ दे क्योंकि एक इतना मतलब इनकम जनरेटिंग वेंचर नहीं रहा कि लोग सोचते कि क्योंकि ज्यादा लागत है इतना महंगा तो हम पेस्टिसाइड यूरिया खाद खरीदा दे, तो प्राकृतिक खेती इस पास से थोड़े कम में होंगे कि इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोल दे, जीरो बजट कह बोल दे कि तो हाँ जो वेस्ट घटक यूज करने गोबर यूज करा दे खाद यूज करा दे तो हम कुछ बारे तक खरीदनी नहीं है तो हम अपनी गाय पाली होंगी,
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल
0: खेती बाड़ी एक सही नहीं होंगे कि तो हाँ मतलब कृषि जो है दैट की एक तो हम फसल ही बीज बीज ने इनकने उत्पाद करने, तो जो कृषि है जिससे सारी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ता होंगे चलो तो पशु पालन भी करन मुर्गी पालन भी करन फिशरीज भी करन सह सारिया चीजा कने कुथी तक कुथी मतलब जी तो पशु पालन

0: कर रहे थे, तो थोड़े दूध की तरफ से भी आमदनी होनी।
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल
0: युवा बच्चे नाड़े है ना, से थोड़ा मतलब फ्लोरिकल्चर की तरफ भी जाए सकते, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाए सकते। आहां दे कुछ किसान इन सब्जियां ते लगा दे, कने कने से गेंदे का फूल भी लगा दे, तो गेंदे ते फूल दी मार्केट थोड़ी नर्सरियां च है, हर जगह मार्केट च है ना। तो उससे इनकम उसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कनक लगा के या सब्जी लगा के आपने, अगर युवा को हमने कृषि के साथ जोड़े रखना है तो हाँ जो ये चाहिए कि बच्चे वहां सिखान की, तो वहां इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वहाँ खेती बाड़ी मतलब क्रॉप्स था, तो वहाँ सीरियल क्रॉप्स भी लेने, वेजिटेबल्स भी लेने, तो वहाँ लाइफ स्टॉक भी लेने
1: मिश्रित
0: है ना।
1: खेती बाड़ी
0: हाँ
1: करनी है।
0: मिश्रित खेती, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेन, ताई तो हाँ कृषि च सस्टेन करी सकते।
1: बिल्कुल
0: कन्नाड़ी सरकार जो है एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, कि यहाँ दे जो MSP निर्धारित करी थी, जी प्राकृतिक खेती के तहत जो उत्पाद हुआ दे, जी हल्दी का रेट इस पर सरकार करी थी कि अगर तो प्राकृतिक हल्दी तो चलो प्राकृतिक ही लग रही, उसको कोई स्प्रे नहीं होंगी, तो 150 रुपया सरकार बाय बैक करा दी।
1: जी जी
0: फिर अड़ी जो कणक है ना,
1: जी जी जी
0: पिछले साल उन्हें 60 रुपए प्रोक्योर की है, इस बार 90 रुपए जो है गवर्नमेंट ने रेट घोषित करी थी। कने छली मक्की जो है अड़ी से 60 रुपए करी थी, तक किसाना जो अगर तुहा लगा देन थोड़ी मेहनत करा देन, तो उसका अगर सरकार जो है उचित मूल्य भी दिया दी
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: डॉक्टर रूपका शर्मा जी, तुसा खेत बचाओ अभियान दे बारे च
0: हाँ जी
1: विस्तार पूर्वक तुहा जानकारी के
0: हाँ
1: भी
0: जी
1: असा दे किसान साथी दिती है, और असा उम्मीद करनी कि उना किसान भाई इसा जानकारी दे जरूर लाभ लेना है। ता जानकारी देने ताई तुसा दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगली जड़ी जानकारी ऐसे मौसम दी।
2: मौसम की जानकारी दिखा किसान भाइयों तुहानू जिहड़ी यहाँ देनी है, और धर्मशाला की अगर अज की यहाँ गल की जाए तो 23 डिग्री सैलसीयस जो है से तापमान धर्मशाला का बने है, और बदल जड़े ने सह भी हैं, कने थोड़े दे अगे चलते हैं उन्ने की गल करते हैं, बदल जड़े ने सज जड़े ने छाए रहे, कने कई स्थान पर हल्की ते मध्यम बरखा भी हुई, कने गरज कने चमक भी रही, कने चंबा जड़ा ऐसा दिन भर बदल भी रहे, कने रुकी रुकी के कुछ कुछ कुथी कुथी जड़ा ऐसे हल्की फुल्की बरखा की बौछार जड़ी है सह भी पई।
1: किसान साथी देखा कि ये बरसात का मौसम है, और मौसम जो ध्यान से रखे करी ही हाँ अपने काम काज के भी करने न।
2: बिल्कुल
1: और देखा कि आजकल हाँ इंटरनेट के माध्यम कहने अपने फोन पर भी मौसम जो दिखी सकते न, और उसी हिसाब से कहने हाँ अपने जेड़े काम काज के भी अपनाने न।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, कने बरसात दी रीत लगी हुई दिखा किसान भाइयों, ता सांजो संभली के रहना चाहिदा है, अपना स्वास्थ्य जड़ा है सब भी ध्यान च रखना चाहिदा है, पशु धन जड़ा है तिसदी भी देख रेख करना चाहिदी है। बरसात दी रीत च काफी सारी बीमारियां लगदी हैं, ता तुहां घराला जड़ी हैं सारे कोशिश करनी है कि सुकियां रहन, कने तुहां
1: साफ
2: पशुओं
1: सुथरी
2: वास्ते
1: रहना।
2: बिल्कुल, कने पशुओं वास्ते जड़ा है बछौन भी तुहां बचाई सकदे हैं।
1: बिल्कुल। ता किसान साथियों फिर यहां शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत, ता सुन देने लोकगीत।
2: लोकगीत

किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम किसान बाणी इतु संपन्न हो करदा हुण सांझो दोनों जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: प्रादेशिक समय।
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.5।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: भविष्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार शुरू करेगी हाई वैल्यू नट मिशन। भाजपा ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता और रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने विकास कार्यों के लिए सरकार से बजट उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है।
1: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। ऊना जिला के पालकवाह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल व रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरोली के खड्ड क्षेत्र में आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर पहले चरण में 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि दुर्गम क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र की सोलंग पंचायत में आज उन्होंने कहा कि राज्य के कुल बजट का करीब 18% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जा सके। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 3000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। वे आज प्रदेश के मेधावी ITI विद्यार्थियों के एक दल को नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए कजाकिस्तान रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने उम्मीद जताई कि ये विजिट विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत औद्योगिक प्रक्रियाओं और वैश्विक कार्य संस्कृति को निकट से समझने व सीखने का अवसर प्रदान करेगा। राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 से 2031 तक हाई वैल्यू नट मिशन की शुरुआत करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी और चिलगोजा जैसे नट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के तहत करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागों के कायाकल्प और उच्च घनत्व पौधारोपण के तहत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि ये पहल इन फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी को एक सुदृढ़, तकनीक आधारित और बाजारोन्मुखी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अर्की उपमंडल के दारलाघाट में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्रीड़ा भारती अर्की टोली के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी खेल गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है।
2: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी समारोह में क्रीड़ा भारती ने वॉलीबॉल चैंपियनशिप

0: की है। मैं नौजवानों के अंदर एक खेल भावना पैदा करने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे युवा प्लेयर्स जो हैं उनको एक मंच देने का काम किया है। मैं इस टोली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह सेवा प्रमुख राजेंद्र वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो भाजपा राज्य में जन आंदोलन शुरू करेगी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, परंतु सरकार नहीं चेती और ये उससे और अधिक स्थिति आज विस्फोटक हो। यही स्थिति बरकरार रही तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन खड़ा करेगी।
1: दूसरी ओर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का दावा किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा ने पार्टी में करीब 32,000 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए मोर्चा गंभीरता से काम कर रहा है।
3: 4 महीने से लगातार अनुसूचित जाति मोर्चा प्रत्येक बूथ पर 5 अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो काम किया, हिमाचल प्रदेश के 8,000 बूथों में से 6,000 बूथों पे 32,000 जो कार्यकर्ता मोर्चा ने जोड़े हैं, आने वाले 3 महीने के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता से हमारा पदाधिकारी जाएंगे, मिलेंगे, उनका सत्यापन होगा और उन सूचियों का पुनरीक्षण होगा, ताकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें अनुसूचित जाति मोर्चा की जो एक निर्णायक भूमिका है उस भूमिका को निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश का एससी मोर्चा अनुसूचित जाति वर्ग के घर घर जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में अलख जगाएगा।
1: सिरमौर जिला में रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने सरकार से प्रभावित पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि बजट के अभाव में प्रभावित पंचायतों में स्कूलों और सड़कों की मुरम्मत तक नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापित परिवारों ने अन्य लंबित मांगों के जल्द समाधान का भी आग्रह किया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। ऊना जिला में आज सुबह हुई भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाएं चलने और व्यापक वर्षा से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और जगह जगह यातायात भी अवरुद्ध रहा। इस दौरान ऊना शहर समेत जिला के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी सामने आई। राज्य के अन्य जिलों में भी मॉनसून की वर्षा से इन दिनों नदी नाले उफान पर है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। चंबा जिला में भी मॉनसून की वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला में कई संपर्क मार्ग भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हैं, जिन्हें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी जुटी हुई है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत भविष्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार शुरू करेगी हाई वैल्यू नट मिशन। भाजपा ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता और रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने विकास कार्यों के लिए सरकार से बजट उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।

0: कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना अनुसार बाल विकास परियोजना सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी सह सत्यापित क्रेच केंद्रों में क्रेच कार्यकर्ता व क्रेच सहायकों के पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। क्रेच कार्यकर्ताओं और क्रेच सहायकों को प्रति माह सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर मानदेय दे होगा। वर्तमान समय में मानदेय की यह दर क्रेच कार्यकर्ताओं के लिए 5,500 रुपये प्रति माह व क्रेच सहायकों के लिए 3,000 प्रतिमा है। क्रेच केंद्र आंगनवाड़ी सह क्रेच केंद्र का नाम थाना 2 नजदीक डाइट, पद का नाम क्रेच कार्यकर्ता व क्रेच सहायिका। इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यता इस प्रकार से है। आवेदक संबंधित पालना क्रैच केंद्र आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र के फीडिंग एरिया की स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला उम्मीदवार के परिवार की समस्त आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया हो। क्रेच कार्यकर्ता के पद हेतु महिला उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और क्रेच सहायिका हेतु महिला उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक महिला उम्मीदवार अपना आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण के साथ 14 जुलाई 2026 को साय 5 बजे तक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में जमा करवा सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको पुनः बता दें, आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों को भरने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। क्रेच कार्यकर्ता के आवेदन हेतु महिला उम्मीदवार न्यूनतम 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। क्रेच सहायिका हेतु उम्मीदवार न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस।

गजल को अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये पंजाबी गीत।

अभी आपने सुना सरबजीत सिंह चीमा की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: लिखिया लिखी आवाज में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को हैं, अब हिमवीर्स कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।
1: जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबीट्स। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिमबीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। साहित्य समाज का मार्गदर्शक है। कालजयी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि समय, पात्र और संदर्भ में बदलावों के साथ नए पात्रों के साथ नई कथाएं रची जाती है। जानकारी की बात हिमबीट्स के साथ सेगमेंट में आज हम जानेंगे साहित्यकार पंडित चंद्रधर गुलेरी के बारे में। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाओं ने साहित्यिक परंपरा को समृद्ध बनाया। शिवराम के तीन पुत्रों में से एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ। शिवराम की मेधा और बुद्धिमता ने जयपुर राजघराने में उनकी नियुक्ति की पटकथा लिखी, लेकिन गुलेर से उनका मोह अटूट था। उनके पुत्र पंडित चंद्रधर ने गुलेरी नाम का वरण कर गुलेर गाँव को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उनकी आरंभिक शिक्षा जयपुर में ही हुई थी। इसके उपरांत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। उन्हें दर्शन शास्त्र में महारत हासिल थी। वे कहानीकार ही नहीं थे बल्कि साहित्य की अनेक विधाओं में उनकी लेखनी ने कमाल किया। उन्हें साहित्यिक धरोहरों से भी विशेष स्नेह था। उनके आलेखों और निबंधों में ऐसी अनेक धरोहरों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का सफल प्रकाशन भी किया। उनकी साहित्यिक कृतियों में मार्मिकता का भाव निरंतर प्रवाहित होता है। उसने कहा था, जैसी कालजयी कथा की रचना कर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके साथ साथ सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 39 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपनी देह त्याग दी और वे अपने पीछे साहित्य की एक विशाल विरासत को छोड़ गए। साथियों, हिमबीट्स में अब हम बात करेंगे हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र की। हिमाचल का पर्यटन क्षेत्र नई ऊर्जा और नवाचार के साथ प्रदेश के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। हिमाचल जैसे विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमाचल के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित स्थल, राज्य से वैभव से सजे पहाड़, नदियाँ प्रदेश के विकास की राह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के जलाशयों को लग्जरी और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में गोविंद सागर झील में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर के हरनौडा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर का लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का भी निर्णय लिया है। राज्य में वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे साहसिक पर्यटन को नए पंख लग रहे हैं। कांगड़ा जिला का बीड बिलिंग दुनिया भर के पैराग्लाइडरों के लिए स्वर्ग के समान है। शिमला जिला के जुनगा में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। राज्य की अन्य जगहों में भी पैराग्लाइडिंग संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: साथियों, राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नई इको टूरिज्म नीति लागू की गई है और इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच से शिपकीला से सीमावर्ती पर्यटन शुरू किया गया है। इसके साथ साथ हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा आरंभ की है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अमलीय जामा पहनाया जा रहा है। राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कांगड़ा हवाई अड्डे की विस्तार प्रक्रिया जारी है। इसके साथ साथ हमीरपुर जिले के जसकोट, कांगड़ा जिला के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा के हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। ऊना में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने धनराशि का प्रावधान किया है तथा नाहन और सोलन में भी हेलीपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ रंगरीक में सेना के सहयोग से एक हेलीपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। इन हेलीपोर्ट के बनने से उच्च श्रेणी के पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आगमन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथियों, राज्य सरकार प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में मंडी चंडीगढ़ तथा कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच नियमित रूप से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सुविधा के शुरू होने से आवश्यक अधोसंरचना से सुसज्जित कांगनीधार हेलीपोर्ट हवाई सेवाओं के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
1: मंडी से चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट आपको हेलीकॉप्टर के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे हेलीपोर्ट्स बने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी हमीरपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, चंबा में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, लाहौल स्पीति में रंगरीक में हम एक हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और उसका भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी से कार्य शुरू हो जाएगा। अभी ये डेली फ्लाइट्स होगी, धीरे धीरे कुछ समय लगता है कोई चीज को ट्रांजिशन होने में, तो धीरे धीरे कुछ समय में 5-7 सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ा करेंगे और आपको आए दिन 2-2 घंटे बाद आपको फ्लाइट की सर्विसेज उपलब्ध होगी। इसके अलावा ये जो अंतिम चरण के जो हमारे हेलीपोर्ट्स का निर्माण है, अब ऊना में हेलीपोर्ट्स का निर्माण के लिए हमने पैसे उपलब्ध करवा दिया है, नाहन में हम हेलीपोर्ट का निर्माण करना चाहते हैं और सोलन में हम हेलीपोर्ट का निर्माण करना चाहते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़कर हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
0: श्रोताओं, कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित हो रहा दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको एडवेंचर जिप लाइन परियोजना इस क्षेत्र को रोमांचक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 7,41,00,000 रुपए की लागत से विकसित की जा रही ये परियोजना राज्य की पर्यटन अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगभग 4 किलोमीटर लंबी ये जिप लाइन गलू देवी मंदिर से होते हुए बलगांव नदी से गुजरते हुए धर्मशाला क्षेत्र के अनेक मनोरम प्राकृतिक स्थलों से होकर गुजरेगी। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल के प्रवास के दौरान अधिकारियों को बड़ा भंगाल में इको टूरिज्म गतिविधियां शुरू करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन आधारित योजनाएं युवाओं के लिए स्वरोजगार की नई राहें खोल रही हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत नई पर्यटन इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा होमस्टे इकाइयों को विस्तार प्रदान करने के लिए ऋण पर वित्तीय सहायता दी जा रही है। युवाओं को शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% तक ब्याज उपदान की सुविधा मिलेगी। प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटकों की आमद में वृद्धि के दृष्टिगत कई पर्यटन परियोजनाएं प्रगति पर है।

शहर के सौंदर्यीकरण के दृष्टिगत 246 करोड़ रुपए लागत की भूमिगत यूटिलिटी डक्ट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के अधोसंरचना प्रणाली का आधुनिकीकरण, शहरी सौंदर्यीकरण तथा नागरिकों के लिए सुविधाओं का विस्तार करना है। यह परियोजना शिमला के कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित होगी। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, हर यादगार यात्रा के साथ पर्यटक अनुपम स्थलों के अनुभव के साथ साथ वहाँ के लोगों की स्मृतियाँ अपने साथ लेकर जाते हैं। प्रदेश सरकार पर्यटन अधोसंरचना के साथ साथ मानव पूंजी के विकास पर भी बल दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और हिमाचल की पर्यटन परिवर्तन यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हिमबीट्स के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: Beats. FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: बगावत का खुला पैगाम देता हूँ जवानों को, अरे उठो उठ कर मिटा।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

देशभक्ति गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, दुश्मन से कहो होशियार रहे,
1: दुश्मन से कहो होशियार रहे,
0: नापाक निशा उन कदमों का, गौतम के हंसी घर पे न पड़े,
1: गौतम के हंसी घर पे न पड़े,
0: ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं,
1: गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं,
0: सरदार यहीं, आजाद यहीं,
1: सरदार यहीं, आजाद यहीं,
0: है भगत सिंह टीपू भी यहीं,
1: है भगत सिंह टीपू भी यहीं,
0: झांसी की रानी भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, और वीर तांतिया टोपे यहीं,
1: वीर तांतिया टोपे यहीं,
0: ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, हर एक जवान अब्दुल हमीद,
1: हर एक जवान अब्दुल हमीद,
0: अपने देश की लाज बचाने, बच्चा बच्चा होगा शहीद,
1: बच्चा बच्चा होगा

0: मर्द मराठे सारे छत्रपति के राज दुलारे,
1: छत्रपति के राज दुलारे,
0: आन की खातिर मरने वाले, आन की खातिर जीने वाले,
1: जीने वाले।
0: जय जवान
1: जय किसान।
0: बांके गबरू ये पंजाबी रंगी चेहरा चाल शराबी,
1: बांके गबरू ये पंजाबी रंगी चेहरा चाल शराबी,
0: बांके तीर और बाजू खंड

0: मुस्लिम सिख ईसाई जाट तिलंगे सिंधी भाई,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट तिलंगे सिंधी भाई,
0: साथ मरेंगे साथ जिएंगे।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहली समाचार संध्या व रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी।

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों

0: और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और 0% प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन ही बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर

शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं निर्माता निदेशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

0: कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं निर्माता निदेशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।
1: का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

0: दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से।
1: ये कहां से मर गए, ट्यून बदलो।
2: मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने। इसे
3: इसे नहीं बाबा, मुझे।
1: अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो, जल्दी से लंबे हो जाओ।
0: ये बुढ़ा गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है। वाय।
4: अभी आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक गुरुदत्त द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों की महफिल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं येसुदास की आवाज़ में गाया ये गीत।

अभी आपने सुना एक नई पहेली फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था येसुदास ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीतों की महफिल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति त्रिशूल फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार व येसुदास के मिले जुले स्वरों में।

अभी आपने सुना त्रिशूल फिल्म से यह गीत। आवाजें थी किशोर कुमार, येसुदास व लता मंगेशकर की। गीतों की महफिल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में गाया ये गीत।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में गाया बीन का जादू फिल्म का यह गीत। गीतों की महफिल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के केंद्र से, और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही हेमलता की आवाज़ में भाग्य फिल्म से।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में गाया ये गीत। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

अभी आपने सुना अब्दुल्ला फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था आशा भोसले ने। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले डांसिंग की आवाज़ों में, कार्यक्रम का ये अगला गीत।

गीतों की महफिल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों की महफिल। हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं अब रविवार सेरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से शुरू की जाएगी।
1: अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है श्री कुमार मर्डुर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मर्डुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मर्डुर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मर्डुर ख्याल ठुमरी हिंदी भजन मराठी अभंग कन्नड़ दास साहित्य कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुति दी है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मर्डुर अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मर्डुर stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, मराठी अभंग कन्नड़ा दास साहित्य कन्नड़ा वचन साहित्य एंड मेनी अदर ट्रेडिशंस। एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन कुमार हैज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द कंट्री इन वेरियस प्रेस्टिजियस कॉन्सर्ट्स।
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मर्डुर अपने

0: कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। श्री कुमार मर्डूर विल बिगिन हिज वोकल रिसाइटल विद राग छायानट। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालिनिया, फॉलोड बाय तराना इन द्रुत तीन ताल।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश

दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।